मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठी तिथि के तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 का समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का। सात बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 का समय रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का। ठीक 8 बजे जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने।

नए पुराने। दस बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

10:05 का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 का समय रहेगा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स का।

12 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक 1 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 का समय रहेगा कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन का। ये थे अभी तक आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी आकाशवाणी के सभी लिसनर्स को आकाशवाणी की ओर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी हाँ, जब भी सुबह होती है हर रोज़ हम सोचते हैं कि एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, और ये नया दिन आज हमारे लिए क्या कुछ ख़ास लेकर आएगा ये भी हम सोचते रहते हैं, इसको इस ताने बाने को बुनते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह जैसे ही हम उठते हैं हमें लगता है कि आज हम बहुत सारा बदलाव करेंगे। शायद कुछ लोग जब ऑफिस के लिए इस वक्त निकल रहे होंगे जो हमें सुन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो इस वक्त निकले होंगे अपनी क्लासेस के लिए, कोचिंग्स के लिए, उन सभी को हम एक बार फिर से कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और प्रोग्राम भी आपका अपना फेवरेट सुप्रभात लेकर आई हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त गीतांजलि। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत आज एक ख़ास दिन की होने वाली है, क्योंकि आप और हम एक बार फिर से साथ साथ हैं। कहते हैं कि साथ अच्छा हो तो दिन बहुत अच्छा रहता है। आज का हमारा दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा हमें ज़रूर विश करना चाहिए, सोचना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा हर दिन बहुत अच्छा हो। तो चलिए, आज के अच्छे दिन की कामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सब अपने अपने कामों पर। और उसके साथ साथ कहते हैं कि म्यूज़िक की दुनिया बहुत अलग होती है और इसी दुनिया में खो जाते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात।

जी हाँ, कहते हैं म्यूजिक की दुनिया ना बहुत अलग होती है। जब हम इस दुनिया में खो जाते हैं तो शायद सब कुछ भूल जाते हैं। अभी सॉन्ग को सुनकर ऐसे ही हुआ होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह आँख ही हमारी नहीं खुल रही होती हैं, लगता है कि उफ क्या ऐसा करें कि नींद जो है वो कहीं दूर भाग जाए। तो देखिए, नींद को दूर भगाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। और कहते हैं कि जब हमारा एक लक्ष्य बना होता है ना, और हमें उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत सारे पड़ावों से होकर गुजरना होता है, तो उसमें एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो सुबह जल्दी उठना होता है। और अभी बात मैं कर रही थी कि जो लोग लगता है कि अरे सुबह कैसे आंखें खुलें, तो भाई सबसे अच्छा तरीका है ठंडे पानी का इस्तेमाल करिए, अपनी आंखें धोइए अच्छे से, और फिर उसके बाद सोचिए कि क्या करना है। गर्मा गर्म चाय हो तो बात ही क्या है, मॉर्निंग बन जाती है। ऐसा ही करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वैसे लक्ष्य से मुझे याद आया, हम लोग बहुत सारी बातें, हर रोज़ के भी हमारे लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य ऐसे नहीं बहुत दूरगामी होते हैं, लक्ष्य हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को लेकर भी होते हैं, डेली रूटीन को लेकर भी होते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए जब हम अपने दिल दिमाग पर एक काबू पा लेते हैं कि अब हमें ये करना है, तो शायद नींद का हटना थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे कुछ लोग हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, चाहे मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, चाहे बस पर, चाहे अपनी गाड़ी से, या जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सुबह का जो वक्त होता है ना, वो आपका अपना वक्त है, और इस सुबह के वक्त को पूरे दिन की एनर्जी के लिए हमें तैयार करना होता है। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक्सरसाइज करिए, ये तो बहुत ही अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, आपके दिल दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए इस और भी आप ज़रूर ध्यान दें। फिलहाल मैं एक अगली सॉन्ग को प्ले कर रही हूँ आपके लिए। इस सॉन्ग को सुनिए, इन्जॉय करिए और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, मैं इसे बहुत बार सुनती हूँ, और जब ये ट्रैक आया था, जब ये मूवी नई नई रिलीज़ हुई थी, तब से लेकर अब तक ये ट्रैक जब भी सुनो बहुत नया सा लगता है। और कविता सेठ की आवाज़ में आप इसे सुनिएगा, इंजॉय करते रहिएगा। और हाँ, ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो सुप्रभात। हर रोज हम आते हैं आपसे मुलाकात करते हैं और फिर इस दिन को बहुत ही खास बनाते हैं। वैसे ये जो मुलाकातें होती हैं ना, ये जो मिलना होता है, ये जो मीटिंग्स होती हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और अक्सर ये खास तब हो जाती हैं जब हमें ये मालूम हो कि हम किन से मिलने जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त सुबह के वक्त कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही खास आज मीटिंग करने जा रहे होंगे, मुलाकात करने जा रहे होंगे, कुछ कर भी चुके होंगे क्योंकि सुबह तो बहुत पहले ही हो चुकी है। अब वो अलग बात है कि जो अभी नहीं जागे हैं उनके लिए सुबह नहीं हुई है, लेकिन सुबह तो हो चुकी है और इसी सुबह के साथ बहुत सारी एनर्जी के साथ, बहुत सारे पॉजिटिव नोट्स के साथ हम हैं आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। तो मैं बात मीटिंग्स की कर रही थी कि जो इस वक्त या आज का जिनका दिन तय है कि वो कुछ खास मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग हो सकती है, कोई पर्सनल मीटिंग हो सकती है, किसी भी तरह की मुलाकात हो सकती है, तो जो भी लोग इस मुलाकात के लिए जा रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव होकर आएँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ज़िंदगी का फ़लसफा सिर्फ इतना है कि इसे जीते जाइए, तो अपने मूड को ज़रा ठीक रखिए। कुछ लोग अगर कल की किसी बात को लेकर थोड़ी सी परेशान है तो मैं यही कहूँगी कि अपने मूड को बहुत अच्छा करिए। आपके मूड को अच्छा करने के लिए हम हैं ना यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे से सॉन्ग्स के साथ आपसे जुड़े हुए हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। और एक बार फिर से बता दूं, प्रोग्राम चल रहा है सुप्रभात, सो स्टे ट्यून्ड और एंजॉय दिस ट्रैक।

जी हाँ, चला कि लब्धा फिरे, चले तो कुछ नहीं लब रहे, लेकिन फिर भी बात ये रह जाती है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ ना ढूंढते ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं, और उसके लिए हमें कोशिश करनी होती है, और बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है। और जो लोग ये कोशिश कर लेते हैं वो कुछ ना कुछ, या फिर कह लीजिए कि जो भी वो सोचते हैं उसे पा लेते हैं। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने कोई लक्ष्य अपना निर्धारित किया है ना, तो फिर उसके पीछे आप लग जाइए, क्योंकि जब तक आप उसे पूरा वक्त नहीं देंगे, जब तक आप उसे अटेंशन नहीं देंगे, तब तक कैसे पूरा होगा। और इसके लिए आपको अपने मन को एकाग्र करना होता है, और एकाग्र के लिए योग सबसे अच्छा है। मॉर्निंग टिप्स है, ले लीजिए, दे रही हूँ, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि कुछ

अक्सर हमारी दिनचर्या ऐसी होती है कि हमारे पास वक्त बहुत ही कम होता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो लिसनर्स इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो इस बात को मान रहे होंगे या अग्री भी करेंगे कि सभी के पास बहुत ज़्यादा वक्त होता नहीं है सुबह के टाइम में एक्सरसाइज के लिए, योग के लिए, योगा के लिए देना। लेकिन जब भी आपके पास वक्त हो, कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स होती हैं जिसको आप फॉलो अगर करते हैं तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसलिए फिट रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर देखते रहिए, क्योंकि उसको पाना बहुत ज़रूरी है। वक्त जो है ना वो निकलता चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जो वक्त आज हमारे पास है उसमें हमें बहुत कुछ करना है ये मानकर चलना चाहिए। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, सच है, आजमा कर देखिएगा। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात ओनली और आकाशवाणी रेनबो पर। आपकी दोस्त गीतांजलि है आपके साथ, एक और ट्रैक में प्ले कर रही हूँ आपके लिए, इसे सुनिएगा, इंजॉय करते रहिएगा। बहुत प्यारा, बहुत बहुत मज़ेदार सा सॉन्ग है, और आप इसे सुनिए, इंजॉय करते रहिए, हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और इंजॉय दिस ट्रैक, सुनिए इसे।

जी हाँ, ठीक ऐसे ही घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही हैं कि प्रोग्राम में अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द फिर से लौट रहे हैं ना, होगी मुलाकात। और हर मुलाकात बहुत ही ख़ास हो जाती है जब हम और आप मिलते हैं, और इतना अच्छा ये जो म्यूज़िक का सफ़र है ना, ये चलता है। फिलहाल जाते जाते एक बहुत ही अच्छा सा फाइनल ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, आप इसे सुनिएगा, इंजॉय करते रहिएगा, हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा सफ़र जो म्यूजिक से भरा हुआ है, खूबसूरत से गीतों से भरा हुआ है और हमारी बातों से भरा हुआ है, इस पर हम और आप यूं ही चलते रहें। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते ये ट्रैक मैं प्ले कर रही हूं आपके लिए, इसे सुनिएगा। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। और इस प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर से विचार के साथ, स्वीकार करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें, ये हार नहीं समझदारी है, शांति की शुरुआत यहीं से होती है। और प्रोग्राम की शुरुआत इसी विचार के साथ, तो कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट, और ज़रूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स और हमारे ये स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। उसी दुआ के साथ एक बार फिर से स्वागत आप सभी का गुड मॉर्निंग दिल्ली एन सी

आज मैं ऊपर, जमाना है पीछे, आसमान नीचे, मुझे पता है ये मिस हो गया। बताए जो शुरुआत है ना सुबह की, वो कुछ इस तरह से ही होनी चाहिए, इसी एहसास के साथ होनी चाहिए। खुद को शाबाशी देने के जितने भी अवसर हैं ना, उसमें शाबाशी खुद को ज़रूर देनी चाहिए, उनको कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही जानते हैं कि जहां आज आप हैं वहां तक पहुंचने में आपने कितनी मेहनत की है ना। तो बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपके अंदर का जो मौसम है वो यूं ही, उसमें कोई ना कोई धुन ज़रूर बजती रहनी चाहिए, कोई संगीत हमेशा साज छिड़ा रहना चाहिए, कोई मधुर संगीत जुड़ा रहना चाहिए। और फिर ये जो एहसास है इसके साथ आप बस बने रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मन का मौसम कैसे अच्छा रहे ये तो बात हो गई, लेकिन बाहर का मौसम कैसा है और किन तैयारियों के साथ आपको निकलना है इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अधिकतम तापमान अगर बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। और पूरा अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर मौसम में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो वो संभावना अगर है तो कुछ बदलाव होगा, बारिश की उम्मीद की जा सकती है, तो फ्राइडे तक का अनुमान लगाया गया है। लेकिन उससे पहले तापमान आप समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, तो अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ना अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। और ये सारी बातें आप जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, लिक्विड लिए और लाइट लें, और जो मौसमी फल हैं, सब्जियाँ हैं, उनका

सेवन करें और तरोताज़ा रहे। और फ्रेश सब्जियाँ खा के जैसे आपको अच्छा लगता है ना सब्जियों को देखते हुए, उनके कलर्स को देखते हुए, तो फिर जैसा आप खाते हैं वैसे आप बनते जाते हैं। और इस बारे में और ज़्यादा बात ना करते हुए गाने सुनाते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफ़र में, क्योंकि बहुत कुछ है ख़ास आपसे बात करने के लिए। आज के दिन में क्या ख़ास हुआ बिल्कुल आप जानेंगे गाने के उस पार।

0: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनुप्रिया कुलश्रेष्ठ, और ये साथ आपके साथ बिल्कुल बना हुआ है। और कब से ये जो साथ है आकाशवाणी आपके साथ निभा रहा है, और ये साथ, ये सफ़र बहुत ही खास रहा है, और सफ़र की बातें और कहानी तो सुन रहे हैं ना आप आकाशवाणी एट 90 पर।
1: नमस्कार श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एच 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ।

तो श्रोताओ, आज हम बात करेंगे युववाणी के बारे में। 21 जुलाई 1969 को आकाशवाणी ने देश की युवा ऊर्जा और उनकी आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए युववाणी सेवा का आगाज किया। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य 15 से 30 वर्ष के युवाओं को एक ऐसा समर्पित मंच प्रदान करना था जहां वे अपनी प्रतिभा और विचारों को खुलकर साझा कर सकें। युववाणी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके कार्यक्रम स्वयं युवाओं द्वारा ही तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मंच के माध्यम से साहित्य, संगीत, नाटक, वाद विवाद और साक्षात्कारों जैसे विविध कार्यक्रमों ने युवाओं के बीच एक नई चेतना जगाई। ये पहल युवाओं को प्रसारण का सक्रिय सहभागी बनाने और मीडिया में पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो श्रोताओ, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी @90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों खास रहा? 27 मई का दिन इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए दर्ज है। 1906 में मराठी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए पुणे में महाराष्ट्र साहित्य परिषद की स्थापना की गई। आज के दिन 1930 में महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को दांडी मार्च के बाद गिरफ्तार किया गया। 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी समाज सुधारक रमाबाई अंबेडकर का निधन हुआ। 2006 में इंडोनेशिया में आए विनाशकारी भूकंप में कम से कम 2900 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ नुपुर और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना हुआ है 8 बजे तक।

आज का दिन कई मायनों में खास है, खास इसलिए भी क्योंकि आज एक महान समाज सुधारक और लेखक उनकी पुण्यतिथि है। और जब भी हम किसी समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो बेहतर समाज और बेहतर देश बनाने में कई लोगों का योगदान होता है और उन्हीं में से आप हैं। जी हाँ, आज कंदुकुरी वीरेश लिंगम पंतुलु, आंध्र प्रदेश के एक महान समाज सुधारक और लेखक आप रहे, आपकी आज पुण्यतिथि है। आपने तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का, जी हाँ, आपको जनक माना जाता है। आपने बाल विवाह, दहेज प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते हुए महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। अगर हम आपके सामाजिक और साहित्यिक योगदान की बात करें तो आंध्र प्रदेश के, जी हाँ, आपके क्रांतिकारी सामाजिक कार्यों के कारण आपको अक्सर आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। और तेलुगु साहित्य में, आधुनिक तेलुगु साहित्य में जो आपका योगदान रहा है, उसके लिए आपको गद्य ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। आपका उपन्यास राजशेखर चरित्रमु तेलुगु साहित्य कला का साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। आपने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और विधवाओं के पुनर्वास के लिए कई आश्रम बनवाए। 1908 में आपने आंध्र प्रदेश में हितकारिणी स्कूल की स्थापना की। आपके इस योगदान के लिए हम हमेशा आपको याद रखेंगे। जो समाज में आपने परिवर्तन लाया, उसके लिए ये देश आपको हमेशा याद करता रहेगा। कंदुकुरी वीरेश लिंगम पंतुलु जी की आज पुण्यतिथि पर हम सभी उनको नमन।

और आज साथ ही पुण्यतिथि है भारत के पहले प्रधानमंत्री और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। आधुनिक भारत के शिल्पी माने जाने वाले नेहरू जी ने देश के आर्थिक नींव रखने के साथ साथ आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और लंदन से बैरिस्टर वकील की पढ़ाई पूरी की। 1912 में आप भारत लौटे और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद आप देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 में आज ही के दिन आप के निधन तक इस पद पर आप बने रहे। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और आपको जानते हैं बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से चाचा नेहरू के नाम से भी। बच्चों के लिए एक खास प्रेम आपका रहा, लगाव रहा, ये सोच। और आप जो मानते थे कि वाकई बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उन्हें यूं ही खुश और मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। आपकी पुण्यतिथि पर ये देश सदैव आपको यूं ही याद करता रहेगा। आकाशवाणी रेनबो पर आप सब सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

फल तोड़ते थे तो सिर्फ वो फल खुद ही नहीं खाते थे, अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। शुरू से शारीरिक रूप से बेहद फिट थे, हर सुबह दौड़ लगाते, पुशअप करते और इसी तरह से शुरुआत होती दिन की। अपने जीवन में अपने दोस्त को जीवन दान दिया। दोस्त पानी में तैराकी करते वक्त डूब रहा था।

वक्त आया तो खोसा में सेना की भर्ती रैली हुई और आपको चुना गया भारतीय सेना के लिए। और फिर आपने अपनी जाबाजी का जो उदाहरण है वहां भी पेश किया। भारतीय सेना के बेहद जाबाज सैनिक जिन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए 27 मई 2016 को शहादत प्राप्त की। हम नमन करते हैं हवलदार हंगपन दादाजी को। 27 मई 2016 को उत्तरी कश्मीर के शमसाबाड़ी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में आप शहीद हुए। वीरगति प्राप्त करने से पूर्व आपने 4 हथियारबंद आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस शौर्य के लिए 15 अगस्त 2016 को आपके मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मातृभूमि के रक्षक, वीर सपूत, पराक्रमी, क्या कहें। देश की रक्षा में आपने अपने प्राण न्यौछावर किए। आपकी शहादत को ये देश सशस्त्र नमन करता है। आपका सर्वोच्च बलिदान सदैव हम सब देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, और आकाशवाणी रेनबो का ये जो सफ़र है बिल्कुल जारी है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, बस इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि सफ़र में बहुत कुछ है ख़ास आपके लिए, और कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगी गीतांजलि शर्मा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे सेगमेंट में, और उसके बाद समय रहेगा जिसमें आपके साथ जुड़ेंगी ईशा, और आप सुनेंगे मैचलेस म्यूज़िक आर, और उसके बाद गीतिका नुयाल होंगी आपके साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में। आप जुड़े रहे हमारे साथ इसी सफ़र में जिसका नाम है आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, वेलकम ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी रेनबो। और जैसा कि मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जी हाँ, ये शो लेकर हम हर रोज़ आते हैं, आपके साथ रहते हैं और जो म्यूज़िक की दुनिया है इसमें आपको ले चलते हैं, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो भी हम आपसे साझा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातों को लेकर हम इस शो में चलते हैं और आज यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं यानी आपकी दोस्त गीतांजलि रहने वाली हूँ आपके साथ, इस प्रोग्राम को लेकर आई हूँ मैं और इस प्रोग्राम में हम बने रहेंगे। और कहते हैं कि म्यूज़िक की जो दुनिया है ना वो तो बहुत ही अलग दुनिया होती है, तो चलिए इस म्यूज़िक की दुनिया में खो जाते हैं। एक अच्छा सा ट्रैक पहले सुनिए, इंजॉय करते रहिए और इसके साथ साथ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन्स मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड और इन्जॉय दिस ट्रैक।

जी हाँ, ये फीलिंग्स जो है ना, ये बहुत कुछ आपके लिए कह जाती हैं, कर जाती हैं। वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ खास होने वाला है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की समस्या आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर रास्ता 20 मिनट का होता है, वहाँ 1 मिनट लग जाता है, क्योंकि लंबा ट्रैफिक जाम होता है, और सुबह के और शाम के वक्त तो पूछिए मत। तो ऐसे में साउथ दिल्ली को जैम से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि साकेत से बदरपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो काम है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में डीएमआरसी ने दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए साकेत, संगम विहार, खानपुर, पुल प्रहलादपुर और बदरपुर को जोड़ने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अगर ये हो जाता है ना, तो फिर ये लगा लीजिए आप अंदाजा कि जो ट्रैफिक है उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाएगी, यानी कि मुक्ति मिलेगी। और इसका काम जब शुरू होगा तो फिर लोगों के लिए एक जो रास्ता, क्योंकि साउथ दिल्ली जो है वो एक ऐसा दिल्ली का एक एरिया है जहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कई जगह आपस में एक दूसरे को एक रास्ते जो हैं वो जोड़ती हैं वहाँ से। अब ऐसे में अगर वहाँ पर काम हो जाता है शुरू, तो फिर तो कहने ही क्या है, क्योंकि ट्रैफिक से दो चार तो हर कोई होता है। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूँ कि दिल्ली में जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहने वाला है। दिल्ली में क्या, दिल्ली एनसीआर में क्या, बल्कि पूरे भारत में जो मौसम है वो थोड़ा सा परेशानी का सबब तो है ही, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन ऐसे में थोड़ी सी राहत कुछ दिनों के बाद ज़रूर मिल सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके अनुसार जो तापमान है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, आने वाले वक्त में थोड़ा सा और बढ़ सकता है, लेकिन कई जगहों पर राहत है। छुटपुट जो बारिश है वो भी हुई थी, और सच बताऊं तो मैं खुद ट्रैवल कर रही थी तो मैंने देखा कि हाँ, कुछ एरियाज हैं मथुरा वृंदावन टाइप जो जगह है, वहाँ पर कल रात को आंधी भी आई है, बारिश भी आई है, तो वहाँ थोड़ी सी राहत ज़रूर है। लेकिन जो लोग गर्मी में धूप में, चिलचिलाती धूप में बाहर निकल रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या ज़रूरी है बताती रहूँगी आपको, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने जैसा आपसे वादा किया है कि और भी बहुत सारे ऐसी खास बातें जो हैं वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि थोड़ा सा पानी की समस्या हो सकती है, लाइट जा रही है, जो बिजली है वो गुल हो रही है। ऐसे में आप कोशिश करें कि जो समस्याएं बिजली गुल होने से आ रही हैं, वो बिजली गुल होने से पहले आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारा फ़ोन है, उसे चार्ज करके रखिएगा, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज़ है, आजकल उसके बिना गुजारा नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारी एहतियात हैं जो आपको रखनी चाहिए। और क्या कुछ खास है बताती रहूंगी मैं आपको। और इसके साथ साथ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो सॉन्ग्स का सिलसिला है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। म्यूज़िक की दुनिया बहुत ही अलग है, जब इस दुनिया में हम खो जाते हैं तो फिर कुछ याद नहीं रहता, बशर्ते म्यूज़िक से लगाव और प्यार जो है ना आपका, वो बराबर होना चाहिए। और यहाँ यानी कि आकाशवाणी रेनबो पर हम म्यूज़िक से जोड़ते हैं अपने सभी लिसनर्स को। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। बहुत ही प्यारा सा ये सॉन्ग ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, मैं यानी आपकी दोस्त गीतांजलि आपके साथ।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं भी ये जोर से कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी सोए हैं, भाई उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। और कहते हैं कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, तो अगर अपने दिन को अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी उठें। और जो उठ चुके हैं, जो जा रहे हैं अपने ऑफिस या जा रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर्स या फिर कहीं पर भी जहाँ आप काम से निकले हैं, किसी से मीटिंग के लिए निकले हैं, उन्हें मैं ज़रूरी टिप्स जो हैं वो देना चाहूँगी कि ट्रैफिक का बहुत ख्याल रखिएगा। जैसे इससे पहले मैंने बताया है, जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है उन लोगों को भी बता दूँ, ट्रैफिक की थोड़ी समस्या रहने वाली है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में कई लाइव इवेंट्स जो हैं वो भी होने वाले हैं। इसमें एनिमे इंडिया है दिल्ली की यशु भूमि की में शानदार जो इवेंट है ये आयोजित हो रहा है, और यहाँ आपको टिकट्स भी इजीली मिल जाएंगे। थिएटर और ड्रामा जिन लोगों को पसंद है वो काहे मुझसे इंडिया टूर जैसे सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही ऑकलैंड से लेकर दिल्ली के प्रमुख स्टेडियम में वीकेंड्स पर लाइव बैंड और सिंगर्स के भी शोज हैं। तो अगर आप अपने दिन को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं, खूबसूरत सा बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जो भी लिसनर्स हमें इस वक्त सुन रहे हैं वो अगर चाहें तो ये ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, जैसे मैंने बताया। और देखिए, मैं ये करने के साथ साथ, यानी कि आपके लिए ये खास जानकारियां जुटाने के साथ साथ आपके लिए जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं ना, उस पर भी मेरी नजर बनी हुई है। और एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग है, खैरियत पूछो। जी हाँ, हमारे पास सब कुछ है, बस वक्त की कमी है। वक्त है लेकिन थोड़ी सी फीलिंग्स की कमी है। आधुनिक बनिए लेकिन इतने नहीं कि आपसे रिश्ते छूट जाएं। खैरियत पूछते रहिए और इंजॉय करिए इस ट्रैक को, खैरियत पूछो। अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही अच्छा सा ट्रैक है ये, सुनिएगा, एंजॉय करिएगा। और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको जरूर कहूंगी कि वॉल्यूम थोड़ा कम रखें और गाड़ी संभल कर चलाएं। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

0: लियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

जी हाँ, जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया उन लोगों को एक बार फिर से बोल दूं कि जी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। जी हाँ, ये गुड मॉर्निंग भी है और हमारे शो का नाम भी है जिसको इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर। और मैंने जैसे आपको कई ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव आप चाहते हैं, आज के दौर में हम इतना बिजी हैं ना कि हंसने बोलने का वक्त ही नहीं मिलता है। दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, काम है, सिर्फ काम है। तो ऐसे में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप घूम सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी हौज खास, गुरुग्राम, कनॉट प्लेस के पब्स में अक्सर इस तरह के कॉमेडी शोज जो हैं वो दिखेंगे आपको, सुनेंगे आप, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर भी। इसके अलावा अगर पेंटिंग्स का आपको शौक है, पेंटिंग का, तो आप कई वर्कशॉप हैं उनका भी आयोजन है। और अगर आप संस्कृति से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड महोत्सव है, रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में ये आयोजित होने वाला है भव्य महोत्सव। अपनी लोक संस्कृति, पहाड़ी व्यंजनों और पारंपरिक नृत्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो अगर आप चाहें तो इसके लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ, और ख़ास तौर पर जो चाहते हैं कि कई चीज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं ईजिली, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें पता हो ना, तो लाइफ की जो भाग दौड़ है, ये जो टेंशन है, ये थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि भाग दौड़ के इस दौर में, या कह लीजिए कि आधुनिकता के इस दौर में, हम अपनी ही चीज़ों से या ख़ुद से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए, बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की हलचल कभी ख़त्म नहीं होती है, चलती रहती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जुड़े रहना है खुद से। खुद का दामन थाम लेंगे तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छे दोस्त रखिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी का फलसफा क्या है, बिल्कुल सही, जिंदगी का फलसफा है किसे जीते जाइए। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप दिल्ली एनसीआर ऑनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ। एंजॉय दिस ट्रैक।

कितने स्पेशल सी फीलिंग है ना, ये किसी की लाइफ में बड़ा ही स्पेशल होना। वैसे क्या क्या स्पेशल है ये मैं आपको लगातार बताती जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाह रहे हैं कहीं घूमना फिरना तो आप जा सकते हैं। फैशन और लाइफस्टाइल, अगर इससे आपको थोड़ा सा लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, तो आप जा सकते हैं चाणक्यपुरी में, जहाँ पर मैं 120 से ज़्यादा डिज़ाइनर्स जो हैं उनका कलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। द फेरी टेल्स राखी एडिट जैसे जो शॉपिंग इवेंट्स हैं द अशोक चाणक्यपुरी में लगे हुए हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ऐसी जगह अगर आप घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और क्या कुछ खास रहने वाला है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि ट्रैफिक का बहुत ख्याल रखिए, खासकर साउथ दिल्ली में जा रहे हैं अगर आप, तो वहाँ पर आपको हैवी ट्रैफिक मिल सकता है। और अगर हैवी ट्रैफिक मिले तो ट्रैफिक में फंसे रहने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए हम म्यूज़िक से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, म्यूज़िक की दुनिया ही अलग है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, कहाँ आकाशवाणी रेनबो पर। आपकी दोस्त गीतांजलि है आपके साथ। ये दूरियां ट्रैक जरा आप सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में, बड़ा ही ज़बरदस्त ये सॉन्ग है और इसे जब भी लोग सुनते हैं तो जाने कहाँ कहाँ खो जाते हैं। आप भी खो जाइए, लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, ब्रेक पर ध्यान रखते हुए, साइड में ध्यान रखते हुए, कुल मिलाकर बहुत अच्छे से आप ड्राइव करिए। और ट्रैफिक में अगर फंसे हैं, यू नेवर नो कितना वक्त लगे, लेकिन इंजॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर चल रहे सॉन्ग को।

जी हाँ, ये जो चिलचिलाती गर्मी है ना, इससे दूरियां बना लीजिए। और कैसे बनाएंगे आप? अगर आपको लग रहा है कि कहीं घूमने जाना है, चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे जितने भी राज्य हैं भीषण गर्मी से जूझ रही हैं। लगातार गर्मी है, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो ऐसे में पहाड़ी राज्यों में अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल है, आप जा सकते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। लोग पहाड़ों की ओर रुक कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल आप जाइए, मनाली जाइए, उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में आप वहाँ का भी रुख कर सकते हैं और थोड़ा सा गर्मी से राहत जो है ना वो आपको मिल सकती है। तो अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR On आकाशवाणी रेनबो पर। आपकी दोस्त गीतांजलि लगातार आपके साथ बनी है, लेकिन क्या करें, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि घड़ी की सुइयां है ना, ये हमें रुकने का मौका ही नहीं देती हैं। और समझदार इंसान वही होता है जो वक्त के साथ साथ चले। तो चलिए, वक्त के साथ साथ चलते हुए इस प्रोग्राम का फाइनल ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि इस फाइनल ट्रैक के बाद भी प्रोग्राम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आकाशवाणी रेनबो पर, जिन्हें आप सुनेंगे और आपका दिन, आपका मूड सब कुछ बेहतर होने वाला है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिएगा आकाशवाणी रेनबो। फिलहाल अपनी दोस्त गीतांजलि को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने के साथ साथ, जाने से पहले एक ट्रैक तो मैं आपके लिए प्ले कर जाऊंगी, बहुत ही बेहतरीन सुनिधि चौहान की आवाज में। ये ट्रैक एंजॉय करिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अपनी दोस्त गीतांजलि को फिलहाल इजाजत दीजिए, बहुत जल्द मिलूंगी आपसे, प्रॉमिस कर जा रही हूँ, और मेरा प्रॉमिस कभी फेक नहीं होता, जानते हैं आप। सो एंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड। टेक केयर, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर प्रोग्राम दिल की तरह ने गाने नए पुराने। और ये समय हो चुका है बेशक इसी प्रोग्राम का, और ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके साथ बना रहेगा। इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ बनी रहूँगी 10 बजे तक, और दिल की तरह ने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूज़िक जो है आप यहाँ पर सुनेंगे। तो बस शुरुआत हो चुकी है उसकी, जैसे ही हम आपसे जुड़ते हैं तो शुरुआत हो जाती है, और ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसी स्टेशन पर जिसका नाम है आकाशवाणी रेनबो।
2: दिल के तराने गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: मोनिका।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने गाने नए पुराने में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना

0: आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: Welcome back to Akashvani Rainbow 102.6 MHz on the program Matchless Music Hour. A quick recommendation before moving on to the next track. If you are in Delhi and looking to escape the heat, do visit the Kiran Nadar Museum of Art in Saket. It is currently hosting an exhibition by Tayeb Mehta titled Bearing Weight with the Lightness of Being. The entry to the exhibition is free and it is on till the 30th of June. The perfect cool afternoon escape from this blazing sun. Now let's head straight into a track that will instantly put a smile on your face. Here is John Denver with Sunshine on My Shoulders.

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
3: वेलकम बैक टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड यू आर एंजॉयिंग म्यूजिकल वाइब्स ऑन द प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिकर विद मी ईशा गोयल माथुर। वंस अगेन प्लेइंग द सॉन्ग From the classic melody, 1973 film Loafer, Mohammad Rafi singing, Aaj Mausam Bada Beiman Hai.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।

आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वेलकम बैक टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज ऑन द मैचलेस म्यूजिक कार विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द 1962 क्लासिक बर्मा रोड सॉन्ग बाय लता मंगेशकर एंड तलत महमूद. वी आर ऑल कॉट अप इन द डेली रश बट द म्यूजिक रिमाइंड्स अस टू स्लो डाउन एंड लिसन. हियर इज द ब्रिलियंट इयान एंडरसन विद जेथ्रो टल जेंटली रिमाइंडिंग अस दैट लाइफ इज अ लॉन्ग सॉन्ग.

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ. मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाल इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवृद्धि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल आज बहुत लंबे समय के बाद लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। वैसे तो आप इस प्रोग्राम को रोज सुनते हैं, लेकिन आज अपने अंदाज में, यानी कि आपके दिल की बात। आपके दिल की बात छुपी हुई है हर एक उस बात में, उस चाहत में, जिसे हम पेश करते हैं आपके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप करते हैं अपने बॉलीवुड सितारों से बेपनाह मोहब्बत और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की चाहत रखते हैं आप। इसीलिए हम हर बार आपके

लिए आते हैं ये शो जिसको आप और हम मिलकर कहते हैं बॉलीवुड ट्रेल। सो बने रहिए अपनी इस दोस्त गीतिका उनियाल के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें।

बिल्कुल, अपने जीवन के हर एक पल को आप जी लीजिए, क्योंकि हर एक पल आपसे यही कहता है कि जिसने मुझे जी लिया उसको मैंने सब कुछ दे दिया, क्योंकि जिसने हर एक पल को जिया उसने ये जान लिया है कि जीवन को जीने का सलीका क्या है। कभी खुशी है तो कभी गम भी है, लेकिन गमों के बाद जब बादल छटते हैं और बहुत तेज बारिश होती है, तब महसूस होता है कि हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे और हमने व्यर्थ ही पलों को गवा दिया ये सोचते हुए कि घने काले बादल हैं। तो जब बादल काले काले नजर

आने लगे तो सोच लीजिए कि बारिश जरूर होगी। अब बारिश होती है उन लोगों की जिंदगी में जरूर जो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते, जो हमेशा हर दम हर पल यही जानते हैं कि जिंदगी जो उनको देती जा रही है वो उसे प्राप्त करते जाएंगे और उस राह पर चलते जाएंगे। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो तमाम इतने सारे चमकते हुए सितारे हैं वहाँ, और हर सितारे की पीछे की कहानी यानी कि हर सितारे की सितारे बनने की कहानी अगर उसकी ज़बानी सुनी जाए तो आप यही कहेंगे, आप यही सुनेंगे कि उस एक्टर ने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की और संघर्षों के बाद आज वो चमक रहा है। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आपने पर्दे पर देखा, भले ही उनका रोल, उनका अभिनय एक सीमित समय के लिए स्क्रीन पर नजर आया, लेकिन उन्होंने जब जब अपना परचम लहराया तब तब आपने यही कहा कि इनसे बेहतरीन कलाकार कोई और नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक्टर दिनेश कौशिक की। आपने टेलीविजन पर यानी कि सोप ओपेराज में तो उनको बहुत देखा होगा, दूरदर्शन पर ये काफ़ी नज़र आए और उसके उपरांत फिर और भी चैनल्स में इनका रुख हुआ, और कहते हैं कि टीवी टेलीविजन आपको रास्ता दिखाता है बड़े पर्दे की ओर यानी कि सिल्वर स्क्रीन की ओर। तो हमारे जो दिनेश कौशिक साहब हैं इनका आज जन्मदिन है, 27 मई 1957 को भटिंडा पंजाब में जन्मे, वहीं इन्होंने इंडियन थिएटर में पोस्ट ग्रेजुएट की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। मुंबई आए, यहाँ पर भी इन्होंने प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और बहुत सारे प्लेज में अपना दम खम साबित किया। जैसा कि मैंने कहा कि दूरदर्शन से इनकी शुरुआत हुई और उसके उपरांत बहुत सारे कमर्शियल्स, टीवी कमर्शियल्स में नज़र आए, और कहते हैं कि ज़िंदगी पग पग बदलती है उन लोगों के लिए जो मेहनत करना नहीं छोड़ते, जो ये नहीं कहते कि काम जो भी आए, काम जो भी मिले उसे शिद्दत से निभाना है, और शिद्दत से निभाते चले गए दिनेश कौशिक साहब। टेलीविज़न की दुनिया में इन्होंने बेशुमार कैरेक्टर्स प्ले किए, नामी किरदारों में, नामी सीरियल्स में नज़र आए, और उसके उपरांत फिर सिल्वर स्क्रीन ने इनको अपनी ओर आकर्षित किया। अंकुश, आर्यन, जीना तेरी गली में, आज का गुंडा राज, जो जीता वही सिकंदर, महाकाल, दिलवाले, सरफरोश, बधाई हो बधाई, तेरे नाम, मदहोशी, वादा, ये तमाम फिल्में हैं जिनमें वो नज़र आए और आज भी ये काम करते जा रहे हैं। रोमियो S3 जो 2025 में आई थी, इस फिल्म में भी ये नज़र आए हैं। तो सच्चा कलाकार वही है जो अपने किरदार को सच्चाई से निभाता है, भले ही उसका किरदार उस फिल्म में छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए वो पूजनीय है। और जब आपके लिए आपका काम पूजनीय हो जाता है तो आप यही कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर।

अजी हमारी बात भी मान लीजिए, जान लीजिए, हम जो कहते हैं एकदम सच कहते हैं, और आप भी यही कहते हैं कि आपने एकदम सच कहा, क्योंकि कहते हैं कि ना आंखों देखा ना कानों सुना कभी गलत हो सकता है। अब कानों सुना कैसे गलत हो सकता है जब आप संगीत से इतना प्यार करते हैं, अपने बॉलीवुड सितारों से इतना प्यार करते हैं, तो आपकी पार की नज़र और आपके कान दोनों दुरुस्त है। अब रीमेक्स यानी कि कानों का जो रीमेक होता है ना, हम हर बार यही कहते हैं जो ओरिजिनल में बात है ना वो किसी और में नहीं। हालांकि रीमेक सुनने के बाद हमारा दिल हिचकोले तो ज़रूर मारता है, क्योंकि रीमेक जब बनता है तो उसको रीमिक्स भी कर दिया जाता है, यानी कि उसकी बीट्स हाई कर दी जाती हैं, और उसके बाद कभी कभी एक रोमांटिक गाना पार्टी सॉन्ग बन जाता है। लेकिन लेकिन ओरिजिनल की तो क्या बात होती है, और हम हर बार यही कहते हैं कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल सुनने में जो मज़ा आता है वो किसी और में नहीं। बहुत से गाने ऐसे आए हैं ज़रूर जिन पे हम थिरके हैं ज़रूर, जो हमारे कानों को ज़रूर भाता है, लेकिन जब फिर हम ओरिजिनल पर जाते हैं तो हमारा दिल धड़कता है ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। अब देखिए ना, अब एक नया गाना आया है चुनरे चुनरे, आपने तो काफ़ी गाया है ना मेरे साथ यानी कि हमने आपके लिए बहुत बार प्ले किया ये गाना स्टेशन से, FM रेनबो आकाशवाणी आप तक पहुंचाता है एकदम ओरिजिनल ट्रैक्स, और आपने भी इस नगमे को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। बीवी नंबर वन का ये नगमा है और बहुत ही प्यारा है, और जब इस नगमे को हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इसका स्टार कास्ट हमारी आंखों के आगे नज़र आने लगता है। सलमान खान इस फिल्म में, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन, अनिल कपूर, तो वो तमाम किरदार जो है ना कुछ गानों को सुनने के बाद हमारे आंखों के आगे नज़र आने लगते हैं। तभी तो मैंने कहा कि आपके कान और आपकी आँखें दोनों टकाटक हैं। अब क्योंकि दोनों टकाटक हैं इसीलिए

आप हमेशा रीमेक सुनने के बाद ओरिजिनल की ओर चल पड़ते हैं। अब ये जो गाना है चुनर चुनर, जिसका चुनरी चुनरी, जिसका रीमेक अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले अपलोड हुआ है, है जवानी तो इश्क होना है, इस फिल्म का ये रीमेक है, गाना नहीं रीमेक है। और जब ये सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो बहुत से दोस्तों ने नाराज़गी व्यक्त की और यही कहा कि इसमें वो बात नहीं जो ओरिजिनल में है। इस फिल्म की अगर हम बात करें और इस गाने की खास तौर पर बात करें तो इसमें वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर नज़र आ रहे हैं, थिरक रहे हैं, लेकिन मज़ा कितना आ रहा है ये सोशल मीडिया के ज़रिए तो हमें पता लगा, लेकिन आप हमें बताइए कि अगर आपने इस का रीमेक यानी कि चुनरी चुनरी का रीमेक सुन लिया है तो आपको ये कैसा लग रहा है। सोशल मीडिया थोड़ी देर दूर रखते हैं क्योंकि आपसे और हमारा जो संबंध है, जो वार्तालाप है, जो कन्वर्सेशन है आपके और हमारे बीच, वन टू वन है, तो आप मुझे ना मैसेज करके ज़रूर बताइएगा जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर आपने रीमेक सुना है तो आपको कौन सा ट्रैक ज़्यादा पसंद आया, पुराना वाला ओरिजिनल या फिर ये नया रीमिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल आपके लिए यही गाना हमारी ओर से यहाँ निकलता हुआ आप तक पहुँचता हुआ, ये देखिए पहुँच रहा है धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, हौले हौले, और आपके दिलों तक छू रहा है। और जब इस नगमे को सुनने के बाद आपको महसूस होने लगे ना तो आप कह दीजिएगा वाह क्या बात है, क्या होने लगे कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, जिसे हम हैं आपके लिए हरदम हर पल

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स वो घड़ी आ गई जिसमें हम पूछते हैं आपसे सवाल, आपने गाना सुनाना भी चिनरी चिनरी। नृत्य तो आपने ज़रूर किया होगा, गर्मी ज़्यादा है जानती हूँ मानती हूँ, पर कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में हम जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और ये सोचते हैं कि जब गर्मी आएगी ऑटोमेटिकली लूज़ करना शुरू कर देंगे, तो आप ये मान लीजिए कि हमने आपसे वर्जिश करवा दी, जितना भी स्वेट्स आपने निकालना था निकाल लिया, पानी खूब सारा पी लीजिए क्योंकि उसके बाद आपको देना है हमारे सवाल का सही सही जवाब। ये गाना आपने सुना जिस पर आप तिरके, इसी के मुतालिक आप पे सवाल भी है आज का, जिसके जरिए आप बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। तो आपको हमें बताना है ये जो गाना था ओरिजिनल गाना बीवी नंबर वन से, ये फिल्म बीवी नंबर वन कौन से साल में रिलीज हुई थी, कौन से साल में सिल्वर स्क्रीन बड़े पर्दे पर नजर आई थी, जब आप अपने परिवार को लेकर अपनी फैमिली को लेकर, या फिर जब आप उस उम्र में यानी कि उस साल में आप छोटे रहे होंगे अपने माता पिता के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज मेट्स के साथ इस फिल्म को देखने गए होंगे, तो वो साल कौन सा था सवाल घुमा दिया देखिए मैंने, तो वो साल कौन सा था जिस साल आप इस फिल्म को देखने के लिए गए थे, या फिर आपने जब पहली बार इस फिल्म को देखा था तो खुशी तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन रिलीज़ होने के हो सकता है बहुत समय बाद आपने टीवी पर देखी हो, तो आप ऐसा कीजिए ये बताइए कि किस साल आप गए थे सिनेमा हॉल इस फिल्म को देखने के लिए। अब ये मत कहिएगा कि दोबारा से लगी थी हम देखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप हमें बताएं कि ये फिल्म बीवी नंबर वन कौन से साल रिलीज़ हुई, और रिलीज़ आप जानते हैं साल कौन सा है, आप जानते हैं हमारा नंबर भी क्या है 9868107070। इस जादुई नंबर पर आपके पैगाम तुरंत हम तक पहुंचते हैं, तो जल्दी से भेज दीजिए अपने सही सही जवाब हम तक। हम कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार, तब तक आपके लिए अगला ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप ना इनके भी बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं, किन के इनके इस गाने के बताते हैं किन के बात कर रही हूँ।

0: बिल्कुल हैं आप इनके सच्चे वाले फैन, अलका याग्निक और कमाल खान की आवाज़ में सुना आपने इस नगमे को, मैंने प्यार क्यों किया, इन्हीं के बारे में तो मैं बात कर रही थी। अब आप मुझे बताइएगा कि आप क्या इनकी आवाज़ों को पसंद करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप पसंद करते हैं, क्यों करते हैं फिर सवाल छोड़ दिया आपके लिए। खैर कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब भी या तो आप दे देंगी या मैं दे दूंगी, क्योंकि आपकी और हमारी दोस्ती एकदम मजबूत है। जिसको भी आंसर आते होंगे वो तुरंत बता देता है। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद होंगी बहुत सारी बातें आपके साथ।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और आपके धुरंधर आजकल बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। आपके धुरंधर यानी कि रणवीर सिंह, जब से उन्होंने फरहान अख्तर की डॉन 3 के लिए मना कर दिया है कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, तब से गहरी परेशानी में आ चुके हैं। खुद भी नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है उनके साथ। भाई डॉन तो एक ही है और एक ही रहेगा, और वो है हमारे अमिताभ बच्चन साहब, क्योंकि डॉन में उनकी भूमिका इतनी लोकप्रिय रही है कि आज भी हमारे आंखों के आगे जब भी डॉन का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन साहब का नाम लिया जाता है, कि उन्होंने अपने किरदार को जिस तरह से स्थापित किया वो सच में इंडस्ट्री के डॉन बन गए। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलता है, डॉन भले ही एक क्यों ना हो लेकिन डॉन के पदचिन्हों पर चलना हर किसी की चाहत होती है। इसीलिए जब शाहरुख खान साहब को अप्रोच किया गया डॉन 2 के लिए, तो कहीं ना कहीं मन में इज्जत थी, और ये इज्जत इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब को इंडस्ट्री के बड़े से बड़े कलाकार बहुत मानते हैं, और डॉन का किरदार निभाना अपने आप में काबिले तारीफ था। लेकिन यही कहेंगे कि क्योंकि अमित जी हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं, और क्योंकि जब कोई आपके दिल पर राज करता है वो पूजनीय हो जाता है, ऐसे में शाहरुख खान साहब ने बतौर डॉन का किरदार निभाकर अपने लिए ज़रूर एक स्थान बनाया, लेकिन उसके बाद फिर ये रोल दिया गया यानी कि डॉन 3 के लिए अप्रोच किया फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को। बहुत लोगों ने बहुत ट्रोल किया, ये कहा कि नहीं, रणवीर सिंह डॉन 3 के लिए, डॉन के जो किरदार है उसके काबिल नहीं है, उनको इस किरदार से ना नवाजा जाए, उनको किरदार ना दिया जाए। लेकिन रणवीर सिंह का भी ये कहना था, ये अपील थी लोगों से कि एक बार उन्हें एक चांस ज़रूर दिया जाए। फरहान अख्तर ने काम किया था रणवीर सिंह के साथ पद्मावत में, और वो काफ़ी प्रभावित थे इनकी एक्टिंग स्किल से, और ये चाहते थे कि रणवीर सिंह जो है वो डॉन 3 में अपना दमखम स्थापित करें। पर हुआ यूं जनाब कि अब थोड़े से हालात बदल चुके हैं, रणवीर सिंह ने साफ साफ मना कर दिया कि अब वो डॉन 3 में काम नहीं करने वाले हैं। अब इस बात पर आप जानते ही हैं कि फरहान अख्तर को गहरी चोट लगी और वो फिल्म गिल्ड के पास पहुंचे अपनी सुनवाई लेकर, यानी कि अपनी बात लेकर, और अब उन्होंने रणवीर सिंह से पैसे वापस मांगे। देखिए ऐसा ही होता है, हम कभी किसी के चहीते हो सकते हैं, लेकिन चहीता होने का अर्थ ये नहीं कि हम प्रोफेशनलिज्म को भूल जाएं। जब हम किसी से वादा करते हैं तो उस वादे को निभाना हमारा फ़र्ज़ होता है। फिल्म मेकर्स आपस में उनकी दोस्ती एक अलग बात है, लेकिन जनता जब इंतज़ार करती है ना तो उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। फरहान अख्तर ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और कहा कि वो रणवीर सिंह से रिकवरी चाहते हैं 40 करोड़ रुपए की एज अ कंपनसेशन। अब देखते हैं जनाब क्या होता है। उसके बाद फरहान अख्तर ने अप्रोच किया फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज कंप्लेंट के साथ कि रणवीर सिंह ने आखिरी वक्त में उन्हें धोखा दे दिया। 2025 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी, वो शूटिंग शुरू नहीं हो पाई, लेकिन अब FWICE ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। लोगों ने ये कहा कि शायद FWICE रणवीर सिंह को बैन कर रहे हैं, लेकिन FWICE ने भी इस बात की इत्तला दी है कि FWICE कभी भी किसी एक्टर को बैन नहीं करता है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मांगता है जितने भी फ्रेटर्निटी यानी कि इंडस्ट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स, कि इस कलाकार के साथ काम ना किया जाए। तो आप कांस सीधी तरीके से पकड़िए या उल्टी तरीके से, लेकिन कान तो पकड़ लिए जनाब, भले ही वो बैन शब्द का इस्तेमाल

नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह के साथ अब कोई काम ना करे, इसमें कोऑपरेट करे। अब ये निर्भर करता है फिल्म मेकर्स पर कि क्या वो सच में FWICE की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसमें FWICE का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, उन्होंने तो सिर्फ कहा है कि आप रणवीर सिंह के साथ नॉन कोऑपरेशन यानी कि उनके साथ काम ना करें। अगर कोई फिल्म मेकर करता भी है तो ये उसकी मर्जी। तो इस बात पे ना इस बात पे हम यही कहेंगे कि आजकल हमारे रणवीर सिंह ज़रूर आँख मार रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे, आँख तब भी मारी जाती है जब आप नर्वस होते हैं। वैसे वो एक्टर नर्वस होने वाले तो नहीं है, लेकिन ये नगमा हम अपनी तरफ से इनके लिए प्ले कर रहे हैं कि अब आपने मना कर कौन सी चाल खेली है, या फिर कौन सा एक नया प्रोजेक्ट जो आपके हाथों लग गया है जिसकी वजह से आपने डॉन 3 के लिए मना किया, ये तो आप जाने, आप आँख मारें।

समय हो गया 11:45 में हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते का ओनियाल प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड रील्स और बॉलीवुड रील्स में हम नमन कर रहे हैं कैसे कलाकार को जिसने अपनी शख्सियत से जिसने अपनी कला से जिसने अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया ना केवल भारत लेकिन विदेशों में भी उनकी अभिनय उनकी कला को सराहा गया। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हम हरदम हर पल उन्हें याद करते रहेंगे। 25 मई 2026 को हमारे इस कलाकार जाने माने अभिनेता ही मैन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र साहब को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया और हेमा मालिनी उनकी धर्मपत्नी और उनकी सहयोगी उनकी को एक्ट्रेस ने उनकी ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों से उनके कर कमलों से पद्म विभूषण से अलंकृत हमारे धर्मेंद्र साहब का ये पुरस्कार अपने हाथों में लिया। इमोशनल

कलाकार की अदायगी, उसके अभिनय की, और कहीं ना कहीं उसका अभिनय हमारे जीवन से जुड़ा होता है। उसकी कला में हम कहीं ना कहीं अपने जीवन की छाप देखते हैं, और जब हम किसी कलाकार में अपने जीवन की छाप देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस जीवन से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि अपने ही अपने तो अपने होते हैं। और धर्मेंद्र साहब की निजी ज़िंदगी में भी उनके बेटे, उनकी जितने भी निजी जन थे, उनके अपने थे और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और बॉलीवुड ट्रेल्स में वो घड़ी आ गई जब हमें हमारे लकी यानी कि हमारे सभी श्रोता लकी हैं यानी कि हमारे बॉलीवुड सरताज को हम ढूंढ निकालते हैं। और हमने ढूंढ निकाला है हमारे आज के बॉलीवुड सरताज को। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो हमारे साथ आज कौन है? हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, अपना नाम बताएं आप हमें। वेरी गुड। तो अर्चना जी, आप हमें बताएं कि आज हमने ये सवाल पूछा कि फिल्म बीवी नंबर वन कौन से साल रिलीज हुई थी, ये आप हमें बताएं। जी बहुत बहुत बधाइयां आपको, आप हमारे आज के बॉलीवुड सरताज हैं अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर नई दिल्ली से। तो ये बताइए, फिल्में देखती हैं आप? जी वाह, क्या बात है। तो हम चाहते हैं कि आप यूं ही रेनबो सुनते रहें और अपना प्यार हम तक पहुंचाती रहें, बरसाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ अर्चना जी, जो हमारी आज की बॉलीवुड सरताज बनी। और इसके साथ ही हम आप सभी दोस्तों को बधाइयां देना चाहते हैं क्योंकि आपके बिना ये प्रोग्राम कहाँ मुकम्मल हो सकता है। हमारे पास संदेश आया है धर्म भाटिया जी का और इन्होंने सही जवाब भी लिखा है और साथ में ये भी कहा है कि अलका जी की आवाज़ और कमाल खान ने जिस तरह से उनके साथ गाया है काबिल तारीफ। बिल्कुल आपने सही कहा। संदेश भेजने वालों में सुनीता नेगी हैं सोलन यूपी से, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपके प्यार के लिए। संदेश लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। सोनू का बिजनौर से हमारे पास संदेश है और है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से, विशाल मल्होत्रा का सिरसा हरियाणा से, काना का मेरठ से संदेश है, मोहम्मद कासिम का बिजनौर से संदेश है, ईशा का धर्मशाला से, आसिफ सैफी का हमारे पास संदेश आया है, सही संदेश सही जवाब से भी दोस्तों ने भेजा है, कान से मोहम्मद फुरकान, दानिश खतौली।

से चितरंजन सक्सेना ने नोएडा से संदेश भेजा है, जयनंद त्यागी ने मोदी नगर से, और इन्होंने भी ये लिखा है ओल्ड वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रवीण चौहान खारगोन मध्य प्रदेश जी, चुनरी चुनरी सॉन्ग जो है ओरिजिनल वर्जन इन्हें भी बहुत पसंद है। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, सलीम मलिक का मेरठ से संदेश है, और है मोहम्मद फुरकान का संदेश है हमारे पास, ये है सियाल मेरठ से। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिफाली का जी संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का अपना प्यार बरसाने के लिए, और हम चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच ये जो मोहब्बत है ना यूं ही बरकरार रहे, आप और हम यूं ही नाचते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, खुशियां बांटते रहें, और जब खुशियां बांटते हैं ना तो यही कामना करते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि एक हेल्दी जीवन के बिना जिंदगी बेहतर मुमकिन नहीं है। मान लीजिए दुनिया की कितनी भी लग्जरीज क्यों ना हो, लेकिन अगर अच्छा स्वास्थ्य ना हो तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुनते रहिए FM रेनबो अपने आकाशवाणी पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है।

नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द वंडरफुल पीपल आउट देयर। वी मीट अगेन ऑन दिस आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स। द प्रोग्राम इज प्ले इट कूल एंड यू आर विद मी योर होस्ट ईशा गोयल माथुर एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू द परफेक्ट साउंड ट्रैक टू पावर यू थ्रू द मिडल ऑफ दिस वीक। Right now, we are unpacking a theme close to everyone's heart: gifts. Just skip the thought of wrapping paper and price tags. It's the treasure that money cannot buy. The comfort of a quiet morning, a true friend who just gets you getting another chance at work. Well, these are life's real gifts: love, understanding, and honestly, just the gift of you all sharing this hour with us at Akashwani Rainbow 102.6 megahertz. Speaking of beautiful gifts, sometimes the universe gives you a person who completely lights up your darkest nights. A friend, a true friend, who makes the whole world fade away just because they feel you are their entire galaxy. Here is Spice Girls with headlines, Friendship Never Ends.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: Welcome back to Akashani Rainbow 102.6 MHz and you are listening to the program Play It Cool on this sultry and hot May morning. May afternoon. If you're just tuning in, our theme today is gift. So think about someone who has just been a true gift in your life today, waiting for your messages. So the next best thing today you can give yourself is a track that matches your energy. This next one is a total anthem for anyone who is simply working hard and making things happen today. This is Sabrina Carpenter with Busy Woman.

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि

0: क्या है?
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: Time for a short break. Do stay tuned and we'll be right back with messages.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: Welcome back once again to 102.6 megahertz of Akashvani Rainbow for the program Play It Cool with me, Isha Goyal Mathur. For all the lovely listeners who enjoy the Western music hour, you will meet Devarshi Rawat at 7 p.m. with Northeast Hues and again at 10 o'clock with Rainbow Classics. So there are a lot of messages coming, and I have one from Samant from Bangalore. He says, I'm enjoying your program a lot and like your song selection. Today we are talking about gifts, and I believe it is always good to get a gift. Yes, it is. Physical gifts may not be possible, but a word of love, encouragement and appreciation will go a long way to my day. I always appreciate my near and dear ones by just saying hello and inquiring about how they are doing. Yes, that's a beautiful feeling, and a simple smile is enough to make somebody happy and pull along the week, the day, the hour. The next song I'm going to play for you is by Britney Spears, I'll Be There.

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन में। और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे हमारे एक अहम विषय पर, टुवर्ड्स टोबैको फ्री फ्यूचर। 31 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इस बार का थीम है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन। हम चाहते हैं कि हमारा ये देश टोबैको मुक्त हो जाए, हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जिए। और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि हम टोबैको को कह दें, यानी कि जितना भी जो लोग भी तम्बाकू का सेवन करते हैं उसे बाय बाय कह दें। और बाय बाय कहने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि क्यों टोबैको हमारे लिए हानिकारक है। और अगर आप इसकी चपेट में आ चुके हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए दुनिया में कोई ऐसा है जो आपको मार्ग दिखाने के लिए एकदम तैयार है। बताना चाहेंगे, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील वात्सायन जी, जो एक लाइफ कोच हैं और एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं। सबसे पहले हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ श्री सुनील वात्सायन जी का। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी मीठी सी मुस्कान, मंद मुस्कान से इस बात की अनुभूति हो रही है कि एक देश, यानी कि हमारा देश भारत, जिसको हम टोबैको मुक्त देखना चाहते हैं, आपके आज सजेशन से, आपकी आज टिप से, आपके दिखाए हुए मार्ग से निश्चित रूप से हमें मिलने वाला है।
2: बिल्कुल, मैं उसी आशा और विश्वास के साथ आया हूं कि जो हमारा विकसित भारत होगा वो एक नशा मुक्त हो, और ख़ासतौर से हमारा तंबाकू मुक्त अगर होगा, ऐसा पूरा विश्वास है मुझे।
1: क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी धरोहर तो

आपका स्वस्थ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे शक्तिशाली हैं, और अगर आप शक्तिशाली हैं तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो सुनील वात्सायन जी से हम बहुत सी बातें करेंगे और हम आपको एक मार्ग निश्चित रूप से दिखाएंगे। कहते हैं कि हमें सच्ची राह जो दिखा दे वही तो हमारा सच्चा दोस्त है। इसीलिए आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, जहाँ हम आपको उम्मीद की दुनिया की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो एकदम टोबैको से दूर होगी।

गाने की एक लाइन बड़ी बेहतरीन, करिश्मे सच होते हैं इस बात की तू मिसाल है, अगर व्यक्ति चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बुरी आदतों को छोड़ सकता है, नई आदतों को अपना सकता है और अपनी ज़िंदगी को सहल सहज बना सकता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टुवर्ड्स टोबैको फ्री फ्यूचर। हम एक ऐसे भारत की

0: कल्पना कर रहे हैं जहां घर घर से टोबैको दूर होगा और आप सभी एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे होंगे। आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील वात्सायन जी, जो एक लाइफ कोच हैं और एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो तुरंत हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 2342-1080, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1084। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को एसटीडी कोड लगाना होगा 018, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868107070 इस जादुई नंबर पर। सुनील जी, आपसे एक बात कहना भी चाहूंगी, साझा भी करना चाहूंगी, पूछना भी चाहूंगी कि क्यों दर्द होने पर ही आभास होता है कि दर्द ऐसा होता है। बचपन से माँ हिदायत देती आती है कि बेटा ऐसा ना करना, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, लेकिन हम कभी सुनते नहीं, ये सोचते कि गिरे तो नहीं ना, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। ऐसा ही उन तमाम लोगों के साथ होता है जो कहीं ना कहीं टोबैको को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुके हैं और उन्हें यही लगता है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होने वाला है। तो क्या ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है कि हम चोट लगने के बाद ही दर्द को महसूस कर पाते हैं, और उससे पहले हमें कितना भी समझाया जाए हम ये कहते हैं कि देख लेंगे, कुछ नहीं होता, हमें तो कुछ नहीं होगा।
1: ये एक, मैं इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये मानवीय एक व्यवहार है और मानसिकता है कि हमें, हमारा जो मन है वो हर चीज़ को, हर परेशानी को बड़ा कम करके बताता कई बार। इसीलिए कई बार जो आशा है वो हमें लगती है कि ये बहुत पॉजिटिव है, मगर उसका असर कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ हम अपने असर को कम कर देते हैं। तो एक तो वो जो हमारा मन ने हमारे साथ जो काम किया कि वो परेशानी को कम करके बताया, और या फिर कोई ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म हमने इस्तेमाल करा, अपने को मास्क पहन लिया कि जिससे कि मैं अपने को छुपा सकूं और मैं उसमें चलता चला जाता हूँ, ये मानते हुए कि मैं इस पे अपनी ताकत से, मतलब मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और जो नशा है या तंबाकू है या वो मेरे, मैं उस पे हावी हो सकता हूँ। जबकि यही गलतफहमी हमारे को बार बार उसी तरफ ले जाती है, हमारा रिस्की बिहेवियर की तरफ हम और ज़्यादा मुड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे खुद पे, हमारे शरीर पे उसका नुकसान होने लगता है। इसीलिए हम अक्सर ऐसे चैलेंज भी ले लेते हैं जो चैलेंज हमें मालूम है, उसका हमें जानकारी थी, उसके बावजूद भी हमने उनको चैलेंज लिया, क्योंकि हम ये मानते थे कि हम प्रकृति पर अपना काबू कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति है, जो केमिकल्स हैं या जो ऐसी ताकतें हैं, वो हमारे को कहीं ना कहीं एक कमज़ोर नहीं कहेंगे, बट हम उनके सामने असहाय हो जाते हैं। वो शायद एहसास बाद में होता है। हम लोग कहते ज़रूर हैं कि, क्योंकि हम अपने अनुभव से कहते हैं कि मेरा हाथ जला था, बेटे तुम्हारा हाथ ना जल जाए। तो अब वो चीज़, क्योंकि ये भी ह्यूमन नेचर है कि हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खुद देखना चाहते हैं, कुछ अनुभव से करना चाहते हैं, और आज की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो नई, उसमें भी यही बात देखी गई है कि जो एक्सपीरियंशनल लर्निंग है, केवल किताबी कार्यवाही या किताबी जानकारी जो है वो काफ़ी नहीं है, हमें जब तक उसके लिए बाहर नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने देखा कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इंटर्नशिप यानी कि एक इंटरफेस ऐसा शुरुआत करी गई है जिससे कि जो बच्चे हैं और जो जिनको हम एडल्ट टू एडल्ट रिलेशनशिप में मानते हैं, वो बच्चे और या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ें जिनके साथ जो लोग देखा है कि वहाँ नशा करते थे या ऐसी परेशानियों में जूझ रहे हैं, तो उनके अनुभव के से जब वो बांटते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो ये एक, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि नहीं सीखते, सीखते हैं, बट वो अपना अनुभव लेकर के उसको बनाते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं ओनरशिप ऑफ नॉलेज एंड ओनरशिप ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जब तक आप मुझे समझा रहे हैं तब तक वो आपका विचार है, मेरा नहीं है। जब मैं उसकी ओनरशिप ले लेता हूँ, मेरी समझ बन जाती है वो, फिर वो मेरा अनुभव से दूर नहीं जाता। तो हम बच्चों को और या जो यंग लोग हैं, मैं ऐसी कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, नाडा इंडिया फाउंडेशन, तो वो इसी तरह का ही काम करती हैं कि जहाँ पर बच्चों को ओनरशिप दे सके कि ये नॉलेज मेरी नहीं है, ये किताबी नॉलेज नहीं है, इसको थोड़ा सा सेफली इसको अनुभव करके निकल जाओ ना,

0: तो वो जो अनुभव करके देखते हैं, उनके साथ जब काम करते हैं, ऐसे एडिक्ट्स के साथ काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे एक मन पे छाप छोड़ती है, और वो जिसको कहते हैं जिस पे असर पड़ता है उसी को असरदार बना दें। तो हम लोग युवाओं के साथ काम करते हैं इसीलिए कि उनको असरदार बना सकें, और उसी से ही मैं समझता हूँ तंबाकू से बचाव किया जा सकता है। और जैसा आपने कहा, दर्द से जो निकला है उस दूसरे का भी एम्पैथी उसमें वो आ सके कि उस दर्द को वो महसूस कर सके और अपने लिए एक लर्निंग बना सके।
1: जी, आपने बहुत ही वाजिब पॉइंट यहाँ पर रखा है कि कैसे हम यंगस्टर्स के साथ, यूथ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कि जब मुझे दर्द हुआ तो महसूस हुआ कि दर्द होता क्या है, और जब स्कूल्स या फिर कॉलेजेस बच्चों के लिए जिस तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रखते हैं, प्लेसमेंट फेयर्स लगाते हैं, तो शायद अगर साल में एक बार या 6 महीने में एक बार कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी रखे जहां विभिन्न संस्थाएं जो काम कर रही हैं टोबैको को एकदम ख़त्म करने के लिए, या वो लोग जो टोबैको से ग्रस्त हो चुके हैं, उसकी चपेट में आ चुके हैं, उनसे बाहर निकालने के लिए, तो स्कूल्स या कॉलेजेस को ऐसे
0: एंगेज कर सके, उनको बुला सके। बिल्कुल,
1: तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो सोच है उसमें एक बदलाव आएगा, और जब वो खुद लोगों को देखेंगे कि वो उससे मुक्त होना चाहते हैं, या किस तरीके से पीड़ित ये सोच रहे हैं कि मुझे मुक्त होना है, या वो लड़ रहे हैं अपने आप से बाहर आने के लिए, तो शायद एक गहरी छाप उन बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ेगी, क्योंकि आने वाला फ्यूचर, आने वाला वर्तमान तो उन बच्चों पर ही हमारा निर्भर है।
0: ये अक्सर क्या होता है कि जो लोग इसका सेवन कर रहे होते हैं वो एक मास्क पहन करके रहते हैं, जैसे थीम भी है अब की बार का हमारा अनमास्किंग, यानी कि हमें उसको, उस मास्क को हटाना है और उसके पीछे देखना है कि उस जो नशा ले रहा है, जो तंबाकू ले रहा है, उसकी जो पीछे, उस मास्क के पीछे एक दर्द है, उस दर्द के साथ हम जुड़ सकें अपने को, और साथ में जुड़ने के साथ साथ उसको, उसके सहायता कर सकें और ऐसे लोगों से हम बचा सकें। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे जब घर में माँ के साथ थोड़ा सा कहीं अनबन हो जाती है तो घर से बाहर निकल के वो कहाँ जाता है।
1: जी,
0: कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसको अनकंडीशनल एंगेज करता है, और वो एक तंबाकू बेचने वाला होता है, वो वहाँ खड़ा रहता है, उसके बावजूद भी उसको मना नहीं करता, वो अनकंडीशनल है, और फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि शायद मैं, अगर जो मेरे अंदर परेशानी चल रही है, जो माँ के साथ या बहन के साथ जो तनाव बना है मेरा, उसका हल शायद वो जो धुआं वहाँ चल रहा है या अवेलेबल है, वो फिर उस रास्ते निकल जाता है, चाहे वो दोस्त के माध्यम से आए या पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पर वो बिक रहा है वहाँ भी वो खड़ा होना है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा स्पेस चाहिए जो सेफ़ हो। और कई बार क्या होता है, जबकि हमारे यहाँ कानून ऐसा है, मगर कुछ कानून ऐसे हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं वो लूप होल, उसमें कहीं ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि बच्चों के लिए, और ख़ास तौर से जैसे 18 साल से कम बच्चे के लिए बिल्कुल बैन है, मगर फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं मिल जाता है। स्कूल के जो परिसर है उसके 100 मीटर के दायरे में आप तंबाकू की कोई दुकान नहीं चला सकते, मगर कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जाती हैं, और वो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि तंबाकू, बल्कि मैं तो केवल ये कहता हूँ कि तंबाकू जो है वो ज़्यादा, या वो लोग जिन्होंने छोड़ा है, ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए जो लोग शराब पीते थे या स्मैक पीते थे, वो इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्टेबल भी है, अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, और एक्सेसिबल भी है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे को कहीं ना कहीं, जितना ज़्यादा एक्सेसिबल होती है कोई चीज़ उतना ज़्यादा हम और उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेरित होते हैं, और कहीं ना कहीं किसी का इंटरेस्ट है, वो मास्क पहने हुए घूम रहा है, जो चाहता है कि उसकी बिक्री और हो, तो जब बिक्री और होगी तो नेचुरली वो चाहेंगे कि, और वो बिना मास्क के तो नहीं आएंगे, तो यानी कि उनकी जो अपील है वो बड़ी ग्लैमर को एक फैशन का एक साइन देता है, एक स्टाइल देता है, हमारी कैबर जो पिक्चर्स हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी इसका कैबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दिखाया जाता है, जिसका कहीं ना कहीं बच्चों पे सीधा सीधा असर पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सीधे सीधा देखते हैं, सीधा सीधा उनके मन पे छाप आती है
1: कि एक बार कोशिश की जाए।
0: हाँ,
1: कि कुछ लोगों को
0: जिज्ञासा जो है वो पैदा कर दे, हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास, अब जैसे अगर मैं कहूँ परिवार में भी कोई अगर तंबाकू का इस्तेमाल करता है तो, और वो एडल्ट है तो वो अवेलेबल तो है ना वहाँ पर,
1: बिल्कुल,
0: और वो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो जिज्ञासा कहीं ना कहीं हमारे को उस तरफ ले जाती है, और परेशानी किसको नहीं है,

0: तो इलाज के रूप में, क्योंकि इसलिए हम ये कहते हैं तंबाकू अपने में परेशानी नहीं है, परेशानी का इलाज के रूप में लिया जाता है इसको,
1: जी
0: कि कहीं इससे हमारे को एक थकान, आराम। इसलिए आपने देखा कि आजकल पाउच वाले जो तंबाकू हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोग तंबाकू का सीधा, और ओरल कैंसर का इसमें चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको, उसकी जो स्वीकार्यता है उसको और कम करें, एक्सेप्टेंस जो है वो कम करें, और जागरूकता तो है ही अपनी जगह।
1: जी, अगर हमें जड़ से समाप्त करना है इस समस्या को, यानी कि टोबैको कंजम्पशन को, तो हमें जड़ से ही काम करना होगा।
0: बिल्कुल। तो ये इसको भी अक्सर क्या होता है कि हम शायद 14 साल, 15 साल, 18 साल की उम्र में जाकर के लोगों को बताते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि जब प्री प्राइमरी स्कूल होता है वहीं से हमारे विचार बच्चे के जो है ना डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपकी भाषा और आपका तरीका वो ना हो जो आप 14 साल के बच्चे के लिए पढ़ाते हैं। आप उसी चीज़ को ही एक अलग ढंग से, कि मैं कैसे उस बात को कहें, ये नेचुरली ये विशेषज्ञों का विचार है कि उनको अपना खुद ऐसा तरीका निकालें कि जो प्री प्राइमरी स्कूल है, जब स्कूल बच्चा घर में है तभी ये मैसेज क्यों ना चला जाए।
1: जी, एक प्रश्न हमारे पास आया है ईशिका रस्तोगी का, और ये कहती हैं कि माता पिता या टीचर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, जो अर्ली साइंस कहते हैं ना कि हर समस्या के कुछ अर्ली साइंस होते हैं, हमें कुछ ना कुछ अपने बच्चे के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलता है, कुछ तो बदला हुआ है, कुछ तो रंग रूप बदला हुआ है, कुछ तो जो दिनचर्या है उसमें तो कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, बच्चे का जो स्टाइल है वो आजकल बदल चुका है, तो वो क्या अर्ली साइंस हैं जो यूथ में देखे जाते हैं, ख़ास तौर पर तब जब वो टोबैको कंजम्पशन कर रहे हैं या टोबैको का एडिक्शन हो चुका है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में ईशिका रस्तोगी चाहती हैं।
0: मैं समझता हूँ उनका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये एक प्रश्न है जिसको हम कहेंगे कि, और हमारी जो अपील है, जो थीम है इस वर्ल्ड नो टोबैको डे का, उसी से जुड़ा हुआ है कि बच्चा, परिवार और घर एक ऐसी जगह है जहां हम सारे मास्क उतार देते हैं। जो संबंध है, जो हमारे संबंध पारिवारिक संबंध हैं, उसमें हम अपने मास्क या कोई भी मुखौटा जो है वो हम आके उतार देते हैं। कोई सी भी हमारी पहचान हो समाज में, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ, मगर जब घर आते हैं तो उन सब पहचानों को शायद हैट की तरह हम अपने बाहर, जिसको कहते हैं डोर पर रखाते हैं। मगर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि एक कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो मुखौटा पहनना शुरू कर देता है, तो वो पहला ही साइन है कि जहाँ पर वो आपसे छुपा रहा है, या फिर एक ऐसा घर में माहौल बना है कि जहाँ पर आप वो अगर बताना चाहे कि मैं परेशानी में चल रहा हूँ, और मेरे को उसको अगर ये मैसेज मिला हुआ है या परसेप्शन बनी हुई है बच्चे की कि अगर मैंने बताया कि मैंने ये किया है तो मेरे साथ क्या होगा,
1: जी,
0: तो अगर वहाँ डर का भाव है तो नेचुरली बच्चा अपने को छुपाएगा। और अगर ये है, ठीक है बेटे तुमने कल ऐसा किया, हम तुम्हारे साथ हैं, अब आगे क्या करना है उस पर काम करते, क्या तुम्हारे को मेरी सहायता की ज़रूरत है या तुम खुद संभाल लोगे। तो ये जो वार्तालाप है ये उस मास्क को हटाने के बाद का है। तो यानी कि वो बच्चा, वो पेरेंट्स को भी वो ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो बच्चे उस मास्क को पहचान सकें कि जो चेहरा मुखौटा उसने पहन लिया है, कुछ समय से कुछ बदलाव आ रहा है, और वो अकेलेपन में, और एक हमें जैसे मैं समझता हूँ कि घर में हम लोग एसिड को कभी भी खुला नहीं छोड़ते क्योंकि हमें मालूम है वो हार्मफुल है, बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तो उसी तरह से हमें इक्वली सिगरेट और बीड़ी को भी या तंबाकू को भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कहीं खुला तो अवेलेबल नहीं है। क्या ये स्कूलों में ऐसे बच्चे देखे गए हैं जहां उनके बैग्स में तंबाकू के, और ख़ासतौर से आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गई हैं जिनको एंड्स बोलते हैं, तो वो उस तरह की सिगरेट भी वहां पर पाई गई जबकि वो बैन है।
1: जी,
0: उसी तरह से 18 साल से के बच्चे के पास तो सिगरेट का होना नहीं है, नहीं हो सकना, होना चाहिए। तो वो सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो वो उसका बैग का चेक करना, और एक तंबाकू आजकल, पहले तो यही हमारा सिगरेट का और तंबाकू का है कि उसका स्मेल आती थी, अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ रही हैं उसमें उनका स्मेल नहीं है
1: जी।
0: और वो दिख भी नहीं रहे है, धुआं भी नहीं दिखता है। तो वो आपने, इसका मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रूल आउट कर दिया जिससे कि बच्चे को सहजता के साथ और आपके लिए मुश्किल हो गया। तो वहाँ देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के पास वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहाँ से आई, कैसे आई, और फिर हम कैसे उसको, उसके लिए, उसके साथ दे सकते हैं, कन्फ्रंट करें।

0: अगर कन्फ्रंट इसलिए नहीं करें कि आप अपना गुस्सा और अपना डेस्परेशन दिखाएं, बल्कि अपने साथ उसको जोड़ सकें और उस मास्क को हटाने में मदद करें उसको।
1: जी, और एक बात और जोड़ना चाहूंगी,
0: उसमें ताकत चाहिए होती है मास्क हटाने में, ध्यान रखिएगा। दर्द कई बार दर्दनाक होता है,
1: बिल्कुल
0: परेशानी होती है, इसमें काउंसलर या लाइफ कोच की आप मदद ले सकते हैं।
1: जी, और एक बात और छोड़ना चाहूँगी आपकी बातों में, जब आप ये कहते हैं और कार्य करते हैं और सोचते हैं कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, सबसे पहले हमें अपने घरों में भी इंश्योर करना होगा कि हमारे घर के लोग
0: अवेलेबिलिटी ना हो,
1: हाँ, कि हमारे घर के लोग जब इस तरह से सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे को देखेगा,
0: बिल्कुल,
1: और उसे लगेगा कि ऐसा तो होता,
0: नॉर्मलाइज कर दिया,
1: नॉर्मलाइज कि पिताजी करते हैं या घर में और कोई व्यक्ति है वो करते हैं। जी, तो इसको भी कहते हैं कि अगर हमें बच्चे में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा, बच्चे में।
0: ये है कि एक सिंगल सिगरेट नहीं बिकनी चाहिए, मगर अगर वो बीड़ी या सिगरेट वाला एक सिगरेट दे देता है जो बहुत सस्ती है, तो वो अफोर्डेबल हो गई।
1: जी,
0: तो वो भी वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे हैं जो कि उनको वो करता है, मतलब।
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो, हेलो दोस्त, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं।
2: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, सबसे पहले आप,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से, और मैं ये पूछना चाहता हूँ।
1: जी
2: जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है विशेषज्ञ से, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों से नशे की चीजें मंगा देते हैं कि भाई कि मुझे तुम बाजार जाओ और मुझे कबीर या तंबाकू या शराब लाओ, और बच्चा घर में ला के देता है, तो कई बार ये बच्चों
1: जी
2: दो एक्ट लाते हैं, तो ऐसे बच्चों, ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि किस तरह से क्या बच्चों को चीज मंगानी चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छे सवाल आपने यहाँ पे पूछा, इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अभिभावक कभी कभी जिम्मेदार होते हैं, खुद घर पे सेवन कर रहे हैं और बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे उस राह पर ना जाएं, तो पहले तो खुद को कंट्रोल करना होगा और बच्चों को उस राह पर जाने से रोकना होगा। बहुत अच्छा सवाल है राकेश जी, आपका धन्यवाद।
0: राकेश जी, आपने बहुत सुंदर और बिल्कुल सटीक, और ये कहूंगा कि बहुत मुश्किल सवाल है पेरेंट्स के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा ही प्रक्रिया में रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो तंबाकू है उसको हम एक ट्रेडिशन का हिस्सा मानते हैं, और वो इतना एक्सेप्टेबल होता है, चाहे वो हुक्के का हो या कोई और चीज़ का, कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमने क्या उससे बच्चे से मंगाना और क्या नहीं मंगाना। ये हम लोगों ने जब पीयर बेस्ड अप्रोच में कम्युनिटी में प्रोग्राम किए, तो उसके अंदर जब हमने बच्चों को जाके कहा कि आप उनके घर गए, तो कई बार वो बच्चे वहाँ पर उनके घर में तंबाकू की दुकान चला रहे थे और वहाँ बैठ जाया करते थे, जो कि इल्लीगल है, पहली चीज। उसी तरह से उसके जो माँ बाप हैं वो उनको मंगाया करते थे। तो ये जो चीज़ है, ये जो फ़र्क है, ये तो माँ बाप का ही, इसको जब तक हम, क्योंकि वो तो एडल्ट हैं, यहाँ बच्चे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, पेरेंट्स को समझाने की आवश्यकता है। और पेरेंट्स को भी ये एहसास दिलाने की बात है कि जो आप यहाँ पर उनको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, उसको एक्सेप्टेबल कर रहे हैं और एक अवेलेबल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जाते हुए कई बार तो बल्कि ये हो जाता है कि वो बीड़ी को अगर कहीं दूर है जलाने का उसका स्रोत, तो वहाँ वो जलाएगा और फिर लेके आएगा, तो वो जो बीच का जो रास्ता है वो बीड़ी जले रहे उसके लिए उसको कहीं ना कहीं लेना पड़ता है, यानी कि तंबाकू वो उसको इनहेल करेगा तभी वो जलती रहेगी। तो यहाँ पर हमने सर्व सुलभ करा दिया उसको, दूसरा ये कर दिया कि नॉर्मलाइज कर दिया कि तो मैं भी पीता हूँ तो तुम भी अगर भी, और जब तुम बड़े होंगे तो पी लेना। अक्सर माँ बाप को ये पूछता है बच्चा, मैं कब तंबाकू ले सकता हूँ?
1: जी,
0: वो बहुत मुश्किल सवाल है जवाब देना, और अक्सर जो है हम यही कह देते हैं कि वो जब बड़े हो जाओगे तब कर लेना।
1: जी,
0: बच्चा इसी दौड़ में शुरू हो जाता है कि मैं कब बड़ा होऊंगा, तो मैं ऐसे सारे काम करने लगता हूं जो मैं, मुझे बड़ा कम से कम मैं दिखे, वो मास्क पहन लेता हूं, जबकि वो मैं बड़ा भी नहीं हुआ कि मैं उन जिम्मेदारियों को या उन नुकसान को समझ सकूं जो नुकसान होने वाले हैं, चाहे मैं गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे टू व्हीलर चलाने की बात हो, कोई भी ऐसा रिस्की जो कि हमें मना किया गया है, शराब की बात है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं, तो मैसेज जो हमने दिया वो कहीं ना कहीं गलत था। तो आपके जो परिवार में जो नॉर्म्स हैं वो क्लियर हों, एसिड एसिड है, तंबाकू तंबाकू है, नुकसान नुकसान है, तो यानी कि वहाँ हाँ या ना के बीच की कोई और ग्रे एरिया ना हो, सीधा कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है।
1: जी जी बहुत ही आपने वाजिब बात यहाँ पर की है, और जैसा कि हमने कहा कि जड़

0: बीमारी उत्पन्न हो रही है, जड़ से ही अगर बीमारी को खत्म कर दिया जाए तो जो हम कल्पना कर रहे हैं कि हम तंबाकू से मुक्त हो जाएंगे, हम बिल्कुल एक ऐसे भारत की कल्पना ही नहीं, हम उसे साकार भी कर सकते हैं अगर हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कोशिश करे। घरों पर तो हमें कोशिश करनी होगी क्योंकि
1: माँ बाप को और परिवार को ही करनी होगी
0: जी। तो होंगी और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील वात्सायन जी, जो एक लाइफ कोच हैं और एडिक्शन थेरेपिस्ट भी। आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमसे संपर्क करें, आप कॉल कर सकते हैं 2342-1080 या फिर 2342-1084, इन नंबर्स के माध्यम से 011 STD कोड है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868107070। इस जादुई नंबर पर आपके पैगाम तुरंत पहुंचते हैं हम तक।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। रेनबो हेल्पलाइन में मैं हूं आपके साथ गीतिका उनियाल और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील वात्सायन जी, जो एक एडिक्शन थेरेपिस्ट और लाइफ कोच हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को टोबैको से दूर रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप टोबैको की चपेट में आ गए हैं, यानी कि अगर आप उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं और अब टोबैको यानी कि ये जो समस्या है जिसने आपको अपनी ओर आकर्षित किया और अब आपको अपनी चपेट में ले लिया, इससे आप अपने आप को छुड़वाना चाहते हैं। कहते हैं कि हर समस्या का हल है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को तैयार नहीं करेंगे, अपने परिजनों को तैयार नहीं करेंगे, तो कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती। हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पर सुनील जी। एक सवाल यहाँ पर आया है हमारे पास मोहम्मद इम्तियाज़ का, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से, और ये कहते हैं कि ये 40 वर्ष के हैं, ये स्वयं भी टोबैको का इस्तेमाल नहीं करते हैं और लोगों को भी इससे दूर रहने की हिदायत देते हैं। और इनका सवाल ये है कि

0: ऐसा क्या किया जाए कि घर घर तक इस बात को पहुंचाया जाए कि क्यों टोबैको, यानी कि हम जो भी तंबाकू खाते हैं जिस भी फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है, और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग जो इसे बेचते हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या फिर दुकानों में ये उपलब्ध ही ना हो, तो इससे कहीं ना कहीं रोकथाम की जा सकती है।
1: आपने जो एक बात सुझाव दिया है कि कानून इसमें क्या कहता है, कानून बड़ा जिसको बोलेंगे सख्त है, ख़ासतौर से अगर हम देखें कि जो अवेलेबिलिटी है कि लाइसेंस जो उनको मिल रहा है, लाइसेंस नहीं है वो स्वयं कोई भी बेच लेते हैं, कई जगह लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है कानून के हिसाब से, तो वहाँ पर रद्द किया जा सकता है अगर वो उसको प्रॉपर वो नहीं कर रहे हैं। बट जो कोटपा एक्ट है उसका इस्तेमाल करके जो लोकल वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका पूरा मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, बट उसके अंदर जो सहयोग चाहिए वो वहाँ की जो लोकल नेबरहुड RWs हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, और ख़ासतौर से जो हमारा सिविल सोसाइटीज़ वहाँ पर हैं, वो लोग का असर इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, उनका असरदार होना या कलेक्टिव एफर्ट होना ज़रूरी है। यानी कि ये समस्या एक ऐसी है जैसे हम रोज़ाना सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, तो हमें रोज़ाना ही इस तरह के प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। हाँ, एक व्यक्ति ही अगर ये जारी रख रहा है तो ज़रा मुश्किल पड़ जाता है, मगर रोज़ाना एक व्यक्ति अगर एक काम को कर रहा है तो कल आज अगर वो रेस्ट करता है तो कल दूसरे वाला उस वीक को काबू रखे, तो वो जो हमारे को एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, जो सबका मिला जुला एक एफर्ट चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, और वो उन लोगों को भी ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जिनको ये नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो परिवार से मिल जाता है या दुकान से मिल जाता है जहाँ पर ये बेचा जा रहा है, जबकि वहाँ पर लिखा होता है कि 18 साल से कम, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो दुकानें हैं तंबाकू की क्या वो 100 मीटर की दूरी से अगर बाहर हैं, मतलब उसी के अंदर हैं, तो नेचुरली आप अपना उसको असरदार बनाएं, स्कूल को उसमें इन्वॉल्व करें और इस चीज़ को फिर आगे कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे सिंगल सिगरेट नहीं बेची जा सकती, मगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सिनेमा में भी कई बार सिंगल सिगरेट हीरो आता है और सिगरेट मांगता है तो वो एक सिगरेट उसको दे दी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये प्रवृत्तियाँ और या जो डिपिक्शन है तम्बाकू को बार बार दिखाया जाता है, उसको ऊपर कानून बने हैं, बट कानूनों का इस्तेमाल और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की प्रक्रियाओं में उसको लाया जा सके। अब आता है सवाल कि हम किस तरह से जो हैं वहाँ पर सहयोग को और बढ़ावा दें। आपने अपने को 40 साल की उम्र है, स्वस्थ रख रहे हैं, तो आप बहुत सारों के लिए, आप लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं और हैं। उसी तरह से आप भी औरों को जोड़ें, 5 व्यक्तियों को भी अगर आप जोड़ते हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप एक अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक क्लब बनाते हैं, जिसके अंदर लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि डराएं, धमकाएं या ऐसा कोई तरीका अपनाएं, हाँ अपने उनके साथ एंगेजमेंट रखें, बातचीत शुरू करें, जो उनकी मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको समझें और समझ करके जवाब दें, तो रास्ते निकल सकते हैं।
0: जी, एक सवाल और हमारे पास आया है अमन कुमार का, बागपत उत्तर प्रदेश से, और यही कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करती है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से युवाओं को बचाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ युवा हमारे बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत सारे अपराध बोध क्षेत्रों में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं, तो ऐसे में जब समस्याएं जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो आदमी को लगता है, व्यक्ति को लगने लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए कुछ कष्ट लगाकर अपनी समस्या का निदान पा लेते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए और ऐसे युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोका जाए, इसकी तरफ हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, समाज की, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, तो कैसे हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं और कैसे एक जिम्मेदार नागरिक को होने के नाते और FM रेनबो के श्रोता होने के नाते कैसे अपने जो देश के युवा हैं उनके प्रति हम अपनी कर्तव्यनिष्ठता दिखा सकते हैं कि हम भी, आप भी, सभी एक ही देश का हिस्सा हैं।
1: अमन, आपने पहला कदम तो रख दिया जब आपने FM रेनबो को सुना और सुनकर के इस बात पे चर्चा की, विचार किया और प्रश्न करा। ये जो प्रश्न है,

0: ये बड़ा अमूल्य है, क्योंकि ये प्रश्न लोगों के दिमाग में, जहन में आता ही नहीं, बहुत से लोगों के नहीं आता और वही छूट जाते हैं। दूसरी बात आती है कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन है, उसका बेसिस अगर हमारा वेलबींग है, खुशहाली है, हेल्थ है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बच्चा जो है वो इससे नहीं दूर रह सकता। क्योंकि कोई भी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें 12 साल किसी स्कूल के पास 14 साल बच्चा रहता है, और अगर वो ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि वो ऐसा तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। वो अलग बात है कि स्कूल में भी रहते हुए भी आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, और ऐसी रील्स आप देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया पर, जहां बच्चे जो हैं वो लेते हुए दिखते हैं। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, गलत है कि इस तरह की चीज़ें या इस तरह की रील्स को प्रमोट कर दिया जाता है या वायरल हो जाती हैं, उससे वो प्रेरक बन जाती हैं, जबकि उसको मैसेज कुछ और देना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत से लोग छूट जाते हैं, और कई बार हमारे को ये मानते हैं कि अल्कोहल का नशा या जो नशा और या फिर तंबाकू से वो या ड्रग्स जो है वो ज़्यादा हार्ड है और ये सॉफ्ट है, जबकि ये देखा गया है कि जो तंबाकू है वो ज़्यादा मुश्किल होता है अल्कोहल और ड्रग्स या कोई भी और एडिक्शन को से बाहर आने में, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है और लीगल भी है, तो उसके कारण और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको छोड़ना। तो भाई मेरे, जो लोग ले रहे हैं उनसे नाता मत जोड़ो, तोड़ो मत, बट जोड़े रखो
1: जी।
0: इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें पीनी है, बल्कि इसलिए कि जिससे कि तुम उनके साथ संबंध बने रहेंगे तो आप उनको उससे परेशानी से बाहर निकलने में मदद कर पाएंगे
1: जी। और ऐसे ही सवाल हमसे ईशा ने पूछा था कि बिना जज किए हम कैसे किसी को सही राह पर ला सकते हैं, तो यही तरीका है कि आप जज मत कीजिए लेकिन आप उनके सच्चे साथी बन जाइए। एक कॉलर इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो दोस्त, क्या अब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? लगता है इन दोस्त तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना Hello? प्रश्न पूछें। जी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, अपना नाम बताकर प्रश्न पूछिए। हेलो दोस्त, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, अगर किसी कारण जी आपकी आवाज़ पूरी हम तक पहुंच रही है, आप सवाल पूछिए, और अगर सवाल पूछने में असमर्थ हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। लगता है इन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। दोस्त हम यही चाहेंगे कि आप हमें पुनः कॉल करें। तो एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें आपके साथ होंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है रेनबो हेल्पलाइन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। रेनबो हेल्पलाइन में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। हेलो दोस्त, क्या अब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हेलो, हम अपने मित्र से निवेदन करना चाहेंगे कि मित्र आप हमें पुनः कॉल करें, लगता है कि आप काफ़ी देर तक हमारा इंतज़ार करते रहे। खैर कोई बात नहीं, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप कॉल करें। जी सुनील साहब, आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं हम यहाँ पर, कि हम अक्सर बात करते हैं कि अब परेशानी में तो फंस गए, अब परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता हमें कौन दिखाएगा, कौन हमें बताएगा कि कैसे हम अपने लिए एक नया साफ सुथरा रास्ता चुन सकें?
2: देखिए, जो व्यक्ति तंबाकू ले रहा है उसको कहीं ना कहीं दो तरह के फीडबैक उसको मिल रहे होते हैं। एक वो फीडबैक जो कि अंदर से उसको एहसास हो रहा होता है कि अब मेरी सांस या जो मेरी क्षमता है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। दूसरा फीडबैक मिलता है जो समाज दे रहा होता है
1: जी,
2: और कहीं ना कहीं आसपास वाले भी उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी क्विट हेल्पलाइन या कहीं ऐसी मदद लेने जब जाते हैं तो अपने को एक तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखा गया है कि एक ऐसा एहसास जिसमें नॉन जजमेंटल हो, जैसे इशिता ने बोला था कि कोई उसको जज ना करे, ऐसा एक माहौल हो जहां पर वो बिना बोले भी क्या वो अपने

0: मदद ले सकता है, क्योंकि हमारे हेल्प सीकिंग बिहेवियर बहुत कम है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बहुत कम है
1: जी।
0: तो ऐसे तरीके अपनाए जा सके, ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं जहां पर लोग अपनी मदद के लिए सामने आ सकते हैं। तो ऐसा जैसे योग अगर कहीं हो रहा है और आप योग को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जब आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं तो आपका और क्षमता बढ़ जाती है उसको छोड़ने की, पहली चीज़ तो ये। मगर डॉक्टर का अगर हम उसमें साथ में कहीं ना कहीं अपना टेस्टिंग करवा लेते हैं या अपनी परिस्थितियों को देख लें कि हमारे कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हमारे को रूल आउट करने में मदद करता है। इसी तरह से क्विट हेल्पलाइन अवेलेबल हैंगी जो कि आपको आपको मदद देते हैं ऑनलाइन, प्लस उसके अलावा आपको मैसेज भी ऐसे मिलते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनकी जो स्कीम जो हेल्पलाइन है वो है 1800112356। तो अगर आप इस कॉल के मतलब इस कॉल के बाद या इस प्रोग्राम के बाद अगर आप कॉल करते हैं तो आपको एक जानकारी मिलेगी। दूसरा जो चीज़ आती है वो ये कि आपके पास ऐसे मैसेज आएंगे जो मोटिवेटिंग होंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आज के दिन मुझे तंबाकू नहीं लेना है, और ऐसा बहुत सारे और ऐप्स भी हैंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे क्विट क्लिनिक भी बन गए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम क्लिनिक, जैसे दिल्ली में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो चेस्ट क्लिनिक है, और उसी तरह से जितने भी हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ भी आप रीच आउट कर सकते हैं। इसमें एक्यूपंचर का भी इस्तेमाल किया जाता है, योगा का भी इस्तेमाल करा जाता है, आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करा जाता है, और ऐसे भी तरीके अपनाए गए हैं जिसमें निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। मगर कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो उसी का ही दुरुपयोग भी करने लगते हैं, कई बार वो तंबाकू छोड़ भी देते हैं बट निकोटिन का इस्तेमाल। तो इसका मतलब कि जो डॉक्टर का और काउंसलर का जो सुपरविज़न है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपकी मदद हो पाएगी। और ये जो मदद है इसकी खुद की तैयारी बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा दिन चुन लें कि मुझे आज से नहीं लेना है। इस बात को जाने पहचाने और कह दें, यानी कि आसपास जो लोग हैं उनको भी बता दें कि मैंने कल से छोड़ रहा हूं मैं। तो यानी कि एक संकल्प जो है आपकी, क्योंकि संकल्प शक्ति इसमें बहुत काम आती है, मगर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, जो छोटी मोटी अगर कोई चाहे वो कॉन्स्टिपेशन से जुड़े हुए हो या हमारे अंदर ड्राइनेस कहीं फील कर रहे हैं, माउथ में कहीं कोई ऐसी परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने जो पड़ोस में जनरल फिजिशियन है उनसे आप मिल सकते हैं और उनसे दवाइयां ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक आप सेल्फ मेडिकेशन करते थे, यानी कि आपकी हर बीमारी का इलाज तंबाकू था, अब वो परेशानी को आपको डॉक्टर से मदद लेनी है, काउंसलर से मदद लेनी है, और ये क्विट हेल्पलाइन है वो आपके लिए बड़ी असरदार हो सकती है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने वाजिब बात यहाँ पे की। अब जैसा कि आपने कहा कि स्कूल कॉलेजेस हम इन तमाम स्टूडेंट्स तक कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है हमारा जहाँ इतने सारे युवा हैं, जैसे कि एक मित्र ने भी हमसे पूछा था कि बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित हैं पर उन तक पहुंचने वाला कोई नहीं। एक समाज ऐसा है जहाँ हमें पहुंचना होगा, चाहे वो गली हो, गांव हो, कस्बे हो, उसके लिए भी क्या एक छोटी छोटी टीम्स बनाकर जो वहाँ समाज को शिक्षित कर सके, क्या इस तरह से अगर हम कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिस हम जड़ों की बात कर रहे हैं कि हमें अपनी जड़ों को पहले पुख्ता करना होगा, तो हम उन युवाओं तक पहुंच जाएंगे, उन लोगों तक पहुंच जाएंगे अगर कुछ टीम्स का गठन कर और समय समय पर वो टीम्स जो हैं उन गांव गली कस्बों में पहुंचें और वहां शिक्षित करें समाज को कि किस प्रकार से तंबाकू का सेवन हानिकारक हो सकता है।
0: देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने भी पीयर एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया है किशोरों के लिए। हम लोगों ने कई ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्होंने इस तरह का, तो नाडा इंडिया ने भी जो है इस तरह की कार्यक्रम किए हैं, जो कि नेशनल एक नापसी नाम से एक संस्था है जहां पर उनके जो एम्बेसडर्स हैं, जिसको कहते हैं कैंपस एम्बेसडर्स, उनको ट्रेन कर रहे हैं हम लोग, और उनको ट्रेन करके फिर ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया है, यानी कि जो सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको ही एक हेल्थ गुड हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाए, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा आता है पीयर एजुकेशन, यानी कि वो 5 लोगों को ट्रेन करेंगे, पहले हमने उनको ट्रेन किया, फिर वो 5 लोगों को ट्रेन करेंगे, और वो 5 को फिर वो अगले पांच को करेंगे, यानी कि एक ग्रुप बना तकरीबन 30 लोगों का,

0: वो जो 30 लोगों का ग्रुप बना उसमें पीयर सपोर्टर, पीयर एजुकेटर एंड पीयर लीडर, तो यानी कि कहीं ना कहीं उनको एक नई पहचान मिलती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो दोनों ही युवा हैं, चारों पांचों युवा हैं, एक दूसरे को सहारा मिल पाता है और एक क्लियर नॉर्म्स वहाँ सेट हो पाते हैं जिसको हम कहते हैं हेल्दी कैंपस, कि क्या मेरा कैंपस जो है वो हेल्दी है। जैसे मैं अगर मैं कैंपस का मतलब केवल तम्बाकू केवल यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, जहाँ भी बिल्डिंग में या जहाँ भी आप रह रहे हैं वो एक कैंपस है, उसको हम हेल्दी कैसे बनाएं, उसका एक सोशल ऑडिट खुद करें और डिस्कवर करें कि क्या ऐसी चीज़ें जो कि अनहेल्दी यहाँ पर हो रही है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और जब हम ये चेन रिएक्शन को डेवलप करते हैं युवाओं के बीच में तो उसमें एक सहजता के साथ हम जुड़ पाते हैं।
1: जी जी, और जब हर व्यक्ति प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उस टीम का हिस्सा बन जाता है। जब हम भारत का नागरिक होने की जिम्मेदारी को आत्मसात करते हैं, जब हम मानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के जितने भी मुद्दे हैं जहां पर भी हमारे देशवासियों की हमारी ज़रूरत है, तो हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी उठा लेगा तो शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चेन, बहुत बड़ा पूल बन जाएगा। और
0: जिम्मेदारी का मीनिंग यहां पर हम लिखते हैं कि मैं आई एम कॉज इन द मैटर, मैं कारण हूं, तो मैं नागरिक हूं तो मैं कारण हूं और अपने को स्वस्थ रखना ये मेरा पहला कर्तव्य है। और विकसित भारत तभी हो पाएगा जब मैं स्वयं विकसित हो पाऊंगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से।
1: जी, और जैसे कि सुनील वात्सायन जी ने आपसे स्वयं कहा कि कोई है जो आपकी मदद के लिए एकदम तैयार है, बस आपको फोन घुमाना है, आप इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पहुँच सकते हैं, अपनी समस्या से निदान पा सकते हैं। 1-800-111-2356 कॉल कीजिए और अपनों का संरक्षण कीजिए, अपनों को बचाइए। सुनील वात्सायन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों ने जो श्रोता हैं उनका भी धन्यवाद।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। बुधवार की दोपहर 2 से 3 बजे जब हम बात करते हैं आपके ज़िंदगी के सबसे ख़ास कनेक्शन की, सबसे ख़ास रिश्ते की, जी हां आपके पार्टनर की बात जब हम करते हैं आपके हम कदम की। भाई कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी जो है हमेशा एक सी तो नहीं चलती है, और शादीशुदा ज़िंदगी में भी सबके अपने अपने जो है ना अपनी अपनी मनस्थिति चलती है, अपने अपने मूड्स चलते हैं, और ये बिल्कुल ही बड़ी नेचुरल सी बात होती है कि जब हमारे पार्टनर का मूड ऑफ हो जाता है ना तो पूरा का पूरा घर ही ऐसा लगता है जैसे साइलेंट मोड पर चला गया हो। लेकिन आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि लाइफ में जब भी आपका हमसफर थोड़ा सा लो फील कर रहा हो ना तो वही मौका होता है आपका कि आप उस मौके को जो है ना टर्न अराउंड कर सकते हैं और आप चाहें तो उनके पर्सनल सुपर हीरो बन सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में जो है ख़ासकर शहरी ज़िंदगी में इसकी अपनी एक अलग ही रफ्तार है। यहाँ पर डेडलाइंस का भी प्रेशर है, ट्रैफिक का स्ट्रेस है, और कभी कभी बिना किसी वजह के होने वाले मूड स्विंग्स भी हैं। हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि कोई वजह ही हो, लेकिन जब ऐसा हो जाता है, जब आपका पार्टनर जो है वो लो मोड पे चला जाए या साइलेंट मोड पे चला जाए या फिर उसका मूड ऑफ हो जाए, और वो जो है ऐसे में क्या करना चाहिए, इससे में कैसे मतलब इस तरह का जो माहौल बन जाता है इस चीज़ से कैसे दो चार करें, क्योंकि हमेशा हर इंसान जो है ना समय के साथ आप भले ही इक्विप हो जाए लेकिन अगर आपकी इस यात्रा को बहुत समय नहीं हुआ है ना तो कभी कभी समझ नहीं आता है कि इन चीज़ों से डील किया जाए तो कैसे किया जाए। वैसे कभी कभी सालों का एक्सपीरियंस भी जो है ना वो काम नहीं आता है, नए लोगों की तो बात ही क्या करें। लेकिन हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब एक दूसरे का साथ निभाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एक दूसरे के करीब होना या फिर उसे मी टाइम दे देना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कब साथ देना है, कब मी टाइम देना है, ये सब चीज़ें जो है ना ये हमें समझनी पड़ती हैं। इसी बारे में करेंगे हम आज बात कि किस तरह से इस साइलेंट मूड से या फिर इस ऑफ मूड से जो है डील किया जाता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम नाम है इसका हम कदम, मैं हूँ आपके साथ स्वाति, और मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए अंकित तिवारी की बहुत ही अमेजिंग सी आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी आशिकी 2। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: AIR at 90.
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

निदा फाजली के लिरिक्स और एमएम क्रीम की बहुत ही अमेजिंग वाले म्यूज़िक में अभी आपने सुनी लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ें. बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी सुर मैंने प्ले किया आप सभी के लिए. एक ठहराव सा है इस गाने में, है ना. वाकई में रात की सुबह जो है ना वो हम चाहते हैं कि हमेशा होती रहे, और टनल के एंड पे ना हमेशा लाइट जो है ना उसको देखने की उम्मीद हमारे दिल में हमेशा रहती है. और ये उम्मीद ही तो है जो ज़िंदगी में हर वक्त हमें बेहतरी के लिए प्रेरित करती रहती हैं, और उम्मीद तो होनी भी चाहिए. फिर चाहे ये जो घनघोर घटाएँ गिर कर आ रही, ये जो शेडो है ना वो आपके मूड पर ही क्यों ना हो. एक बार आपको याद दिला दूं कि 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम, मेरी यानी स्वाति के साथ में. आज हम बात कर रहे हैं उन काले घेरों की, उन शेडोज की जो अक्सर आपके, अक्सर नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, जो कभी कभी आपके पार्टनर के मूड पर छा जाते हैं. भाई अब क्या है ना, जिंदगी इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है कि हम लोग इतने इंपेशेंट हो गए हैं कि हम ये चाहते हैं कि अगर मूड खराब हुआ भी है, अगर किसी वजह से हमें बुरा लगा भी है, तो वो भी ना बिल्कुल ऐसे ही चुटकी बजाते जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए. और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे स्पाउस का या हमारे हमसफर का जब मूड खराब होता है ना, तो हम सबसे पहले तो उन पर सवालों की बौछार कर देते हैं. क्या हुआ, किसने कहा, क्या किसी ने कुछ तुमको बोला है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे सवाल जो है ना जब हम दागने शुरू कर देते हैं ना, तो जिसका मूड पहले से ऑफ है ना वो और ज्यादा इरिटेट हो जाता है. तो इस तरह के सवाल जो है ना इनको थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए. और पेशेंस जो है ना यहाँ पे वही है जो आपकी दोस्त है. उसके अलावा और कुछ चीज़ मुझे नहीं लगता कितना ज़्यादा काम आ सकती है जितना कि पेशेंस आ सकता है. वो तो उन आपको ध्यान देने की ज़रूर जो है ना ज़रूरत होती है उस समय पे, लेकिन उस समय पे लगातार जो है ना इम्पेशेंट होकर सवालों की बौछार कर देंगे तो देखिए ऐसा ना हो कि मूड जो है ना एक तो वो भी और ज़्यादा ख़राब हो जाए, और ऊपर से वो सारा गुस्सा जो किसी और का है ना वो आपके ऊपर निकल जाए. देखिए स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है, और कभी कभी ना मूड ऐसे भी नहीं ख़राब होता, कोई वजह भी नहीं होती. कभी कभी इंसान सिर्फ शांत बैठना चाहता है, तो थोड़ा सा मी टाइम की तलाश अगर है तो आपके स्पाउस को वो ज़रूर मिलनी चाहिए. साथ ही ये ज़रूरी है कि आप उन्हें मी टाइम तो दें, लेकिन साथ साथ ये एहसास ज़रूर रहे उन्हें कि जब भी उन्हें ज़रूरत है आप उनके आसपास ही हैं. एक सिंपल सी बात होती है ना, आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज. चाहे तो टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं, आजकल तो वो बड़ा अच्छा काम हो गया है कि हम लोग अपने मन की बात को अगर बोल नहीं पाते हैं ना तो लिख के ज़रूर बता देते हैं. और दूसरी बात, एक काम जो हम सभी करते हैं ना, वैसे फ़िलहाल मैं भी यही कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम है इसलिए मैं कर रही हूँ, और वो है एडवाइस देना. बेवजह की जो एडवाइस है ना जब तक मांगी ना जाए ना देनी नहीं चाहिए, खासकर ऐसे मौक़ों पे. और क्या है ना, जब इंसान सेंसिटिव हो, थोड़ा सा टची हो रहा हो, तो उस समय पे उसको एडवाइस कभी कभी बुरी लग जाती है. तो 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आज हम ये जान रहे हैं कि जब आपके हम कदम का मूड थोड़ा ख़राब हो, या फिर वो जो है आप कहना चाहते हैं कि उनकी स्पिरिट्स थोड़ी सी लो हो रही हो, तो ऐसे में इन चीज़ों से कैसे डील किया जाता है, और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मेरे पास हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए. नाम है इसका हम कदम सुन रहे हैं.

से आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। अगला गाना मैंने चुना है आप सभी के लिए मेट्रो इन दिनों से, आप जरूर सुनिए इसको, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग, और सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इसी फील गुड के लिए तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि जिंदगी में हमेशा ये फील गुड फैक्टर जो है ना वो बना रहे। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम, मैं हूँ स्वाति। आप सभी के साथ बात हो रही है कि जब आपका पार्टनर नॉट सो गुड फील कर रहा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। भाई पहली बात जो मैंने आपको बताई तो वो तो आपको याद होगी कि आपको डिटेक्टिव नहीं बनना है, आपको सपोर्ट सिस्टम बनना है। सेकेंड बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ वो है कि एक्टिव लिसनिंग कैसे की जाती है। भाई देखो ऐसा है ना, आजकल हम लोग इतने बिजी हैं और खासतौर पे हमारी स्क्रीन जो है ना वो हमारे को कई बार ना एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी जब ये लगातार स्क्रीन पे ध्यान जाता रहता है ना तो दूसरे को ऐसा लगता है सामने वाले इंसान को कि आप उसकी बात पे ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये आ जाता है कि भाई आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो हम अवॉइड करने लग गए हैं आजकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हुए। जनरली भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन ख़ासतौर पर जब आपके हम कदम की बात हो तो वहाँ पर आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई

डायरेक्ट हमेशा से ही कॉन्वर्सेशन का, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जरिया रहा है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उससे ये दिखाया जाता है कि इस समय आपका ध्यान पूरी तरह से उनके ऊपर है और आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो भी वो कह रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप उसकी परवाह करते हैं। और साथ ही भाई टेक्स्टिंग करते करते हम लोगों की बातें भी ना, कहने के तरीके भी बड़े ना उसी तरह से मोनोलॉग जैसे हो गए, सिंगल वर्ड में हम लोग अक्सर जो है जवाब देना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन की तरह कीजिए, बातों को वैलिडेट कीजिए। और हाँ, यहाँ पर ना ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय उनकी गलती बतानी है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं तो ऐसे में आपको अगर उनकी गलती दिखानी भी है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। भाई आई कैन अंडरस्टैंड इज मच बेटर देन, तो भाई गलती तो तुम्हारी थी ना, तो आप समझ सकते हैं ना बातें किस तरह से कही जाती हैं। भाई ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में किस तरह की बातें कारगर होती हैं आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर एक जनरल हिसाब से बात की जाए ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो डालती हैं। और साथ ही साथ जज करना भी तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है ना हम लोगों के लिए। मतलब हम लोग इतनी चुटकियों में रिजल्ट चाहते हैं ना कि हम लोग फ़ौरन जो है निष्कर्ष निकाल के उन्हें बताते हैं, भाई तुम्हारी गलती थी तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन सामने वाले को कितना हर्ट करती है ना, उसका अंदाज़ा ना बाद में होता है, फिर बाद में लगता है इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। जब मैं आपसे अच्छे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने की बात कर रही हूँ, आपसे एक अंडरस्टैंडिंग वाले सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने की बात कर रही हूँ, तो इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब हम गलती बताना शुरू करते हैं या अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं ना, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उन्हें जज कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो, किस तरह से अगर आपके सुनहरे चमकीले दिन में जो है ये कुछ शेडोज़ आ जाती हैं, ये कुछ ऐसा समय आ जाता है जब धूप थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए और मूड जो है वो ऑफ हो जाए, तो अपने पार्टनर के मूड को बेहतर करने का क्या तरीका हो सकता है, ऐसी ही कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका हम कदम, सुन रहे हैं इसे आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। और अगला जो मैं आपको सॉन्ग सुनवाने जा रही हूँ फ्रॉम द मूवी सावरिया शान की आवाज़ में, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हम कदम जी, जहाँ पे हम करते हैं आपके ज़िंदगी के सबसे क्लोज कनेक्शंस की बात। और इस प्रोग्राम को सुनते हैं आप हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में, और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। और आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ऑफ मूड को जो है ना गायब किया जाए और उसके साथ साथ ज़िंदगी की जो धूप है और जो चमकीले दिन है उन्हें कैसे वापस लाया जाए। हमने ये बात की कि इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को अपना के जो है आप अपने पार्टनर को सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनके ऑफ मूड को जो है ना बेहतर करने में हेल्प भी कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत से तरीके होते हैं, अपने अपने पर्सनल जो होते हैं ना वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ जनरल होते हैं ना उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जब ये बात आपके हाथ से बाहर निकल जाए तब ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल हेल्प की। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़िंदगी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कभी कभी कोई पार्टनर जो है ना लड़खड़ा जाता है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे में केवल आपका कंधा जो है ना या आपका सपोर्ट काफ़ी नहीं रहता है। ऐसे में वो सिर्फ एक बैड डे नहीं होता, वो वीकेंड से शुरुआत हो जाती है या फिर वीक से शुरुआत होकर मंथ्स तक जा

सकता है, लेकिन इसको रोका जा सकता है, इसके लिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑब्वियसली जो आप ये अगर आपका पार्टनर उसका मूड अगर इस तरीके से ख़राब होता है तो उसको पहचानने की और उसको सही समय पर मदद दिलाने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आती है, और थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना ऐसे में बहुत फ़ायदा करता है। बाकी ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक टीम है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को जो है उसको आप दुखी छोड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आप मस्त रह सकते हैं, क्योंकि घर जो है वो दोनों से मिलकर बनता है। ये यात्रा जो है ये दोनों जब तक कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते तब तक पूरी नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर ही आगे बढ़ना होता है। जब आपका पार्टनर उदास हो तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी समझदारी, ढेर सारा प्यार और थोड़ी सी भी अप्रोच, थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक कई बार बहुत बड़े बड़े काम जो है ना वो कर सकता है। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो है ना मूड स्विंग्स बहुत आम बात हो चुकी हैं, और मूड ख़राब होना ये तो कई बार ऐसा होता है कि रोज़ाना की ही बात है, लेकिन कब ये एक बैड डे है और कब ये जो है ना एक बैड अप्रोच में बदल चुका है, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत हो गई है। और ख़ासतौर पर जब गर्मी का मौसम इस तरह से पूरी अपने तीखेपन के साथ आपको परेशान कर रहा हो ना, तो ऐसे में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए अपनी मनस्थिति जो है, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आपका इमोशनल वेलबींग है, वो अच्छा रहे। वैसे हमारे कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि आपके हेल्थ को जो है एड्रेस करते हैं, और केवल फिजिकल हेल्थ को नहीं आपकी मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करते हैं। जैसे हमारा अगला प्रोग्राम जो कि आपकी सेहत के साथ जुड़ा है और उसके समाधान आपके लिए प्रस्तुत करता है, आज उसमें जिस विषय पर बात होगी, यानी कि रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम की बात कर रही हूँ मैं, आज जिस विषय के ऊपर बात होगी वो है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। और इसमें जो एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे वो हैं डॉक्टर MS तोमर जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही किया चैटर्जी जो कि न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हैं। ये प्रोग्राम अगला जो कि आप सुनेंगे 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे 3 से 4 बजे के बीच में, ये आपके लिए लेकर आएगा इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आजकल हमारी हेल्थ से जुड़ गई हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के साथ में जो जुड़ गई हैं, ये सभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ से दो चार होना और इसके साथ साथ जितनी भी आपकी सेहत से जुड़ी समस्याएँ हैं उन सभी को एक एक करके जो है ना उससे जुड़ी जानकारी और समाधान प्रस्तुत करना, ये करता है हमारा ये प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसे आप सुनेंगे 3 से 4 बजे के बीच में, यानी कि अगला प्रोग्राम 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। फिलहाल आज का हम कदम था बस यहीं तक, मेरी यात्रा का फिलहाल यहाँ पर होता है अंत, और बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे का ये समय जो जुड़ा है आपकी ज़िंदगी के सबसे क्लोज कनेक्शंस के साथ में, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, साथ ही मेरी प्लेलिस्ट, एंड ऑब्वियसली मैं आखिरी गाना आप सभी के लिए जो प्ले कर रही हूँ ना, वन ऑफ माय फेवरेट्स, सूरज जगन और जोई बरुआ की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाज़त।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है, जहां वह सिर्फ बोलना नहीं जीना सीखता है। परिवार वह छत है जहां बचपन सपने देखते हैं, और वही नींव है जहां भविष्य खड़ा होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, यानी परिवारों के भीतर और समाज में मौजूद असमानताओं के बीच बच्चों का शारीरिक और मानसिक कल्याण, बच्चों का विकास अच्छे भोजन और शिक्षा के साथ साथ एक सुरक्षित सहयोगी और भावनात्मक रूप से मजबूत पारिवारिक माहौल से भी जुड़ा होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेष विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर एम एस तोमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: थैंक यू।
2: और साथ है केया चटर्जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
4: नमस्कार, थैंक यू।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे परिवारों में मौजूद असमानताएं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर एम एस तोमर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है।
3: देखिए, परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। सबसे पहले देखिए, परिवार का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व एवं संस्कार है संयुक्त समूह परिवार है। अर्थात प्रेम सुरक्षा जिम्मेदारी और संस्कार से जुड़े लोगों का समूह ही परिवार है। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उस परिवार में ये सारी चीज़ें है या नहीं है। जैसे प्रेम है, सुरक्षा है, एक दूसरे को सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम वो हमें क्रिएट करना है। जिम्मेदारी, हर किसी की एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उस जिम्मेदारी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोग कितना निर्वहन कर रहे हैं। और संस्कार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों में जो हम संस्कार देते हैं वही जो हम बिहेव करते हैं वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो जितना फैमिली का अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं उतना ही बच्चा के विकास पे असर पड़ता है परिवार का।
2: किया जी, आपसे जानेंगे कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे करें।
4: जी देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको अपने माँ से एक जुड़ाव होता है और वो अपने माँ के साथ रहता है, तो जब बढ़ता रहता है तो प्यार पनपता है। सो जैसे आज आप

0: टॉपिक है लव, सो उसमें भी बच्चा अच्छी तरह ही पनप जाता है. और जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ को या पापा को उनको जादू की झप्पी दे के या उनके साथ बैठ के उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके उनको पास रखना होता है. जितना पास रखेंगे, जो फिजिकल टच होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मानसिक एज वेल एज इमोशनल. अब हम आते हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन, जो जिन्होंने रिसर्च किया और एक बुक भी पब्लिश किया, 5 Love Languages ऑफ किड्स. उसमें क्या होता है, उन्होंने डिफाइन किया कि 5 Love Languages, जैसे कि ना कुछ बच्चों को गिफ्ट मिलना बहुत पसंद है, वो फर्स्ट हो गया उसका लव लैंग्वेज. फिर किसी को तारीफ करना पसंद है तो वो हो गया सेकेंड लव लैंग्वेज. फिर हो गया फिजिकल क्लोजनेस. फिर हो गया है कम्युनिकेशन, कैसे हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ. फिर हो गया है ख्याल रखना. तो ये 5 चीज़ें हो गए. तो जिस बच्चे का माँ को पता लग जाता है कि उस बच्चे का कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड, कौन सा फिफ्थ, उस हिसाब से बच्चों को प्यार देना चाहिए. अब वो तो बचपन की बात हो गई. जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है बच्चा, तो उसमें उसके पीयर्स आ जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आते हैं. तो माँ को पापा को सारा टाइम एक बच्चों को एक माहौल देना है, एक उनको सेफ्टी नेट देना है कि बच्चे तुम्हारे लिए हम सदा पास में रहते हैं, तो बच्चा खुल के बात करेगा. ऐसे करते करते जब बचपन से माँ बाप का सपोर्ट रहता है, बच्चा जब बड़ा होता है तब उनका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है. कॉन्फिडेंस के साथ आता है उनका पढ़ाई का उच्च होने का इच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस. फिर सब कार्य में उनकी मन की इच्छा भी बड़ी होती है. फिर उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर स्पोर्ट्स से माइंड खेलता है. तो ऐसे करके मेंटल विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है.
1: मतलब मेंटल सिक्योरिटी मेंटली स्ट्रांग करती है
0: एग्जैक्टली. तो एक बचपन से ही शुरू हो जाता है, जैसे बोलते ना नींव
1: जी,
0: तो नींव से ही स्टार्ट करना होता है
1: जी. एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर. हेलो
2: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी. आपका
2: नमस्कार?
1: नाम
2: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से
1: जी. बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में.
2: पहले इस सबसे बेहतरीन परिवार को मैं बधाई देती हूँ
1: जी, धन्यवाद.
0: थैंक यू.
1: रेडियो डॉक्टर आपका परिवार है और आप भी इस रेडियो डॉक्टर का हिस्सा हैं.
2: मैं हिस्सा हूँ, पर मेरा सबसे प्यारा परिवार यही है
1: जी. बहुत धन्यवाद.
2: एक तो मैं रेडियो फ्रीक हूँ, रेडियो में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, टीवी मेरे को अच्छा नहीं लगता.
3: दैट्स वेरी
2: गुड. पर आपका प्रोग्राम मैं एक महीना कनाडा गई थी, बहुत मिस किया तो इसलिए आप सबको बहुत बधाई.
1: आपने मिस करा, अगर आप लोगों का कॉल नहीं आता तो शायद हम भी आप लोगों को मिस करते हैं. आप हमसे जुड़े रहते हैं, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए प्रोग्राम में हर बार एक नया टॉपिक लेकर आए. तो बताइए मिसेस बेदी, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न सबसे पहले तो ये जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया ना, 5 प्यार के स्टेप्स बच्चों के लिए. बच्चों की ग्रोथ आजकल इसलिए रुक रही है कि एक तो पेरेंट्स की ही आपस में ज्यादा अच्छे से नहीं रहते, क्योंकि जॉब में काफी डिफिकल्टीज आती हैं. अगर पेरेंट्स ही झगड़ेंगे तो बच्चे की ग्रोथ बहुत खराब हो जाएगी
1: जी, बिल्कुल.
2: दूसरा, फैमिली में अब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, सबसे बड़ी ये कमी आ गई है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़िया ही नहीं. मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपका मैसेज दुनिया जाने
3: जी.
2: और आपका मैसेज दूर दूर तक पहुंचे कि फैमिली बहुत जरूरी है. न्यूक्लियर फैमिली कोई फैमिली नहीं है
1: जी. हाँ, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि तो फैमिली लोगों कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज्यादा जरूरी है.
2: हाँ जी, तो मैं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि इतना बढ़िया आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जो आज का है.
1: हम भी आपके लिए बहुत थैंकफुल. आप हमारे साथ, आपने कॉल किया, हमारे साथ जुड़े रेडियो डॉक्टर में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर तोमर, जैसे कि अभी केया जी ने कहा कि मानसिक विकास बच्चों के लिए कितना जरूरी है, ऐसे में अगर हम बात करें शारीरिक विकास के लिए, तो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे करें कि बचपन से ही उनकी ग्रोथ सही हो?
3: देखिए, हमारे एक कहावत है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कैसा बनेगा, वो उसके पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है. तो पूरी फैमिली को इस पर ध्यान देना है. हम लोग बच्चा पैदा होने के बाद सोचते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं. कई बार तो 6 महीने पर बच्चा हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है. बल्कि जब से बच्चा पेट में आता है, कंसेप्शन से, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन से आपको उसकी हेल्थ के बारे में सोचना है. क्योंकि आपका जो, हमारी लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज में गोल्डन 1000 डेज कहते हैं हम इसको, 1000 दिन जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू टिल 2 ईयर्स ऑफ एज. ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि मदर का आपको पूरा ख्याल रखना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, उसकी डाइट को अच्छा रखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा विकास बच्चे का पेट के अंदर ही हो जाता है। जो बच्चे के अंग बनते हैं, बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसी को आपको कैरी ऑन करना है।
0: इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला ना, तो ये बच्चों का घर में एक माहौल अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे ना अपने पेरेंट्स से अब्सॉर्ब कर लेते हैं उनकी परेशानियां, जैसे कि आर्थिक परेशानियां हुए या नॉर्मल कोई भी ऑफिस रिलेटेड हुआ या मानसिक परेशानी, तो बच्चे वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनके बिहेवियर में आता है, जैसे वो झल्लाहट करते हैं या टीनेज टैंट्रम्स करते हैं, कुछ भी
3: बिल्कुल।
0: तो उस वजह से बच्चों को देखना होगा कि भाई माहौल अच्छा है तो ही वो अच्छी तरह कर पाएंगे।
3: बिल्कुल,
1: माहौल से हम भी इस माहौल को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत
3: जी।

0: परिवार में सभी सदस्य हों, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे कि एक कॉलर ने पहले हमसे लाइन पे कहा था कि आजकल माता पिता वर्किंग है, बच्चों को टाइम नहीं दे
1: जी
0: पाते,
1: जी
0: तो ऐसे में बच्चों के वेलबींग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक ग्रोथ सही हो, वो हेल्दी हो? क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं हेल्दी है, लेकिन बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते, तो क्या किया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्दी
0: जी
1: होता क्या है बेसिकली। तो अगर आप WHO की डेफिनेशन को देखें तो इसे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। तो कोई बच्चे का वेट अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। उसको इमोशनली कितना स्ट्रांग है बच्चा, सोशली वेलबींग है कि नहीं उसकी, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, अभी जो हमारे कॉलर ने एक क्वेश्चन उठाया था कि पेरेंट्स घर में झगड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए हम जो पेरेंट्स को समझाते हैं कि जैसे ही बच्चा आपके घर में आता है तो मान के चलिए आपके घर में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है एग्जैक्टली आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बाकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं, वो सारा आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। और जाने अनजाने में है जो ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। आपको झगड़ना है वो नेचुरल, आप अकेले में भी झगड़ सकते हैं, आपको एंगर को मैनेजमेंट करना है और जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका बच्चा वो करेगा। बाकी मैडम आप बताइए, कुछ ऐड कौन करना चाहें इसमें?
0: हाँ किया जी, आप बताइए कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए परिवार का क्या रोल रहना चाहिए, कितना अपनापन उनको देना चाहिए?
2: जी देखिए, बचपन से ही बच्चों के साथ रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है, उनके साथ खेले, माँ बाप खेले उनके साथ, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनको फील करवाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनको बचपन से ही के ग्रैटिट्यूड का फीलिंग दिलवाना चाहिए कि जी थैंकफुल रहे बड़ों से या जिनसे भी तुम मिल रहा है तुम्हें, थैंकफुल रहे। फिर हम आते हैं कि थोड़े जब बच्चे बड़े हो गए हैं तब जब वो स्कूल जाते हैं तब उनमें एक पीयर्स प्रेशर के बोल भी बोल सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो उनके में उनमें एक अग्रेशन आता है, एंगर बिहेवियर आता है, उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि शांति से चीज़ों को सुलझाएं। वो कैसे कराएंगे? वो पहले तो जब देखेंगे कि एटमॉस्फेयर अगर बिगड़ रहा है तो वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि वो अपने से ही संभल जाए। उसके बाद उनको समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से समझाएंगे कि ये उचित है ये नहीं उचित है, ऐसे करके। उसके बाद एक दैनिक दिनचर्या पर टिके रहे ताकि एक डिसिप्लिन लाए बच्चों में, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होएगा, माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, उससे बच्चों का विकास में भी परिवर्तन आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है ना। उसके बाद जो परिस्थितियों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो परिस्थितियां फिर से ना आए, ये माँ बाप को ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि उनको धुतकारे, क्योंकि जैसे माँ बाप, जैसे आज डॉक्टर साहब ने बोला कि माँ बाप जैसे करते हैं वो बच्चे इम्बाइब कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि नॉर्मल है कि माँ बाप झगड़ रहे हैं इस पर चर्चा विचार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ठीक पथ पे जाना है। इसीलिए उन बच्चों के साथ समय बिताएं, फिर उनको जब बाहर ले जाए फिर प्रोत्साहित कीजिए कोई भी एक्टिविटीज़ में, जैसे गाना हुआ उसमें माइंड का बहुत ही असर होता है, फिर योगा हुआ, फिर मेडिटेशन हुआ, इन सब चीज़ों में जो नर्व्स होते हैं उनको सूदिंग मिलता है। फिर प्रैक्टिस करना चाहिए कि एकांत कैसे रहा जा सकता है, उसमें बहुत ही अच्छा होता है, फिर एग्ज़ाम्स में परिवर्तन आता है। ऐसे करके शुरू से ही बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट में ध्यान रखे पेरेंट्स।
0: लेकिन आजकल जहाँ सोशल मीडिया के टाइम पे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है तो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते खेलने के लिए,
2: क्योंकि उनके होमवर्क भी तो बहुत आते हैं और सारा इंटरनेट से ही आता है।
0: जी तो बच्चे बोलना नहीं चाहते, तो ऐसे में उनका शारीरिक विकास कैसे करें? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
1: देखिए आजकल के खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ दोनों ही माँ बाप वर्किंग है बहुत मुश्किल हो गया है टाइम को मैनेज करना, और खास करके बच्चों को गुड क्वालिटी टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है, और टाइम पेरेंट्स दे भी रहे हैं तो उसमें क्वालिटी टाइम नहीं, एंगेजमेंट बच्चे के साथ बहुत कम हो रहा है। स्क्रीन बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर एक क्लियर कट गाइडलाइंस कि 2 साल से पहले, 18 महीने से पहले बच्चे को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वो खाना नहीं खाता,
2: हम
1: मम्मी को लगता है यस, तो उसको खाना खिलाने के लिए अक्सर मना करते हैं कि आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना है, लेकिन मम्मी कहती है सर मैं सिर्फ खाना खाते समय दिखाती हूँ।
2: एग्जैक्टली
1: आपका बच्चा कोई डस्टबिन नहीं है कि आपने मोबाइल के थ्रू उसका मुंह खोला और अंदर खाना डाल दिया, वो खाना उसको हजम भी नहीं होगा, उसको कोई फायदा भी नहीं होना, वो कुछ सीख ही नहीं रहा उस खाने से।

0: उसको टेस्ट को नहीं ले रहा बच्चा, सिर्फ मुंह में अंदर जा रहा है। तो कभी भी बच्चे को शुरुआत वहीं से होती है 5-6 महीने से कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है, तो स्क्रीन टाइम के लिए गाइडलाइंस बड़ी फिक्स हैं। आपको 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम आपको 1 आवर तक आपको देना है, 5 साल से ऊपर बच्चे को 1 to 2 आवर्स आप दे सकते हैं, बट उसमें भी आपको कंट्रोल रखना है स्क्रीन और डिजिटल कंट्रोल, जो पेरेंटिंग कंट्रोल है वो आपको रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इतना सारी समस्याएं आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, खास करके हमारे क्लिनिक्स में बच्चे बहुत टेंट्रम शो करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, जिनका न केवल स्क्रीन की वजह से बल्कि जंक फूड को भी आपको डिस्कस करेंगे बाद में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो एग्जैक्टली टाइम से आप सलाह लें कि कैसे आपको आगे बढ़ना
1: देखा जाए तो बचपन से हमने ही उनको आदत फोन देकर एक आदत डाल दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: लगता है कि बाहर जाएंगे इस अच्छे एक जगह बैठे हैं फोन देख लें तो। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों को
0: फोन फिक्स ना दे चाहिए, बिल्कुल डिजिटल फ्री जोन आपको डिक्लेयर करना है घर में कि जैसे आप जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ डिजिटल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए। आपका बच्चों का बेड है जहाँ पर आप सो रहे हैं वो बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए, वहाँ अलाउड ही ना होना चाहिए। 1 घंटे पहले बिल्कुल आपको मोबाइल और टीवी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो रूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, अच्छा लगता है बच्चे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं।
1: और बच्चों का जो खाली टाइम है उस पे फोन देने की बजाय बच्चों को बाहर वर्कआउट के लिए ले,
0: दिस इज द ओनली वे। अब बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, ये तो मानता ही नहीं है, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितने बच्चों को आप बाहर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे बच्चा आपका मोबाइल छुएगा तक नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए स्पोर्ट्स के लिए।
2: लेकिन आजकल माँ बाप ही इतना फोन पे रहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं माँ बाप जो गेमिंग में आते हैं
0: बिल्कुल,
2: और फिर बच्चे इतने छोटे होते हैं 2-3 साल से वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हम थेरेपी देते हैं बच्चों को, प्रॉपर थेरेपी।
1: उसमें क्या होता है थेरेपी में?
2: देखिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज, न्यूरो इज माइंड रिलेटेड, लिंग्विस्टिक हम जो बात करते हैं अपने माइंड के साथ, और प्रोग्रामिंग हम जैसे प्रोग्राम्ड हुए हैं इतने सालों से। ठीक है, नाउ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है कुछ ये टूल्स है, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस है जिसके माध्यम से हम एक पेशेंट्स को थेरेपी से ठीक करते हैं। इसमें हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिफरेंट टेक्निक्स हैं उससे हम रिलैक्स करवाते हैं पेशेंट को, उसके बाद एक्सरसाइजेस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद वो बच्चा एक्सरसाइजेस थ्रू माइंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो कि नथीटा टाइम में होता है, जो सुबह का टाइम होता है, उस टाइम में प्रैक्टिस कर करके वो ठीक होते हैं। बट ये भी पेरेंट्स का ही हाथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि एक रूल बनाना चाहिए, लेकिन जनरली पेरेंट्स बनाते नहीं है क्योंकि उनके कन्वीनियंस पे चलता है सब कुछ
1: जी।
2: तो अगर वो पेरेंट्स रूल बना दे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला तो वो एकदम बच्चा ठीक हो जाता है। तो जैसे
0: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें, हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका रोल क्या है, उन्हें क्या करना है। एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि अच्छी बुक्स दे देना, अच्छे उनके लिए मोबाइल या कुछ गेमिंग जो आजकल आते हैं वो दे देना, वो पेरेंटिंग नहीं है
2: ना, वो एग्जैक्टली
0: आपको ये सीखना है कि आपका रोल एज ए पेरेंट्स, माँ बाप का रोल इतना होता है कि बच्ची को अच्छी लाइफ जीना कैसे सिखाना है वो आपको आना चाहिए।
1: देखा जाए तो अगर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते हैं,
0: एग्जैक्टली बहुत सारा फर्क पड़ रहा है इसका।
2: आप मानेंगे नहीं, बच्चे
0: 90% यस 90% प्रॉब्लम्स बच्चों की हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन है, जो कि मैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैडम आपने भी देखा हुआ?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, वेपिंग में आ जाते हैं बचपन से, ये ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं, बट एक बार अगर आ गए तो बस लाइफ तो गई।
1: तो बच्चों में एंग्जाइटी हो गई, वो शायद लोनलीनेस में चले जाते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते।
2: उसके लिए भी हम NLP के थ्रू उनको थेरेपी देते हैं, तब वो सुधरते हैं। अदरवाइज और देखा गया है कि ये जो इंडिया में मानसिक अवस्था है वो कुछ अच्छी नहीं है, वो 5 करोड़ किड्स दे आर अफेक्टेड, पीड़ित है, और 80-90% जो पेशेंट्स है, मतलब प्रॉब्लम है जिनमें, वो चिकित्सा ही नहीं करवाते कुछ सोशल स्टिग्मा के वजह से, और कुछ जानने ही नहीं खुद पाते हैं कि
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और ये सारा स्टार्ट होता है यही एग्रेशन से, फिर एंगर से, डिप्रेशन, बिहेवियर डिसऑर्डर, और घर से ही तो शुरू होता है ये पहले।
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से ये लिखते हैं, नमस्कार, बच्चों को प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा ना स्कूलों में हो रहा है ना घरों में, तो क्या इसके लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता? डॉक्टर तोमर, पहले आप बताएं इस पे।
0: देखिए,
1: शारीरिक पूछ रहे हैं कि शारीरिक विकास कैसे करें।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कहानी पढ़ने से शारीरिक विकास होगा ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, बट डेफिनेटली बच्चे की मेमोरी अच्छी बनती है जब कहानी सुनते हैं, एक बॉन्डिंग बढ़ती है। अक्सर जो दादी माँ की कहानियाँ हुआ करती थी वो एक मैसेज भी देती थी कहीं ना कहीं, तो वो जो हम वैल्यू सीखते हैं परिवार से, तो वो कहानी के थ्रू ही हमें सिखाया जाता था। शारीरिक विकास के लिए तो आपको बच्चे को अच्छा खाना देना है, हेल्दी डाइट देनी है, बच्चे का जो खेलने कूदने का समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, और स्क्रीन से आपको दूर रखना है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्क्रीन से हो रहा है बच्चों
1: को। स्क्रीन टाइम से बचने के लिए ही बच्चों को शायद कहानी पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि प्रेरित कैसे करें। हाँ, तो इस पे किया जी, आप क्या कहेंगे?
2: जरूर, इससे जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, माइंड को जाएगा वो आवाज़, तो सूदिंग इफेक्ट होगा नर्व्स में, ब्रेन के नर्व्स में होगा, और फिर वो बातों में फिर वो सब आता जाएगा, और फिर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक होता है बच्चों को, स्टमक एक होता है, वो पता लगता रहता है कि बच्चा ठीक से जैसे कि ना चल, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, ये सब मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं उससे पता लगता है। तो ये ज़रूरी है कि कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को बहुत आराम मिलता है।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, सभी स्टूडियो में आए एक्सपर्ट और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून।
2: थैंक यू।
1: वो लिखते हैं, स्कूल में इस विषय में क्या कोई कार्य हो रहा है, इनका कोई काउंसलिंग होता है क्या, कृपया बताएं। थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड। तो क्या जी, आप क्या कहेंगे इस पे?
2: क्योंकि काउंसलिंग की ये तो होता है, हैप्पीनेस करिकुलम तो खूब ही चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री का जो भी है कुछ करिकुलम्स है, हर स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल्स में करते हैं काफी लोग,
1: बच्चों की भी काउंसलिंग होती है, शायद पेरेंट्स की भी होती है कि वो बच्चों के
2: साथ, का तो होता है, पीटीएम मीटिंग्स हम हर समय पहुंचाते हैं।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, देवदत्त परसोलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू देवदत्त जी,
0: थैंक यू सो मच।
1: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मेरी दुनिया तू ही रे, हर माँ बाप को बच्चे को ये फील कराना ज़रूरी है कि मेरी दुनिया तू ही रे, जिससे एक परिवार में एक बॉन्डिंग दिखे। डॉक्टर तोमर, आप हमें बताइए कि बच्चे की बचपन से हर एज ग्रुप में ग्रोथ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करें, क्या क्या हमें देखना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या कहाँ लैग कर रहे हैं, कैसे पहचाने?
2: देखिए, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी वेलबींग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज गोल्डन 1000 डेज, जो हम पहले भी आप डिस्कस किए थे। शुरू के 9 महीने का जो गर्भावस्था का समय होता है, और उसके अलावा जो 2 साल हैं, बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 90% उसी एज में हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि 2 साल के बाद बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, उसका बुद्धिमान बन जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। IQ लेवल जो होता है बच्चे का, वो 2 साल तक ही डेवलपमेंट होता है, 90% हो जाता है या मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, दोनों पे ही शारीरिक और मानसिक विकास पे हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से गर्भ संस्कार जैसे एक कंसेप्ट आया था। जैसे आपने अगर सुना होगा तो, जैसे अभिमन्यु था, पेट में से सीख के आया था, ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक हुआ होगा या कुछ सीख के आया होगा। दैट वॉज ए टोटली एपिजेनेटिस, मीन्स वो कंडीशनिंग इस तरीके से किया गया कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो वो आपको 9 मंथ का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 9 महीने आपको मदर पे फोकस करना है, मदर को खुद अपने आप पे फोकस करना है, ताकि उसका बच्चा है अच्छे से ग्रो करे अंदर। आपको बहुत छोटी सी बात नहीं पता होगी, जो कि प्रूवन है बहुत सारी स्टडीज में, कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, वो एक सिजरन बॉर्न बेबी होते हैं, तो जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम, उसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है। अदर सेन प्रूवन थिंग, हमें इस एंगल पर भी काम करना चाहिए कि आजकल पेरेंट्स अक्सर फैमिली प्लानिंग करते नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती ही नहीं है, उसको कई सालों पहले से आपको अपने आप को तैयार करना है, ताकि आप एक हेल्दी बच्चा समाज को दे सकें। उसके

0: जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद देखते हैं कि शुरू का जो 6 महीने का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पीरियड में बच्चे का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नींव भरती है वो भरती है, चाहे इम्यूनिटी का हो, चाहे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो। उस समय दो चीज़ें होती है बच्चे का, एक तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है तो बच्चे को बाहर की बीमारियों से बचाना भी है हमको, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको पहली वैक्सीन कहते हैं वो है माँ का दूध। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे या बहुत सारे स्टडीज में ये प्रूवन हुआ है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। माँ का दूध केवल उसी समय पेट भरने के लिए नहीं होता है बल्कि 100 साल तक के लिए, लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं आज के टाइम में, जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी कैंसर्स हैं, इन सबसे आपको बचाना है बच्चे को, तो सिंपल है कि बच्चे को 6 महीने माँ का दूध पिलाया जाए। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मदर फीड, मींस माँ के दूध के अलावा आपको सपने में सोचना भी नहीं है कि कोई एक बूंद भी ऊपर से कुछ देना है। तो ये हमारा 6 महीने तक का टाइम हो। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिर से स्क्रीन अंदर आ जाती है, तो उससे वहाँ आपको बचाना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध आपको देना है, किसी और की माँ का दूध आपको देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे बच्चा 6 महीने का होता है अक्सर माँ क्या करती है कि उसको गाय भैंस का या डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देती है, तो उससे आपको बचना है। आप उसको खाना देना स्टार्ट करिएगा, माँ का दूध चलने दीजिए 2 साल तक के लिए, साथ साथ में उसको खाना देना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से हम बच्चे को 2 साल तक डेवलप कराते हैं। उसके बाद फिर आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट, हम सब जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मम्मी को बिजी लाइफ स्टाइल हो गया है, सबको शॉर्ट कट चाहिए, इतने सारे बेबी फूड आ गए, इसकी इंडस्ट्री देख कितनी बड़ी हो गई बेबी फूड की, एंड देर ऑल प्रोसेस फूड, दे आर ऑल जंक फूड एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस, दे प्रमोट ओबेसिटीज, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एडिक्शन होता है। अगर आपने कभी एक बार कुछ जंक फूड ले लिया, आपको घर का खाना बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वो जंक फूड कभी भी, क्योंकि बहुत हाई शुगर होता है उनके अंदर, बहुत हाई सॉल्ट होता है, और जैसे ही बच्चा वो खाना खाने के बाद फिर घर का खाना खाता है तो उसको वो किक नहीं मिलती है, उसके ब्रेन में वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, तो बच्चा फिर घर में खाना खाता ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे बच्चा और बड़ा होता है उसके बाद आपको बच्चे को जितना हो सकता है उतना प्ले टाइम देना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ जब स्कूल जाने लगे तो आपको बच्चे को अच्छा प्ले टाइम देना चाहिए, इससे बच्चा स्क्रीन से ही बचेगा और उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। बाकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैडम कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें इसमें?
1: जी जरूर जी, बताइए कि जी कि कैसे बच्चे के, ये तो उन्होंने बताया डॉक्टर तोमर ने, शारीरिक विकास कैसे करें, आप हमें बताएं कि मानसिक विकास बचपन से बच्चे का कैसे करें कि जिससे वो बड़ा होते होते प्रॉपर उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए।
2: हाँ जी, देखिए जैसे ही बच्चा आ गया, बाहर आ गया जैसे बच्चा, तो उनके पेरेंट्स को उनको पार्क में ले जाएं, फिर पार्क में जैसे जाएंगे तो पेड़ पौधों के साथ जब रहेंगे बच्चों, वो अलग ही एक नेचर से इंट्रोडक्शन होएगा बच्चों का। सो ऐसे करते करते थ्रू आउट एवरी डे एक पार्क का हैबिट बनाइए, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा, खेलेगा, नंगे पैर पार्क में चलेगा, ग्रास के साथ उसका ग्राउंडिंग होएगा, तो जो ग्रास के साथ उसका पैर में चलने से वो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। फिर बचपन से ही ट्राई करने के लिए कि योगा करें बच्चे, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के रूप में नहीं, साइलेंस प्रैक्टिस करें, बोले कि थोड़ी देर शांत रहो। तो ये शुरुआत कैसे करेंगे, पहले 5 मिनट से करेंगे, 1 हफ्ता 5 मिनट किया, 2 हफ्ता 10 मिनट किया, तो जब बचपन से ही करेंगे बच्चे तो उनका आदत लग जाएगी। फिर घर में देखेंगे कि प्रेयर्स हो रहे हैं, पूजा पाठ होता है, तो पूजा पाठ से भी शांति मिलती है, जो इसेंस का जो खुशबू आता है उसमें भी एक आराम मिलता है नसों को, नर्वस सिस्टम को। फिर हम आते हैं, जैसे मैं साइको न्यूरोबिक्स प्रैक्टिशनर भी हूं, वो है हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे मैंने बोला, बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस प्रैक्टिस किया, फिर मेडिटेशन किया, फिर हाई लेवल पे गए, तो जब जब जितना आप मेडिटेशन करोगे, साइलेंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम कूल होएगा और आप झगड़ा नहीं करोगे बड़े होके। आजकल क्या होता है, रोड रेजेस होते हैं, रोड रेजेस में क्या होते हैं, झगड़ा अशांति शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज़ नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए घर का माहौल एक उचित देने के लिए माँ बाप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता
1: जैसे
2: है।
1: जैसे अभी आपने कहा कि कोई इंसिडेंट हो गया, झगड़ना शुरू करते हैं, हाँ, इसी से रिलेटेड एक मैसेज हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम गैंगटॉक, हाउ टू कॉम्बैट द टेंपर टेंट्रम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट।
2: हाँ, इसमें मैं चित्र बताऊंगी, क्योंकि

0: ये मैंने अच्छी तरह थेरेपी में मतलब ठीक किया है कुछ बच्चों का। देखिए, जैसे ही बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, छोटा बच्चा भी बहुत हाइपर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बच्चे होते हैं, तो जैसे ही हाइपर हो जाते हैं तो एकदम पूरा माहौल शांत करते। ये नहीं कि पेरेंट्स उसी टाइम ही बच्चों को सब कुछ सीखते, नहीं, वो वेट करे जब बच्चों का क्रोध शांत होएगा। देखिए, एक थॉट जब आती है वो थॉट शरीर में 3 घंटे से पहले नहीं जाती है, और वो थॉट शरीर में 60,000 से लेके 2 लाख तक थॉट्स पर डे एक इंसान को आता है। तो जब सोचिए, जब क्रोधित बच्चा या कोई भी क्रोधित जब होता है तब तो वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वो थॉट प्रोसेस। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि शांति से सुलझाए। पहले भी मैंने बोला कि कहानियों के माध्यम से उनको समझाए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाए, लेकिन समझाना ज़रूरी है, लेकिन उस समय नहीं, थोड़ी देर बाद।
1: लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी शांत रहना जरूरी है। कई बार होता है पेरेंट्स भी रिएक्शन कर जाते हैं, वो भी उनको
0: यस
1: डांटने लगते हैं। इस पर
0: यस
1: हम और भी बात
0: हाँ
1: करेंगे,
0: जी
1: लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार।
2: जी, मेरे 4 सीधे साधे भोले भाले सवाल हैं और एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश।
1: हाँ जी
2: तो
1: बताइए।
2: पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक मुकम्मल परिवार किसे कहेंगे? क्योंकि कई फैमिली में 2 ही लोग रहते हैं, कई में 4 रहते हैं, कई में 8 रहते हैं, कई 15-20 भी रहते हैं, कुटुम्बदारी भी अच्छी खासी रहती है। तो आप एक कंप्लीट परिवार की परिभाषा मतलब किसे कहेंगे, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल होता यह है कि बच्चे माँ बाप तो बिल्कुल बिंदास बेखौफ होके बात करते हैं, कोई भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, कोई डिमांड करनी है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको उनके सीनियर से पुलिस मिलते हैं, तो वहाँ वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो उन्हें मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग किया जाए? तीसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं बच्चों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाथ पैर छूने चाहिए, उन्हें ब्लाइंड फेड ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, उनके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। अब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ सीनियर्स मिलते हैं, उनकी मजबूरी का शरारत का फायदा उठाते हैं, तो इससे हमें क्या करना चाहिए? चौथा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि संयुक्त परिवार जो है वो एकांकी परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब्दील परिवर्तित, तो इसकी वजह क्या है? और पांचवी आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी, गुजारिश आप सबों से कि जैसे बड़े बुजुर्ग प्यार के भूखे हैं ना मान सम्मान के, ऐसे बच्चे भी हैं प्यार के भूखे मान सम्मान के, तो उन्हें मान सम्मान देना और उन्हें प्यार करना सीखे। क्या कहेंगे आप, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: तो डॉक्टर तोमर, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पूछा था कि अच्छे परिवार की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे?
3: जहाँ स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व और संस्कार होते हैं, संस्कार में जैसे आपने बोला वो सब कुछ आ जाता है। जब संस्कार की बात करते हैं तो जैसे बाहर बच्चे जाते हैं तो वो बिगी बिल बन जाते हैं, या वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एक उसमें भावनात्मक उसमें आती हैं, ये यही वैल्यू हमें सीखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाना ये परिवार की जिम्मेदारी होती है। दूसरा आपने बोला कि रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों की भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली बच्चे को भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए होता है जितना को चाहिए होता है, तो वो बच्चों को हमें सिखाना है कि उन्हें कैसे करना है। और बच्चे को बहुत ज़्यादा हम करेक्ट नहीं करें, दिन भर हम बच्चे को करेक्ट करते रहते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, बल्कि उसको जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो उससे आप सवाल करिएगा, ताकि उसका अपर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, जो ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज क्या है कि दिन भर बच्चा वही सुनता है आप ये मत करो आप वो मत करो, तो उसका भी स्पाइन लेवल पर रिप्लाई आने लगता है फिर वो, तो उस तरीके से करना है। संयुक्त परिवार का होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, इंसान आजकल जो है वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है, वर्टिकल ग्रोथ मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वो आसपास की चीज़ें फिर दिखाई नहीं देती हैं, तो वही हो रहा है। ये सही समय कि हमको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहिए, हमको अपने आसपास देखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए, इससे हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होती है, लोगों से मिलना चाहिए। बल्कि दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रोज में तो हालत यह है कि ऊपर वाला नीचे वाले को जानता ही नहीं है कि वो कौन रहता है, इससे डेफिनेटली हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ये सोशल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
1: किया जी, जैसे इन्होंने एक ये भी पूछा था कि बच्चे घर में तो बिंदास डिमांड करते हैं लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे में उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए?
0: देखिए, ये ह्यूमन नेचर है कि बाहर दिखाना है कि हम बहुत ही सही है, और घर के अंदर वो अपने आप को नॉर्मली बिहेव करते हैं, और उनका नॉर्मल है कि वो जिद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ देयर नॉर्मल थिंग, बट बाहर तो दिखाना ही है कि हम इतने अच्छे हैं। तो ये सब कुछ शुरुआत होती है वो घर से ही, जैसे आपका घर का फैमिली का प्रोग्राम।
1: वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हाँ, वो बाहर नहीं बोलते,
0: हाँ
1: घर में तो बोलते रहते हैं लेकिन बाहर बिल्कुल चुपचाप रहते।

0: वो बाहर भी, जैसे आजकल होते छोटी फैमिलीज है, ठीक है, बच्चे पोजेसिव हो गए, रिजर्व हो गए, बाहर उतने सोशल नहीं है, तो उनको सोशल कैसे बनाया जाए, वो ये पूछना चाह रहे हैं।
1: हाँ, तो उनकी पर्सनालिटी क्लासेस होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, वो बच्चों को डालना चाहिए। फिर काउंसलर्स होते हैं, उनके थ्रू से बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। फिर हमारे जैसे NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके थ्रू से हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर हेल्प चाहिए कि अगर देख रहे हैं कि बच्चे कॉन्टिन्यूसली ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो घर पे नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोफेशनल उनको हेल्प लेना चाहिए।
0: लेकिन बच्चों को रिजर्व टू सोशल बनाने के लिए पेरेंट्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
1: पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे ना, स्कूल के टीचर्स से मिल के, उनसे बात करके, उनसे डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग लेके, फिर वो भी इन्वॉल्व होंगे और फिर डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल हेल्प लेंगे।
0: एक श्रोता है हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। दोनों डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार ठाकुर,
0: नमस्कार। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये था, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछना था।
0: जी बताइए।
2: जैसे मानसिक रूप का, उससे आज ये प्रोग्राम था, तो ये मानसिक होता है या ऐसा? जैसे बिटिया हमारी 24 साल की है, तो उससे पहले भी स्कूल से कि ये ऐसे हवा लग गई करके हो जाती थी, जैसा मूर्छित हो जाती थी, ये बेहोश टाइप की, या कभी कुछ जैसे डेथ केस हुए थे तो उसमें भी वो बेहोश हो जाती थी, जैसे कभी पूजा पाठ करती है तो कभी कभी उसमें उसको हो जाती है, बेहोश टाइप की हो जाती है, कि तब मानते हैं ना ये घर का कोई ऐसा कुछ दोष हो या कुछ ऐसा, या कुछ हवा या कुछ ऐसा, तो ये मानसिक होता होगा या क्या होता होगा, इसका तो समझ में नहीं आया।
1: मैं बताती हूँ, ये दोष वोष कुछ नहीं होता है, ये जो अफेक्ट होता है, शॉक मिलता है किसी की डेथ के वजह से, वो माइंड में चलता रहता है। जितना माइंड में चलेगा वो उतना ही दिखता, बड़ा और बड़ा दिखता रहेगा। तो आपकी बेटी को थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए इस वक्त, ताकि वो इस चीज़ से निकल आए। जैसे ही वो निकल आएंगे, फिर वो घर के माहौल में फिर संभल जाएंगे, बट अभी के लिए आपकी बेटी को थोड़ा सा डॉक्टर का या किसी का, काउंसलर का, साइकोनोरोबिक्स होए या साइकोपैथ होए, उनसे हेल्प चाहिए।
0: इस पर डॉक्टर, इस पर क्या जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कई बार होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का लोड हो गया या कोई भी चीज हो गई, कुछ बच्चे होते हैं वो इमिडिएटली हैंडल कर लेते हैं।
1: हाँ जी।
0: कुछ होते हैं उसको एक दिन सोचते रहेंगे, कुछ होगा हफ्ते भर सोचते रहेंगे, कुछ महीनों सोचते रहेंगे।
1: हाँ जी।
0: उसकी वजह से वो चीज सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाती, ना ही उसका रिजल्ट मिल पाता।
1: नहीं,
0: तो ऐसे में तो उन अलग अलग बच्चों के हिसाब से क्या करना चाहिए?
1: देखिए, कुछ तो अपने में ही होता है, कुछ तो तूफानी बच्चे होते हैं, कुछ स्लो डेवलपमेंट करते हैं, तो वो बच्चे टू बच्चे डिफर करते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को डिफरेंट, जैसे कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू टीचर्स उनको हेल्प करेंगे, और माँ बाप को चाहिए कि टीचर से बात करके, उनसे काउंसलिंग करके, उन बच्चों को नॉर्मलाइज किया जाए। जैसे ही करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे ठीक हो रहे हैं और नॉर्मल रिजल्ट्स आने लगे।
0: इस पे डॉक्टर तोमर आप क्या कहेंगे?
3: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हर किसी के पास ना तो साइकेट्रिस्ट है, ना ही डॉक्टर्स हैं, बल्कि आप देखें छोटे शहरों में, तो हमें बेसिक किसी भी चीज़ के लिए, समाज को चलाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें आज हम इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने वो जो हमारा पुराना कंसेप्ट था वो खो दिया। तो बच्चों को हमें एक सोशल लाइफ में करना, जैसे कहते हैं बच्चा, कुछ बच्चे बहुत वो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से बच्चों को सिखानी है। जैसे बच्चा होता है अपने परिवार में, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन जितने भी हैं, उन सबसे मिलवाइए, उनसे बात कराइए, बच्चा अपने आप ही होने लगेगा। दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत से बच्चे प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, हम सब कुछ बच्चे को सिखा देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते।
1: कि डिफरेंट स्पून फीडिंग करते
3: हैं। यस, स्पून फीडिंग नहीं करना है बच्चे को, अपने आप इसको नर्चरिंग केयर कहते हैं बेसिकली हम, कि बच्चे को इनिशियली 5 ईयर्स तक तो एक्सपीरियंस करने दीजिए, उससे बच्चे को सीखने दीजिए, आप कुछ मत सिखाइए। आपने देखा होगा बेंगलोर में एक इंसिडेंस हुआ था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा था, शादी के बाद सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, सोशल प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों पर बच्चे को तैयार नहीं किया। तो बच्चे को संस्कार से केवल एजुकेशन नहीं देना है आपको, बल्कि इन सब चीजों के लिए भी तैयार करना है कि हाउ टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशंस।
1: कभी कभी हैंडल मतलब जो होता है ना, उसी सिचुएशन को हम सिखाए नहीं सकते हैं, वो अपने आप ही हैंडल करना होता है, और वो शुरुआत ही होता है नींव से। अगर नींव मजबूत होए तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकेगा।
0: लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस

0: दिल्ली से। हाँ
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
0: मैडम, मैं सवाल ये कि अगर आजकल के जो मदर हैं वो उनका खुद का ही लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसे ही है, डिसिप्लिन नहीं है ना, हेल्थी हाइजीन का है, बच्चा भी अगर देर से उठता है और देर से सोता है तो मतलब बच्चा भी है, मतलब ब्रेस्ट फीड पे भी है, तो क्या है, बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बच्चे आजकल के जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो यंग मदर्स एंड फादर है, अब ये है कि वो बड़ों की एडवाइस पे तो उनका कोई वो लेती नहीं है, मतलब दे डिपेंड ऑन इंस्टा रील्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से एडवाइस ले लेते हैं वो,
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये मतलब बच्चे के लिए कितना मतलब डेवलपमेंट में मतलब बाधा कर सकते हैं? थैंक यू।
1: जी। पहले डॉक्टर तोमर आप बताइए कि फिजिकल
2: देखिए,
1: डेवलपमेंट पे कैसे बाधा करेगा।
2: दो चीज़ हैं सर, आपने जो बताया है कि पहले तो ये कि माँ है आजकल रील देखती हैं या इंस्टा पे है, तो एक चीज़ है हमारे यहाँ समाज में कभी भी पहले ये बैन हुआ करता था कि कोई भी किसी भी टॉपिक पर एडवाइज नहीं दे सकता, लेकिन अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब से आई है तब से कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ पे ज्ञान देने के लिए रील बना लेता है, उसे कभी भी फॉलो निकलना है, खासकर हेल्थ के बारे में आपको बिना एक्सपर्ट के सलाह के नहीं लेनी है। जो माँ है वो भी किसी का बच्चा रहा होगा, तो जब हम समाज को इस तरीके से तैयार करेंगे, अच्छे वैल्यूज देंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी कल को जाकर के माँ बनेगी तो उसको डेफिनेटली वो पता रहेगा। और जहाँ तक स्क्रीन का टाइम है, बच्चों की हेल्थ पर असर तो पड़ता ही है। प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, बच्चे की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, और लाइफ साइकिल इज़ इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो के और 10 बजे उठ रहे हैं तो आपका हेल्दी स्लीपिंग हो गया, ये नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्लीपिंग पैटर्न एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे कि पहले होता था। जो लाइफ है हमारी वो सन के अराउंड मूव करती है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो उसी के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी है।
1: इस पर क्या जी, आप क्या कहेंगी?
3: हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी
2: जी
3: डॉक्टर साहब जी जो बोला कि ये बच्चे आजकल टाइम से नहीं सोते हैं और बहुत रात तक लैपटॉप पे काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो वो ब्लू लाइट्स आती है आंखों में स्क्रीन से, वो आपके सर्कैडियन साइकिल को अफेक्ट करता है। सर्कैडियन साइकिल क्या है? सोना और जगने का साइकिल। अब जब बच्चा 4 बजे सो रहा है, सपोज रात के 4 बजे सो रहा है, तो सुबह उठते हुए मुश्किल होगी, और जैसे ही मुश्किल होगी सुबह उठते हुए उसको नींद नींद ड्राउजीनेस फील होगा थ्रू आउट द डे, बट उसको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, काम तो करना है, तो ओवर द पीरियड वो सुस्त बनता जाएगा, लेजी लथार्जी आता जाएगा। तो ये माँ बाप को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है कि बच्चे तुम टाइम से सोओगे, टाइम से खाओगे, पहले जमाने के तरह, तो ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे तो ही बच्चे ठीक हो पाएंगे। तो माँ बाप पे फिर आ जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की आजकल बहुत जरूरी है। और इंस्टा पे तो आजकल सारे टाइप के रील्स ऐसे होते हैं कि एडिक्शन हो जाती है।
2: बिल्कुल
1: जी, इसी पर एक मैसेज भी हमारे पास ये लिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि माँ एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहे? हेमचंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य, उत्तराखंड।
2: देखिए सर, लाइफ को चलाने के लिए आपको कोई डाइट चैट की जरूरत नहीं है। जो हमारे कल्चर में था, आपको सबको पता होता कि हेल्दी फूड क्या होता है, स्वस्थ खाना खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, नेचुरल खिलाइएगा, प्रोसेस फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं वो अच्छे से खिलाइएगा, और मानसिक रूप से उनको जो है सपोर्ट कीजिएगा, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा।
1: एक और मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, अगर बच्चे घर पर तो दंगा करते हैं लेकिन बाहर जाकर और ज्यादा दंगा करते हैं और डिमांड करते हैं मोबाइल दो, इसके लिए क्या किया जाए? प्लीज कृपया निर्देशित करें कि हाजी क्या कहेंगे। ये लिखा है डॉक्टर शिवराज सिंह ने।
3: बच्चे की उम्र क्या है, ये बहुत जरूरी है।
1: ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो अगर हम ले, ये बच्चा है तो मेरे ख्याल से
2: डेफिनेटली बच्चा
1: दस से
2: कोई भी हो
1: पंद्रह
2: सकता
1: साल,
2: है।
1: हाँ कोई भी हो सकता है,
3: क्योंकि
1: मोबाइल,
3: छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे, ये
1: लेकिन वो
3: स्ट्रिक्टली
1: कह रहे हैं
3: फॉलो
1: कि दंगा
3: करें।
1: करते हैं और बाहर जाके हॉर करते हैं,
3: हाँ तो उनके जिद पे ना आए ना, यही तो है पेरेंटिंग।
2: बच्चे को जो है आपको शुरू से ही
3: हाँ
2: कंट्रोल करके चलना है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे को
3: बिल्कुल
2: आपको पैम्पर नहीं करना है, आप बच्चे को संस्कार दे रहे। एक सिंपल सी, एक छोटी सी, आपको हमेशा याद रखनी बच्चों के मामले में कि बच्चा आपका कच्ची मिट्टी होता है,
3: ठीक,
2: और आप जो है कुंभकार हैं, आप कैसा शेप देना चाहते हैं, कहाँ आपको अपने हाथ को टाइट करना है, कहाँ आपके हाथ को लूज करना है, कितना सुंदर शेप आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, पेरेंट्स कच्ची मिट्टी हो गए हैं,
3: ठीक,
2: बच्चे उसको मोल्ड कर रहे हैं, जिद किया तो वो तो बच्चा आपका एडिक्टेड हो चुका है। बहुत से बड़े अडल्ट होते हैं वो ड्रग्स के लिए जिद करते हैं, कोई ड्रिंक के लिए जिद करता है, तो
1: जी
2: अल्टीमेटली आपको समझना होगा।
1: पेरेंट्स जहाँ इतना बिजी रहते हैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो हफ्ते में एक दिन क्या उनको बच्चों के

0: रात बिताना चाहिए उनके साथ, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्टिविटी करना चाहिए, ये कितना जरूरी है शारीरिक विकास के लिए? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
1: देखिए, अक्सर ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है और बहुत परेशान होते हैं अक्सर मम्मियाँ। तो उसके लिए सिंपल है कि जब भी आप बच्चों को खाना खाते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वही बच्चों को खिलाना है। और अक्सर फैमिली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल डिजिटल फ्री एरिया होना चाहिए जिसमें आपको बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना है। चलते चलते मैं एक आपको बड़ा छोटा सा मंत्र देकर जाता हूँ कि एक परिवार होता है, परिवार सुखी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे। तो उसके लिए हमारे बहुत पहले से एक कंसेप्ट हुआ करता है परिवार के लिए क्या जरूरी है, कि यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, उसका मतलब ये है। तो घर में जो आपके लेडीज हैं, जो महिलाएँ हैं, बच्चों की माँ हैं, दादी हैं, आप उनको प्रॉपर इज्जत देंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, झगड़े कम होंगे, खुशियां रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे।
0: और क्या जी, आप क्या मैसेज देंगे जाते जाते हमारे श्रोताओं को, जिससे कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है और बच्चों के लिए, जिससे उनका मानसिक विकास सही ढंग से हो?
2: हाँ जी, बच्चों के लिए है कि बच्चे जो माँ बाप बोले वो करें, और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को एक्सेप्ट करें अनकंडीशनल, उनकी सुने, उनके साथ रहें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ साथ सारे कार्य करें ताकि बच्चे भी खुश रहे। और जादू की छप्पी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, इसे ही कहते हैं फैमिली बॉन्ड। अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा होगा, आपस में प्यार होगा, तो सब आपस में खुश रहेंगे। श्रोताओं, अगर परिवार में संवाद, समानता और सहयोग हो तो हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकता है। बच्चों का बेहतर कल एक बेहतर परिवार से शुरू होता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर MS तोमर और केया चटर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू। थैंक यू
0: दोस्तों। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस स्कीम में 3 बड़े सुधारों को मंजूरी दी है।
1: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का घर है। उन्होंने बताया कि हर महीने लगभग 80 करोड़ नागरिकों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबी में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सभी लाभार्थियों का डेटा एक जगह मौजूद रहेगा और स्वच्छ पारदर्शी तथा सटीक खाद्य वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में भीषण गर्मी पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।
4: काफी दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू गुमसुम गुमसुम सी रहती है।
5: दीदी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, प्लीज मम्मी को मत बताना, प्लीज।
4: अरे क्या हुआ, सच सच बता।
5: दीदी पहले प्रॉमिस करो, आप मम्मी को कुछ नहीं बताओगी।
4: अच्छा प्रॉमिस करती हूँ, नहीं बताऊंगी मम्मी को।
5: दीदी आप राहुल को तो जानती हैं ना?
4: अच्छा वही राहुल जो तेरे साथ कॉलेज में है?
5: हाँ।
4: तो क्या हुआ बताना, उसने कुछ कहा तुझसे?
5: नहीं।
4: नहीं तो ऐसा क्या हो गया?
5: वो दीदी मैं और राहुल।
4: सच सच बता क्या हुआ, नहीं तो दूंगी एक कान पे खींच के।
5: मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई।
4: अच्छा रो मत, मैं हूँ ना, संभाल लूंगी सब।

जी हाँ, बिंदास का लेबल अगर लड़कों पर लग जाए तो लड़के बन जाते हैं हीरो, और अगर यही बात लड़कियों के लिए इस्तेमाल की जाए तो जमाना नापने लगता है उनका कैरेक्टर। दोस्तों, सदियों से चली आ रही इस तरह की सोच से अब बाहर निकल रही हैं लड़कियां, और सुरक्षित समाज भी दे रहा है उनका साथ। दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन लड़कियों की जो जीना चाहती हैं बिंदास जीवन, यानी खुले मन से अपने सपनों को उड़ान देना। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रायोजित कार्यक्रम दिशा में।

0: रहकर किए गए कार्य हमेशा सराहनीय होते हैं और बिंदास होना भी गलत नहीं है, लेकिन बिंदास होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा जो मन करे हम करें, बल्कि दिमाग में उठ रहे उन सवालों के जवाब के साथ जीना कहलाता है जो आज की परिस्थितियों ने उत्पन्न किए हुए हैं, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सुरक्षा और अपना उज्जवल भविष्य। दोस्तों, लड़कियों के बिंदास व्यवहार के लिए लोगों की क्या सोच है, आइए सुनते हैं।
1: डॉक्टर प्रेमपाल सिंह शास्त्री, मैं गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर में हापुड़ में प्राचार्य हूँ। जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ कहीं कहीं युवकों को, युवतियों को किसी होटल पर खड़े हुए वो स्वच्छता पूर्वक धूम्रपान कर रहे हैं, मदरापान कर रहे हैं और कहते हैं ये हमारी प्राइवेट लाइफ है। ये लाइफ नहीं, ये एक बहुत बड़ा आपका दोष है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य ऐसे दुष्प्रवृत्तियों से, दुष्कर्मों से बचता है। हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। आजादी पूर्वक लड़के अथवा लड़कियां कहते हैं हमारी स्वच्छंद जीवन है, ये अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं, उससे बचना चाहिए।
2: मेरा नाम कीर्ति रावत है, मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ। हम लड़कियों में बिंदास होके जीने की ललक कहीं ना कहीं हमें बहुत खुशी का एहसास कराती है कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, अपने तरह से अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं, कहीं कभी भी जा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमारे अंदर सही समझ होगी तभी कर पाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कई निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता है, या किसी पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेना ये हमें बहुत से खतरों में भी कई बार डाल सकता है। जैसे हम सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर बैठते हैं और अपने विषय में सब कुछ शेयर कर देते हैं, या कई बार तो दोस्तों संग घूमने जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसी को लेकर कई बार सामने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके से फोटो या वीडियो बनाकर हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और फिर उसे जो करवाना होता है वह हमसे करवाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि हम लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाते कि उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठा सके, तो फिर हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। एक ये कि हम उसके कहे अनुसार चलते रहें और डर डर के ज़िंदगी जीते रहें, या फिर कई बार कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जिससे हम अपना करियर खराब कर लेते हैं और हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं।
3: मेरा नाम देवांश है। क्या लड़कियों को लड़कों की तरह बिंदास होकर जीना सही है? ये सवाल सिर्फ सिगरेट, ड्रिंक या हैंगआउट का नहीं, बल्कि महिलाओं की एजेंसी, फ्रीडम और इक्वालिटी का सवाल है। एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के रूप में मैं इसे नैतिकता बनाम स्वतंत्रता के वाइडर फ्रेमवर्क में देखता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि फेमिनिज्म का मूल सिद्धांत यही है कि महिलाओं को अपनी लाइफ चॉइसेस तय करने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। इसलिए मेरे अनुसार लड़कियों का फ्रीली घूमना, करियर पर फोकस करना, फ्रेंडशिप करना, नाइट लाइफ एंजॉय करना पूरी तरह सही है, लेकिन स्मोकिंग, सब्सटेंस अब्यूज या इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को मॉडर्निटी या एम्पावरमेंट मानना बिल्कुल गलत है।
4: मेरा नाम श्रद्धा है, मैं कानपुर से हूँ। हाँ, ये बात तो सच है कि कई बार जब लड़कियाँ बिंदास होकर जीने की चाह रखती हैं तो वो बहुत से सपने देखती हैं, फिर चाहे वो सपने करियर को लेकर हो या कोई अपनी मनपसंद चीज को पाने की चाह में, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कर लेती हैं, तभी वो कई बार ऐसे चंगुल में फंस जाती हैं जहाँ से निकल पाना संभव नहीं हो पाता, बल्कि वो उस दलदल में और फंसती जाती हैं।
0: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा SR यानी संतोष राव के साथ, और आइए अब सुनते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ के विचार।
5: प्रिय श्रोता, आप में से बहुत सारी जवान लड़कियां हैं जो कि शायद स्कूल में पढ़ रही हैं या कॉलेज में पढ़ रही हैं, और आज का ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे और सलाह देंगे आपको कि किस तरीके से अपने आप को बचा के रखना है। अक्सर हम आजकल मीडिया में सुन रहे हैं कि लड़कियां गायब हो रही हैं, या तो वो खुद अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ चली जाती हैं, जिसे हाल ही में हमारी एक लिसनर जिसका नाम अनीता है, वो 15 साल की है, उसको

0: एक लड़के से प्यार हो गया और वो अपने घर से चली गई। उसके माता पिता बहुत परेशान हुए, पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भी यही कहा कि शायद वो अपनी मर्जी से चली गई होगी। और वही हुआ, ये जानना ज़रूरी है कि जब एक लड़की किशोर अवस्था में होती है तो उसके दिलो दिमाग में काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं। इस तरीके से हम रचे गए हैं क्योंकि बचपन होता है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर जवानी होती है, फिर हम शादीशुदा जीवन में होते हैं, उसके बाद बुजुर्ग अवस्था। तो हर एक जो पड़ाव हमारे जीवन में होता है उसमें हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, और किशोर अवस्था एक ऐसा जीवन का पड़ाव है जिसमें हमारा शरीर तो विकसित हो जाता है लेकिन हमारा दिमाग बच्चे का रहता है। सही और गलत की पहचान हमें नहीं होती। हम अक्सर इस आयु में गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे कि हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो किशोर अवस्था का समय है, ये आपकी पढ़ाई लिखाई और जीवन में कुछ बनने का समय है। ये अपने भावनाओं में बह जाने का समय नहीं है। पिक्चर देखकर या कहानियाँ पढ़कर या किसी के बहकावे में आकर हम अपना भविष्य खराब नहीं कर सकते। इसलिए ये आवश्यक है कि इस समय आप अपने पढ़ाई लिखाई में ही दें। सोशल मीडिया इतना सतर्क है, हमारी भावनाएं उमंग मारती हैं और अक्सर लड़कियां बहक जाती हैं और धोखे में आ जाती हैं। कितनी ऐसी पिक्चरें बन रही हैं जिसमें बताया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, कैसे छोटे बच्चों को, लड़कियों को अगवा करके दूसरी जगहों पर बेच दिया जाता है। इतनी सब जानकारी होने के बावजूद भी अगर हम सतर्क नहीं हैं और अगर हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं तो ये तो हमारी मूर्खता है। बहुत आवश्यक है कि हम किसी पर आसानी से विश्वास ना करें। किसी पर भी आसानी से विश्वास करेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए जब हम आपसे इस कार्यक्रम के द्वारा बात करते हैं तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी बात को गहराई से ना केवल सुनेंगे बल्कि उस पर चलेंगे भी। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि लड़कियां सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं जब उनको अगवा कर लिया जाता है, तो उनको बेचा जाता है। तो बहुत कुछ नुकसान जो होता है वो लड़की को ही होता है और भुगतना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां जो किशोर अवस्था की हैं अपनी पढ़ाई पे, अपने पैरों पे खड़े होने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, चाहे उनके दिल में कितनी भी उमंगें क्यों ना उछलें, वो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो समय है उनकी पढ़ाई लिखाई का है।
1: जी हाँ, सही समय का सही सदुपयोग करके ना सिर्फ हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से संवारते हैं बल्कि हम अपने भविष्य को ले जाते हैं सही दिशा में। और दोस्तों, जो लड़कियां दूसरे लोगों की देखा देखी अपनी आंखों को बंद करके बिंदासपन की चादर ओढ़ने का प्रयास करती हैं, वो हमेशा अपने आप को मुश्किल में ढकेल देती हैं। इसीलिए जमाने के साथ अगर चलना है तो अपने घर वालों का हाथ थाम कर चलिए, ना परेशानी आएगी और ना ही कोई टेंशन, साथ ही साथ ना ही चिंता सताएगी सेल्फ रिस्पेक्ट की और सुरक्षा की।

दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से आज के विषय पर बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर फोन

0: मैसेज जरूर करें 7678438471। जी हाँ 7678438471 हमारा ये नंबर है जिस पर आप हमारे काउंसलर से समाधान पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ यानी दिशा फाउंडेशन के साथ जुड़कर लोगों की जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें इसी नंबर 7678438471 पर मैसेज जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन, जिसमें हम आपको ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में। और आज जहां हम पहुंचे हैं वो कौन सा कॉलेज है, हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और वहां पे उन्होंने वहां के बहुत सारे स्टूडेंट से की मुलाकात और ऑब्वियसली बहुत सारी बात। तो चलिए ये सारी बातचीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल। करते हैं शुरुआत, क्या कुछ हुई वहां पर, ऋचा वर्मा से श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात।
2: आज मैं आई हूँ श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज करोल बाग में और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम। और चलिए एक गेम खेलते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स जो कॉलेज के बारे में कहे जाते हैं, जो यूथ्स के बारे में कहे जाते हैं, जानते हैं इन स्टूडेंट्स से कि वो मिथ हैं या रियलिटी हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कॉलेज लाइफ सिर्फ मस्ती और फन होती है, ये मिथ है या रियलिटी है?
3: नमस्कार, मेरा नाम लिवलीन है, मैं बीए जीएमसीए कोर्स की सेकेंड ईयर छात्रा हूँ। ये एक रियलिटी है कि कॉलेज में पढ़ाई सबसे ज्यादा मान्य होती है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई को देखें, आजकल हमको असाइनमेंट्स मिले जाते हैं, आजकल हमको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आजकल रिसर्च पेपर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। हमने जैसे एक रिसेंट में एक रिसर्च पेपर लिखा गया है तो हमको शुरू से लेकर अंत तक सब बताया गया कि कैसे हमको अपना रिसर्च पेपर स्क्रैच से कैसे लिखना चाहिए। हम वो कल्चर ब्रेक कर रहे हैं जो सारे शुरू से ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे, क्लासेस बंक करना, क्लासेस छोड़ना। हम मेरे को पर्सनली क्लास में मजा आता है और करंटली अगर मैं बात करूं मेरे कॉलेज में 100% अटेंडेंस है।
2: क्या बात है, देखिए ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। कॉलेजेस में 100% अटेंडेंस है। एक और मिथ और रियलिटी का चेक चाहूंगी आप सबसे कि हाई मार्क्स लाना ही सक्सेस की गारंटी है, ये मिथ है या रियलिटी है?
4: जी, मेरा नाम दिव्यांग जोशी है। तो देखिए, समझिए, आप कॉलेजेस में पढ़ ले हैं, लिख कर आप ज्यादा मार्क्स तो ले आएंगे, पर जो एक वैल्यूज आती हैं, वैल्यूज वो नहीं आ पाएंगी। और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो वो वैल्यूज से ही आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ज्यादा मार्क्स ले आएंगे तो आप सक्सेसफुल ही रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर।
2: यानी आपको लगता है कि जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट का है वो ज्यादा जरूरी है?
4: यस मैम, श्योर मैम।
2: अच्छा, एक मिथ और रियलिटी पर और बात करते हैं कि लव रिलेशनशिप स्टूडेंट्स की पढ़ाई को अफेक्ट करते हैं, ये मिथ या रियलिटी है?
3: नमस्कार, मेरा नाम निवलीन है। अगर मैं ये बताऊं तो ये दोनों साइड हो सकता है, ये एक मिथ भी हो सकती है, रियलिटी भी हो सकती है। कुछ लोगों जिनको बहुत लोनली फील होता है, उनका अगर कोई पार्टनर या रिलेशनशिप मेंटोर है, अगर कोई है उनके साथ में, तो उनके मार्क्स इम्प्रूव हो सकती है। और जैसे कि अगर कुछ बच्चे हैं जो

0: रिलेशनशिप में ज्यादा फोकस्ड होते हैं, उनके मार्क्स गिर भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों हो सकता है, ये एक मिथ भी हो सकती है, ये रियलिटी भी हो सकती है।
1: ओके एक और मिथ एंड रियलिटी का चेक हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे सिक्योर है और बेस्ट ऑप्शन है, ये मिथ है या रियलिटी है?
2: नमस्कार, मेरा नाम महेश है। मैं हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के द्वितीय वर्ष का छात्र। ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट से भी ज्यादा सैलरी देती हैं, जो गवर्नमेंट से भी ज्यादा अच्छी हैं। हमें उनकी तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे पेपर के जरिए भी जा सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है।
3: नमस्कार जी, मेरा नाम रुद्राक्ष शर्मा है। यदि देखा जाए कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सिक्योर है, सिक्योर है, पक्की रहती है, लेकिन यदि आपका पैशन नहीं है तो आप क्यों करेंगे? अब यदि हम रियल लाइफ से उदाहरण उठाएं तो महेंद्र सिंह धोनी जी का कितना अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, कि वो पहले स्टार्टिंग में इंडियन रेलवेज में टिकट चेकर की नौकरी पे उन लगे थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं था, तो उनकी प्रतिभाओं को देख करके रेलवे ने उनको खुद ही आगे क्रिकेट में आगे किया, और उसको आगे देखते हुए वह भारत के लिए आगे वो खेले। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें, यदि आपका पैशन है तो आप उसको फॉलो करिए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी नाम हैं हमारे सामने जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, अपना अपना फ्यूचर सिक्योर किया, और अपने साथ ही बहुत सारे लोगों को एक राह भी दिखाई। हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम तन्वी है।
1: तन्वी, आप कौन से कोर्स में हैं यहाँ पर?
4: BJMC बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन।
1: पैशन फॉलो करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जॉब सिक्योरिटी?
4: हमें पैशन के साथ साथ अपनी जॉब को लेकर चलना चाहिए, जिसमें हमें मजा आए काम करने का, उसमें हम बर्डन के साथ काम ना करें, जिसमें हमें सीखने के लिए एक जिज्ञासा हो कि हमें आगे चल के ये और सीखना है।
1: और अगर मैं कहूँ कि एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट आगे जाकर आप एक जर्नलिस्ट बनेंगी, आपकी आवाज, जैसा कि आपने कहा आपको बोलना पसंद है, और जब आप जर्नलिस्ट बन जाएंगी आप बोलेंगी, उसे पूरी दुनिया सुनेगी, तो आपकी बात सुनकर एक सोशल चेंज आए, ऐसे में आपका क्या प्रयास रहेगा?
4: हम किसी किसी को उसके जेंडर से, उसके बैकग्राउंड से जज कर देते हैं। अगर हमें सोसाइटी में चेंज लाना है, ना वो रूल से आ सकता है ना किसी लॉ से, जब तक हमारी सोच ही नहीं बदलेगी तब तक हम हमारी सोसाइटी में कोई एक फ्रीडम नहीं ला सकते। कई बच्चे अपनी क्रिएटिविटी इसीलिए खो देते हैं कि उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि हम एक जॉब सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कोर्स चूज करें, ना कि अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जॉब के लिए।
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और आपने जरूर आकाशवाणी को सुना होगा।
4: हाँ जी।
1: तो आकाशवाणी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
4: आकाशवाणी में जो भी हमें सुनने को मिलता है वो हमारे एक्सपीरियंस, हमारे करियर, यूथ के लिए अलग ओपिनियन से आकाशवाणी अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं हर। तो मेरे को हमेशा से अपने करियर ऑप्शंस, अपने करियर में और नई चीजें जानने को मिलती है आकाशवाणी के प्रोग्राम।
1: और आज के डिजिटल जमाने में आप रेडियो की रेलेवेंस को आप कैसे देखती हैं?
4: जहाँ पे हमारे टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सिग्नल नहीं आ पाते, वहाँ पे रेडियो अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाता है, और आज तक रेडियो एक इफेक्टिव और फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। रेडियो की न्यूज अभी तक एक भी गलत नहीं गई।
1: हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी थैंक यू।
5: हेलो मैम, मेरा नाम पलक गुप्ता है, पत्रकारिता की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैम मैं कविताएं लिखने का शौक रखती हूँ।
1: क्या बात है, तो सबसे पहले कविताओं से शुरू करते हैं।
5: ठीक है मैम। कई बार हमने देखा है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है, तो ये उम्मीद क्या है और ये उम्मीद लगाई कैसे जाती है? कविता है इस। जब टूट रहा हो अंतर्मन और बिखर रहा हो सब क्षण क्षण, तब बस जिंदा रहने को काफी होती है एक उम्मीद। जब दिन होते संघर्षों के, मिलेगा एक दिन इसका फल, बस इसी बात पर अड़ने को काफी होती है एक उम्मीद। जब कविता कोई लिखी जाती हो, सम्मेलन में पढ़ी जाती हो, श्रोता के दिल को छूने तक काफी होती है एक उम्मीद। जब प्राण छोड़ता हो जीवन और मृत्यु शैया पर सांसे, जब प्राण छोड़ता हो जीवन और मृत्यु शैया पर सांसे हो, कुछ वक्त और तब जीने को काफी होती है एक उम्मीद। जब वक्त बीतता उसके संग, जब वक्त बीतता उसके संग, भर जाते हो जिंदगी में रंग, ऐसा पल साथ बिताने को काफी होती है एक उम्मीद। और जब बिखर जाती है ये आशा, सब टूट टूट कर गिरता है, जब बिखर जाती है ये आशा, सब टूट टूट कर गिरता है, जर्रा जर्रा जुड़ जाने को फिर लग जाती है ये उम्मीद, जर्रा जर्रा जुड़ जाने को फिर लग जाती है ये उम्मीद। बहुत बहुत
1: उम्मीदों से भरी हुई एक बहुत ही प्यारी सी कविता, और जिस तरह की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप उम्मीद से भरी हुई एक लड़की हैं। आपकी सभी उम्मीदें पूरी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: वाकई में सारी उम्मीदें जो है पूरी होनी चाहिए, इन आंखों में सपने भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैर जो है वो पूरी तरह से जमीन पर जुड़े हुए हैं। कई बार ना हैरान हो जाती हूँ जब हमारी सहयोगी इस तरह के रिकॉर्डिंग्स करके लेकर आते हैं और ये सारी बातें जो हैं सुनने को मिलती हैं, तो मुझे यकीन है कि हमारे जो श्रोता हैं वो तो सुनते ही हैं और वो भी सोचते होंगे कि हमारे आगे आने वाला जो कल है, हमारा जो यूथ है, उसकी आउटलुक कितनी अलग है हम लोगों से, कितना ठहराव है उनमें और कितने ग्राउंडेड हैं वो रियलिटी के साथ में, वाकई में। और मिथ्स तो बहुत से होते हैं जिंदगी में, लेकिन रियलिटी के साथ जुड़े रहते हैं और आंखों में सपने जो हैं उनको सही तरीके से और किस तरह से उन्हें रियल बनाना है, किस तरह से उन्हें मैनिफेस्ट करना है, ये सब चीज़ें जो है ना हमारे यूथ को आजकल बहुत अच्छी तरह से पता है और ये सारी बातें हम जान पा रहे हैं, हमारे यूथ के साथ में हम जुड़ पा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जो आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा हमसे बात करवा रही हैं श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स की। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। आप सुन

0: रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो।
1: वन जीरो टू पॉइंट सिक्स आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम कैंपस कॉलिंग। अल्फाजन जी, अल्फाजन जो कि हमारे यूथ से जुड़ा हुआ वो घंटा है जिसे आप शाम को 4 से 5 बजे के बीच में सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। बुधवार का दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं खास तौर पर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में जाकर हम करते हैं मुलाकात, करते हैं वहाँ के टीचर से, वहाँ के प्रिंसिपल से और वहाँ के स्टूडेंट से बात। और वो सारी की सारी वाइब्स, वो सारी की सारी वाइब्रेंसी जो होती है ना इन जगहों कि वो सब समेट कर लाते हैं हम आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार को शाम को 4 से 5 बजे के बीच, जैसा कि अभी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, वहां पे उन्होंने की बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुलाकात एंड वहां के टीचर्स के पास भी था बहुत कुछ हमें बताने के लिए। आइए सुनते हैं।
2: फचिन कैंपस कॉलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ऋचा और आज मैं आपको लेकर आई हूँ श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में। इस कॉलेज की एक टीचर डॉक्टर अवनीत कौर भाटिया जी मेरे साथ हैं जो कि यहाँ पर पत्रकारिता पढ़ाती हैं। और आइए इनसे हम जानते हैं कि एक टीचर की लाइफ में सबसे खुशी का क्षण, सबसे सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट कौन सा होता है।
3: एक टीचर के रूप में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जब तब मिलता है जब मेरी क्लास की स्ट्रेंथ पूरी हो, सबसे बड़ी बात है। और स्ट्रेंथ एक टीचर की क्लास में तभी पूरी होती है जब वो एक टीचर एक परिपूर्ण रूप से बच्चों को पढ़ाए, पूरी डेडिकेशन के साथ बच्चों को समझाए। और सबसे बड़ी बात सिर्फ समझाए नहीं, बच्चों को जब समझ आएगी, बच्चे आपके साथ कनेक्ट करेंगे और तभी बच्चे आपके क्लास में आएंगे और तभी आपका असाइनमेंट भी करेंगे, आपका प्रोजेक्ट भी करेंगे। मुझे लगता है एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग जो है एक टीचर और एक स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है।
2: मैम, यहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं?
3: यहाँ पे मैं विकास पत्रकारिता पढ़ाती हूँ, डिजिटल संचार पढ़ाती हूँ और सोशल मीडिया पढ़ाती हूँ।
2: मैम, जैसे कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाती हैं मैम, उसकी आप एक थ्योरी क्लासेस देती हैं मैम, आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में एक ऐसी कौन सी स्किल है जो चाहे उनके बच्चों का कोर्स कोई भी हो लेकिन वो पर्टिकुलर स्किल बच्चों के लिए सीखना बहुत जरूरी है?
3: कोर्स कोई भी हो लेकिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट लेवल जो है आज के दौर पर आना बहुत जरूरी है। ये लोग जेंजीज हैं, ये इम्पेशेंट रहते हैं, इनको बहुत कम टाइम पे बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर मैं 3 शब्दों में बोलूं कि नेम, फेम और पैसा, इनको बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो उसको उन तीनों चीजों को संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए इनको सिखाना, इनको किस तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट इनकी करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना कि कल जाकर ये कहीं भी बाहर इंटरव्यू दें तो किस तरीके से, किस सलीके से, किस हाव भाव से ये लोग वहां पे जाके प्रेजेंट हों, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना और डेडिकेशन और जो ये पढ़ रहे हैं उसको सही रूप से, सही मायने में उसके साथ आत्मसम्मान के साथ बाहर जाना और अपना नाम, अपने कॉलेज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, यही सबसे महत्वपूर्ण है।
2: मैं आपसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए ना, जो ना केवल आपके स्टूडेंट्स तक सीमित रहेगी बल्कि आज उसे पूरा भारतवर्ष सुनेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, SDND खालसा कॉलेज करोलबाग में आने के लिए शुक्रिया।
2: गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की एक और टीचर मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं।
4: नमस्कार रिचा, धन्यवाद। मेरा नाम है प्रोफेसर दीपमाला और मैं श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के हिंदी विभाग में कार्यरत।
2: क्या लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन के चैलेंजेस क्या क्या है?
4: मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो तो ये है कि बच्चे क्लास में आए, क्योंकि आज की डेट में बच्चे जो है ना वो क्लास में आकर बैठना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपने आप पढ़ लेंगे, हम गूगल कर लेंगे, हम ChatGPT कर लेंगे।
2: मैम, आप कितने समय से टीचिंग कर रही हैं?
4: मैं यहाँ पर 20 साल मुझे हो जाएंगे इस साल।
2: और मैम, जो 20 साल पहले जो स्टूडेंट्स का एक क्राउड होगा वो आज के क्राउड से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मैम वो मिलेनियल्स का क्राउड था, ये जेंजीज का क्राउड है, और इन दोनों क्राउड्स में आप क्या डिफरेंस फील करती हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर?
4: उस समय के बच्चे इतना मतलब हमारे आने से पहले ही क्लास में बैठे हुए।
2: मैम, जो हमारे लिसनर्स इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जो कहते हैं कि हिंदी पढ़ने से होता क्या है, एक टीचर के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी उन्हें? और
4: हम देखते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमें किस बात की शर्म, ये तो हमारी मातृभाषा है और उसी के बल पर जैसे ही हमारी भाषा मिटी हमारा देश मिट जाए, क्योंकि इसका तो इतिहास है कि जिस जिस देश की भाषा खत्म हुई वो देश ही नक्शे में से खत्म हो गया।
2: मैम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जितने भी जो जेंजीज जो हमारा प्रोग्राम सुनेंगे इसे और जो सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना है स्कूल, बट एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज इज वेरी मच कूल देन इंग्लिश।
4: हमारे देश की बात ही अलग है, हमारी संस्कृति की बात ही अलग है।
2: बिल्कुल,
1: वाकई में। और सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है बल्कि वैल्यूज जो होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ का। और ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें जो हम यहाँ पे करते हैं ना, अक्सर मुझे लगता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स भी कभी कभी एक दूसरे की बातें सुन के ना बड़े हैरान हो जाते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है। यहाँ पे अपनी बात कहकर जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं कभी कभी वो बातें भी कह जाते हैं जो वो शायद अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन में जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ में अपनी क्लासेस में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, वैल्यू एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए उसे भी हमारे एकेडमिक्स का हिस्सा बनाया गया है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग, और अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में हमारे सहयोगी ऋचा वर्मा आज पहुंची श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, वहां पे उन्होंने की बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत। टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने सुन लिया जी, जेंजी के बारे में उनके अपने जो ख्याल है किस कदर जो है चैलेंजिंग हो चुका है प्रोफेशन, उसी तरह से इन नए नए चैलेंजेस से दो चार होना मुझे लगता है कि जितना टीचर्स के लिए मुश्किल है शायद हमारे स्टूडेंट्स के उतना ना हो, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में क्या चलता है आइए जानते हैं।
2: आज मैं आई हूँ श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज करोल बाग में, और कॉलेज के बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
5: नमस्कार, मेरा नाम रुद्राक्ष शर्मा है, मैं श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज से हिंदी पत्रकारिता का छात्र।
2: अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको आपकी लाइफ में एक टाइटल देना हो तो वो क्या होगा?
5: लेट सही पर समझ आ गया।
2: और क्या समझ आया आपको?
5: समय का सदुपयोग। शुरू से ही समय को कल पे टालता रहा हूँ, उस कारण मेरे जिंदगी से बहुत सारी चीजें समय से पहले ही चली गई। बाद में मैंने उनकी पहले तब कदर नहीं करी, लेकिन जब वह चली गई तो उनके बाद उनकी कदर समझ में।
2: अच्छा रुद्राक्ष, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फेलियर से गुजरते हैं, और उन फेलियर से आपने क्या सीखा है?
5: यही कि कल पे चीजें ना टालें, कल पे चीजें टालते रहेंगे तो फिर ऐसी एक डेडलाइन आएगी आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे।
2: चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली है वो आप पे प्राउड फील करे और उन्हें बहुत ही अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।
5: धन्यवाद।
2: क्या नाम है आपका?
6: नमस्कार मैम, मेरा नाम जिज्ञासा है, मैं श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय से द्वितीय वर्ष की पत्रकारिता की छात्रा हूँ।
2: आप पत्रकारिता कर रही हैं, तो आगे जाके जो आपने पैशन चुना है ये आपकी फैमिली ने आपके लिए चूज किया या आपका खुद का डिसीजन था?
6: नहीं मैम, ये मेरी फैमिली ने चूज नहीं किया, ये मेरा खुद का डिसीजन था। जैसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में भी जब डेली ऐसे मॉर्निंग प्रेयर्स होते थे तो स्टेज पे जाती थी, और मेरे को माइक से बहुत ज्यादा प्यार है, और पत्रकारिता से मुझे कब प्यार हो गया ये मुझे भी पता नहीं चला।
2: यानी आप अपना पैशन फॉलो कर रही हैं, और मैं आपसे अगर ये कहूँ कि पैशन फॉलो करना जरूरी है या जॉब सिक्योरिटी जरूरी है, तो इसमें आप क्या कहेंगी?
6: मैम, सबसे जरूरी जो है वो हमें हमारा पैशन फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पैशन फॉलो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमें जॉब दिलाएगा। क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे से जैसे कि जो मेरा पैशन है, मेरे को जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं मेरा पैशन ही मेरा जॉब बनेगा। तो हमें जॉब सिक्योरिटी की तो टेंशन लेनी नहीं है, अपने पैशन पे ध्यान दीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, आपको खुद ही जॉब मिलेगा।
2: बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप जिज्ञासा। जिज्ञासा, जब हम जर्नलिज्म में आते हैं तो एक जो सोच जो हमारे अंदर होती है वो होती है समाज को बदलने की, और सभी जर्नलिस्ट एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि समाज की एक ऐसी चीज जिसे आप अपने पर्सपेक्टिव से बदलना चाहें तो वो क्या होगी?
6: मैम, जो जर्नलिज्म है यानी कि जो पत्रकारिता है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और ये हम सभी का अधिकार होता है कि हम सब उन लोगों की आवाज बने जो अपनी आवाज को रख नहीं पाते। बहुत सारे लोग होते हैं, वो चाहते तो बहुत कुछ है कि ये बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन उनमें एक छोटी सी झिझक होती है जिसकी वजह से वो अपनी आवाज को रख नहीं पाते। तो हम उन लोगों की आवाज बनना चाहेंगे जो भी, सब लोगों की अलग अलग वो है, जैसे कि कुछ चाहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, कुछ चाहते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, तो ऐसे लोगों की जो भी चाहते हैं हम उनकी आवाज बने और गवर्नमेंट के पास।
2: आपने कहा आपको माइक से बहुत प्यार है, चलिए एक मौका देते हैं आपको।
7: हाय एवरीवन, मैं हूँ पलक गुप्ता और आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर अल्फा जन कैंपस कॉलिंग, और आज हमारे साथ कॉल पर जुड़ गए हैं हमारे एक लिसनर। चलिए जानते हैं ये आज हमसे क्या कहना चाह रहे हैं।
6: हाय, मेरा नाम है जिज्ञासा, और थैंक यू कि आपने मेरा कॉल पिकअप किया।
7: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जिज्ञासा जी। बताइए आज आपकी क्या फरमाइश है?
6: मुझे एक गाना सुनना है।
7: जी बताइए, बिल्कुल हम सुनाएंगे आपका सजेस्ट किया हुआ गाना।
6: ये गाना लगाइए कि अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए।
7: तो चलिए जिज्ञासा की फरमाइश पर अब हम ले चलते हैं उनको उसी मंजिल पर जिस पर वो शर्मा गई।
2: ओ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासा जी, आपके जरिए हम इतना प्यारा गाना सुन पाए। तो चलिए अब जुड़ते हैं अपने अगले लिसनर के साथ और जानते हैं उनसे उनकी फरमाइश क्या है।
1: मेरा नाम लवलीन है और मैं आपके चैनल पे आने के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, बहुत कॉल लगाए पर आज जाके कॉल मिला है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया लवलीन जी, बताइए आज आप क्या सुनना चाहती हैं।
1: मैं ये गाना सुनना चाहूंगी, तू ही यार मेरा, जो मैं अपनी दोस्त तन्वी को डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: तो चलिए दोस्ती की दुनिया में अब कदम रखते हैं और सुनते हैं तू ही यार मेरा।

0: भर के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना।
1: तो फिलहाल हमारी ओर से इतना ही। आप सुन रहे थे अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। उम्मीद करते हैं आपको हमारे साथ मजा आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें इस नंबर पर दे सकते हैं 9868107070 पर। धन्यवाद।
2: जब तक जगो
0: सुनते रहो, पूरी मस्ती है,
2: भूले से मिस न करो, रेडियो ट्यून करो, टेंशन दूर करो।

0: मैम, ये सिग्नेचर ट्यून बहुत ही अच्छी है, बहुत मेलोडिक साउंड करती है ये सिग्नेचर ट्यून। बिल्कुल आपने सही कहा, और आकाशवाणी की जो पहचान है वो इसकी सिग्नेचर ट्यून ही है। पर आप सभी अगर आकाशवाणी की ट्यून जो है वो एक बार अपने तरीके से कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर आप सभी को एक मौका दिया जाता है कि आप भी अपना इसमें योगदान दे सकते हैं, और उसकी अधिक जानकारी के लिए जा सकते हैं newsonair.com पर। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी और आपको नेशनल ट्यून कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का एक मौका भी मिलेगा।
1: वाकई में ऋचा, आपने बिल्कुल सही कहा, और आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में हमारा जो यूथ है उसका और भी ज़्यादा, जो मैं कहना चाहूँगी कि उसका और भी ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिशन्स आप सभी के लिए हैं। आकाशवाणी का भी स्वरूप बदला है, हमारे अकेडमिक्स का भी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, कैंपसेस का भी स्वरूप बदला है। लगातार इनोवेट हो रहे हैं, लगातार रेनोवेट हो रही हैं, आगे आने वाले कल को सहेजने के लिए, समेटने के लिए, बदलने के लिए। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन, और आज हम आपको सैर करवा रहे हैं श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की। और फिलहाल अभी जो ये जोश और खरोश से भरी आवाजें आपने सुनी, ऑब्वियसली इन सभी को मैं डेडिकेट करने जा रही हूं हमारा अगला गाना। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन आता है आपके पास सीधे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और वहां के प्रिंसिपल से बात, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: मेरा नाम है ऋचा और अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के पहले गुरु थे, उन्होंने कहा किर्त करना, नाम जपना, वंद जपना, और ये कॉलेज की भी जो विचारधारा है वो इन्हीं पर बेस्ड है। और आज किस तरह न्यू एजुकेशन सिस्टम में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि जानते हैं हम कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर बलजीत सिंह जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
3: मैम आपने बात की किर्त करना, नाम जपना, वंद जपना, ये हम सिखों के धर्म ग्रंथ जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, ये उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आधार है। कृत करना मतलब एक्शन, आपका एक्शन जरूर होना चाहिए। नाम जपना टू रिमेम्बर द गॉड और टू ड्वेल अपॉन द गॉड, ईश्वर का विचार करना। और वर्ण छकना मतलब जो आपने सब कुछ जो इकट्ठा किया है, जो आपने अर्न किया है, वो आपका अकेले का नहीं है, वो सोसाइटी की वजह से ही आप अर्न कर पाए हो। तो ये आपका एक फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आपको आपको उसे दूसरों के साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करके जो है खाना है। हमारे गुरुवंश साहब में एक ये शब्द भी होता है, आओ पाई मिलके वंड छकिए ते खाइए। वंड छकिए मतलब जो हमें मिला है हम उसको वंड के खाएं, हम उसको बांट के खाएं, वो किसी एक ही हाथों में वो इकट्ठा ना होता जाए।
2: सर आज के एजुकेशन सिस्टम में ये तीनों बातें आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को सीखना क्यों जरूरी है?
3: एनईपी 2020 और 2022 के बीच में ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे अवसर है, चुनौतियां हैं जिनका सामना करके हम गुरुग्रंथ साहब में लिखे हुए इन सारे के सारे जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे सिद्धांत है, हम उसकी पूर्ति कर सकते।
2: सर इस कॉलेज की स्थापना 1973 में एक गुरु तेग बहादुर खालसा इवनिंग कॉलेज के रूप में हुई थी और लेटर ऑन ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना और उसके बाद 2005 से ये कॉलेज एक फुल फ्लेज कॉलेज है। सर अगर मैं आपसे कहूं कि इस कॉलेज को आप 5 सालों में कहां देखते हैं या क्या चेंजेस हम इसमें देखेंगे तो आपकी क्या राय होगी?
3: 1973 में जब ये कॉलेज इस बिल्डिंग में, इस भवन में खोला गया, तो ये जो बिल्डिंग है ये स्कूल की बिल्डिंग है। तो उसमें पहले जो आज आप जिसको श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज मॉरिस नगर के नाम से जानते हैं, वो कॉलेज पहले यहाँ था। पार्टीशन के बाद जिस तरह से सिख परिवार और जिस प्रकार से पंजाबी हिंदू परिवार पाकिस्तान से शिफ्ट होकर जब दिल्ली में धीरे धीरे विस्थापित होकर जब यहाँ पर धीरे धीरे अपना बसाव कर रहे थे, तो उस समय ये जरूर महसूस की गई कि उनका जो नौजवान जो वर्ग है, जो नवयुवक वर्ग है, वो दिन में तो बेचारा काम करेगा तो वो शिक्षक की प्राप्ति कब करेगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जो कि पहले खालसा मॉर्निंग के नाम से जाना जाता था, जब वो शिफ्ट हुआ वो तो बन गया मॉर्निंग, वो तो सुबह के समय का कॉलेज हो गया और मेन कैंपस में एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो ये जो यहाँ पर जो कॉलेज हुआ करता था, तो उसी गुरु साहब के नाम से, नौ हमारे नौवे गुरु तेग बहादुर जी के नाम से इस कॉलेज को फिर उसकी जो इवनिंग ब्रांच है वो खोली गई। तो 1973 से लेकर 2005 तक तो ये जो कॉलेज था ये वही इवनिंग टाइम पे लगता रहा, 6 से 9 हुआ करता था। लेकिन 2005 में इस कॉलेज को एक मौका मिला जब UGC ने इस कॉलेज के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को मॉर्निंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं या डे कॉलेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो अपना एक प्रस्ताव यहाँ पर भेजे। और आने वाले 5 सालों में मैं देखता हूँ कि जिस तरह से एनईपी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो साइंस का क्षेत्र है, चाहे वो सोशल स्टडीज का क्षेत्र है, चाहे वो लैंग्वेजेस का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। हमारे अपने कॉलेज में इन अलग अलग परिवर्तनों को देखते हुए हमने 50 सोसाइटियां, 50 सभाएं बनाई हैं, जो कि अलग अलग अलग तरह से हर एक तरह के जो टैलेंट है उसको टैप करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले 5 सालों में आपको ये लगेगा कि ये कॉलेज अपने नई ऊंचाइयों को छुए।
2: क्या बात है सर, आपका कॉलेज जरूर बहुत ही ऊंचाइयों को छुए। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे साथ ही, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आज के जमाने में केवल एकेडमिक एजुकेशन ही काफी नहीं है, अगर सक्सेसफुल होना है तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चे कोई नई स्किल सीखे या उनका जो प्लेसमेंट है कॉलेज का, क्योंकि प्लेसमेंट ही डिसाइड करता है कि कॉलेज किस तरीके का है। तो सर इस कॉलेज के जो प्लेसमेंट है या एंटरप्रेन्योरशिप है।

0: लेकर क्या विचारधारा है, क्या कॉलेज सोचता है?
1: तो हमारे यहाँ पर एक प्लेसमेंट ड्राइव है, वो ना केवल हमारे कॉलेज में बल्कि जो वो डीयू से जो एफिलिएटेड है हर एक कॉलेज है उसमें एक प्लेसमेंट ड्राइव है। तो यहाँ पर तकरीबन 50 या 60 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर आती हैं, और इसी कारण हमारे कॉलेज का जो प्लेसमेंट ड्राइव का जो आंकड़ा है, जो उसका जो डाटा है, वो पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा हुआ।
0: सर आपको पता ही है कि अब धीरे धीरे करके 12th के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, अब बहुत सारे बच्चे CUET की तैयारी कर रहे होंगे और कॉलेज आने के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा?
1: CUET का फॉर्म भरते हुए वो अपने विकल्प, वो अपने ऑप्शन अच्छी तरह से जांच लें, और ऐसे किसी भी कॉलम के ऊपर वो उसको फिल ना करें जिनके बारे में उनको नॉलेज ना हो। क्योंकि अगर एक बार उनका भरा हुआ फॉर्म DU की साइट पे अपलोड हो गया तो उसमें किसी भी तरह का चेंज करने का मौका उनको दोबारा नहीं मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, मैं बार बार उनको कहूंगा कि वो कॉलेज के पीछे ना भागे, बल्कि वो उस कोर्स के जो उनका इच्छित कोर्स है, जिस कोर्स के लिए उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, जिस कोर्स के लिए उनके माँ बाप ने उनको तैयार किया है, वो कोर्स उनको जिस कॉलेज में भी मिले वो उस कॉलेज में जाकर, अगर उस कॉलेज में उनको एडमिशन जो है बड़े आसानी से मिलता हो, या पहली लिस्ट में ना आकर दूसरी लिस्ट में भी उनको नाम आता हो, तो वो कम से कम उसके लिए ट्राई जरूर करें।
0: सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारी इस कॉलेज के बारे में तो मिली ही, लेकिन आपका संदेश जितने भी मेरे लिसनर्स हैं उनके बहुत काम आएगा। सर हमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: बहुत ही संपन्न इतिहास है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का, और हर बार एक नया इतिहास, हर बार एक नया गलियारा, और हर बार एक नई यात्रा लेकर जुड़ते हैं हम आपके साथ। हमारे इस प्रोग्राम में नाम है इसका एल्फेजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। आज हमने आपको शेयर करवाई श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा जो है उन्होंने की वहां के स्टूडेंट से, फैकल्टी से बातचीत और प्रिंसिपल से बातचीत। और इसी के साथ बस वक्त नहीं बचा है मेरे पास आगे बातचीत करने का, इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप सुनते 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स से मुकाबला करेगी। वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता

गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आकाशवाणी रेनबो. और आकाशवाणी रेनबो के साथ हमारा हर पल हर मोमेंट यूं ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है. और हमारी ब्यूटीफुल सी सिटी दिल्ली में क्या क्या हो रहा है वो लेकर हाजिर हूं मैं ज्योति आज के सैटेलाइट शो में. 5:08 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो.

वैसे हमारी दिल्ली में ना दिल वाले बसते हैं भाई, बड़ी कमाल का जिगरा है उनका। इतनी गर्मी पड़ रही है मगर फिर भी दिल्ली वाले अपने ज़रूरी काम के लिए तो ऑफकोर्स निकलते ही हैं, वैसे भी निकल जाते हैं। और पारा जो है वो 45 डिग्री के पार हो चुका है, मगर एक अच्छी सी खबर है जो बताने वाली हूँ, वो ये है कि 28 से 31 मई के बीच में बारिश के आसार हैं। ये सुन के ना सुकून सा मिल गया है ना, मिल गया ना कि बस बारिश आ जाएगी। इतनी तपती गर्मी हो रही है, इतनी लू पड़ रही है, और इसी के बीच हमारी ट्रैफिक पुलिस के लिए बहुत खास इंतजाम किए गए हैं जो आपको शायद दिल्ली में घूमते हुए कहीं ना कहीं दिख भी गए होंगे। उसके बारे में बात करेंगे, हमारी सिटी की बात करेंगे सिटी लाइट्स में, क्योंकि दिल्ली की सारी हलचल लेकर मैं हाजिर हूँ ज्योति आपके साथ, और सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। 5:13 एंजॉय दिस ट्रैक सिटी लाइट्स में।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एच 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओ, आज बात होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर के बारे में। वर्ष 1969 में आकाशवाणी द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति की स्मृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत की। इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का पहला व्याख्यान प्रसिद्ध साहित्यकार और प्रकांड विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का गहन विश्लेषण करना और राष्ट्र निर्माण पर विचार विमर्श करना है। हर वर्ष नवंबर के दूसरे पखवाड़े में इसका आयोजन किया जाता है और इसका प्रसारण 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर किया जाता है। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वैसे इट्स नॉट ऑलवेज सनम, इट्स समर्स ऑल्सो. समर्स की वजह से, गर्मियों की वजह से भी नींद नहीं आती है. वेल बहुत खूबसूरत सा गाना हमने इन्जॉय किया, मगर समर्स की वजह से बहुत सारी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस वजह से भी नींद नहीं आती है. और जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले 3 दिन यानी कि आज 27 हो चुकी है, 28, 29, 30, 31 के बीच बारिश की संभावना है. तो ये सुन के दिल तो हमारा खुश हो गया. और अभी फ़िलहाल अगर तापमान की बात करूँ तो भाई 44 डिग्री 45 डिग्री के पार जा रहा है, मगर जब बारिश हो जाएगी ना तो मैक्सिमम जो है वो 38 डिग्री तक पहुँच जाएगा. मगर आपको पता है कि हमारी दिल्ली की सड़कों पर जितने ये ट्रैफिक पुलिस हैं, ये कितनी मुश्किल से अपनी ड्यूटी करते हैं. इतनी चिलचिलाती गर्मी है और 8 घंटे की ड्यूटी करने वाले जो ये ट्रैफिक कर्मी हैं, उनको राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने उनको एसी हेलमेट्स और पोर्टेबल पंखा दिया है. कितनी अच्छी बात है ना ये, और जिससे कि वो धूप का सामना कर सकेंगे और अपने आप को सेफ रख सकेंगे. और उसके साथ साथ रिफ्रेशमेंट वैन भी चलाई जा रही है. और अगर आपने दिल्ली के कुछ एरियाज़ में अगर आपने देखी होगी, ये वैन जो है वो 3 मूर्ति, संसद मार्ग और कर्तव्य पथ पर घूमती नज़र आएगी. और अगर किसी वजह से किसी एरिया में किसी को ज़रूरत है और वहाँ पर ये नहीं है, तो कॉल मिलने पर भी अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक कर्मियों को ये वैन जो है वो राहत दे रही है. और इसमें ठंडा पानी मिल रहा है, ORS मिल रहा है, नींबू पानी भी उसमें है. तो जो ये हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं जो इतनी गर्मी में 8 घंटे की ड्यूटी वहाँ पर तपती सड़कों पर चिलचिलाती धूप में दे रहे हैं, उनको बहुत राहत मिल रही है. तो ऐसा हम और आप भी कर सकते हैं. हमारे घर के आसपास जितने पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए हम पानी रख सकते हैं. इतनी गर्मी में एटलीस्ट हम ये तो कर ही सकते हैं और हमें करना चाहिए. मैं भी अपने घर में हमेशा पानी के पॉट्स फिल करके रखती हूँ. गिलहरी आती है और पिजन्स आते हैं और कभी कभी कौवे भी आ जाते हैं, और जो बाहर स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो भी पानी पीने आते हैं. तो इतनी गर्मी में उनको कितनी राहत मिलती है उनके लिए जब ये सुविधा होती है. तो ऐसे ही इन ट्रैफिक कर्मियों के लिए भी ये सुविधा शुरू की गई है. अभी ट्रायल बेसिस पर है और उसके बाद इसका जो दायरा है वो और बढ़ाया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने यह भी बताया कि ये जो एसी हेलमेट हैं ये सिर को काफ़ी ठंडा रखते हैं, उससे उन्हें लू नहीं लगती है, डिहाइड्रेशन से बचाव होता है, क्योंकि इस हेलमेट के अंदर अंदर के हिस्से में छोटे छोटे कूलिंग फैंस लगाए गए हैं, और जिससे कि उसमें खास वेंट भी दिए गए हैं हेलमेट में, जो ठंडी हवा को सिर और चेहरे के ऊपर समान रूप से जो है वो हवा जाती है और उनको काफ़ी राहत मिलती है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।

0: तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

Yes, this is Akashvani Rainbow. आप सुन रहे हैं City Lights with me, Jyoti. Keep listening and enjoying beautiful songs जो आपके लिए आ रहे हैं. और एक और बहुत अच्छी सी काम की खबर है मेरे पास आपके लिए. आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं? ओके. आपके घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आप यूज़ भी नहीं करते, मतलब 6 महीने 1 साल से ऊपर हो गए, आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि आपके पास वो कपड़े हैं, है ना? तो अगर ऐसे कुछ कपड़े आपके पास हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं और मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी काम की खबर है जिससे हम अपने एनवायरमेंट की बहुत ज़्यादा सुरक्षा कर सकते हैं. तो बताऊँगी आपको इस गाने के बाद. इंजॉय कीजिए खूबसूरत सा गाना ज्योति के साथ. सिटी लाइट सुन रहे हैं आप.

ला ला ला ला सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं ज्योति के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर, और आपकी दिल्ली शहर में, दिल्ली के आसपास, दिल्ली मेट्रो में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो सारे अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। टाइम मिला लेते हैं, 5:43 हो गए हैं, धीरे धीरे 44 भी हो जाएंगे, समय आगे बढ़ रहा है। और जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली थी, बहुत ही ज़रूरी बात, वो ये कि हमारे घरों में अक्सर नहीं, आई एम श्योर, बहुत सारे ऐसे सबकी अलमारियों में कपड़े पड़े हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो यूं ही सजे रहते हैं। या तो हम सोचते हैं कि जब हम इनमें फिट आ जाएंगे तो हम इन्हें पहनेंगे, मतलब फिट की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, या तो आप उसमें, मतलब वो आपके लिए छोटे हैं या वो आपको ढीले हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि इतने पैसे लगाए हैं इन्हें हम क्यों थ्रो करें, इनको सजाए रखते हैं और फिर देखते हैं आगे कब पहनना होगा। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, एंड एक मंत्रा है इसका कि अगर कोई भी कपड़ा 6 महीने 7-8 महीने से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं किया है तो यकीन मानिए वो आपके काम का नहीं है। सो हम एक अच्छा सा काम कर सकते हैं कि हम उन्हें डोनेट कर सकते हैं। तो इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर जो है वो बॉक्सेस लगाए जाएंगे, कलेक्शन बॉक्सेस लगाए जाएंगे, और वो कौन कौन से मेट्रो स्टेशन हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारी पूरी दिल्ली मेट्रो से तो ट्रैवल करती ही है, वो तो लाइफ लाइन है। तो वो स्टेशंस जो हैं वो हैं शाद्रा, मोहन एस्टेट, रोहिणी वेस्ट, लाजपत नगर, मालवीय नगर, मयूर विहार फेज 1, हौसखास, पंजाबी बाग वेस्ट, द्वारका, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। तो इन 10 स्टेशंस पर कलेक्शन बॉक्सेस होंगे जहां पर आप अपने जो अनयूज्ड क्लोथ्स हैं जिन्हें आप वेस्ट समझते हैं या फिर आपको लगता है कि हमारे काम नहीं आएंगे,

तो आप इन बॉक्सेस में उन्हें दे सकते हैं, वहाँ पे इनकी रिसाइकलिंग की जाएगी और ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि आपका इस पे विश्वास इस अभियान पे बना रहे और आपको पता हो कि आपने जो यहाँ पे डोनेट किए हैं कपड़े वो सही ढंग से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्हें काफ़ी सारी अपसाइकलिंग की जाएगी, जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें उनको बदला जाएगा, जैसे पुराने कपड़ों से बैग बनेंगे, दरियाँ बनेंगी और कुछ और ख़ास प्रोडक्ट्स बनेंगे, और जो बिल्कुल काम के नहीं हैं उनको बिल्कुल ही रिसाइकल कर दिया जाएगा, वेस्ट में डाल दिया जाएगा, तो उनसे भी कुछ ना कुछ बनेगा, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। मगर हाँ, हमारे घरों में पड़े रहेंगे तो डेफिनेटली वो कपड़े किसी काम के नहीं हैं, तो ये जो कपड़े हैं वो NGOs को जाएंगे और बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर इनको दिया जाएगा, अलग अलग श्रेणियों में इन्हें बांटा जाएगा और फिर इनकी रिसाइकलिंग होगी और फिर ये फिर से खूबसूरत होके सुंदर से बनके हमारे बीच में होंगे, तो अलग उपयोग के साथ, अलग शेप एंड कलर एंड साइजेस के साथ। तो घर में अगर कपड़े हैं तो इन मेट्रो स्टेशन पर जरूर डोनेशन बॉक्स में, कलेक्शन बॉक्सेस में जरूर दीजिए।

नीले नीले अंबर पर चांद पता कितने बजे आएगा, 7:11 पर, क्योंकि तब है सनसेट का टाइम आज दिल्ली में. तो जब सूरज देवता जाएंगे तब चंदा मामा आएंगे और तब नीले नीले गगन के नीचे आपको ठंडी छांव मिलेगी. और शाम के टाइम थोड़ा जब मौसम ठीक होगा तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं इस नीले नीले अंबर के नीचे, वो मैं आपको बता देती हूँ. तो दिल्ली में काफ़ी सारी एग्जीबिशंस चल रही हैं जो हमारे ना मतलब सोच बदल देती हैं, जो हमारी इंसाइट्स हमें ऐसी मिलती हैं, वो तभी मिलती हैं जब आप उन्हें जाके देखेंगे. और जो भी उसको देखेगा ना, हर कोई उससे एक अलग ही स्टोरी लेकर आएगा. मतलब हर कोई अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें से जो है वो हम इनसाइट लेते हैं. तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आर्ट एग्जीबिशन चल रही है गजलोक, और ये IICNXC में चल रही है लोधी एस्टेट में. इसके टाइमिंग्स हैं 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक. तो अभी जैसे कि टाइम हुआ है 5:51 एंड इफ़ यू आर वे बैक फ्रॉम योर ऑफिस, घर जा रहे हैं, या फिर आप घर पर ही हैं और कहीं निकलना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये एग्जीबिशन आप देख सकते हैं. और ये एग्जीबिशन क्यों खास है, क्योंकि इसमें एशिया की जो हाथी है ना, उनके नाम पर ये एग्जीबिशन है. इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इस एग्जीबिशन में उनकी जो सांस्कृतिक कल्चर है उनका और जो उनकी परिस्थिति है उसकी अहमियत को समझा रहे हैं इस एग्जीबिशन में. सो दिस एग्जीबिशन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एलिफेंट्स, उनका क्या कल्चर है और उनके बारे में हर चीज़ आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी. तभी इसका नाम है गजलोक. टाइमिंग्स बता देती हूँ फिर से, 11 से लेकर 7 बजे तक है. तो आप ज़रूर इसमें जा सकते हैं इफ़ यू लव एनिमल्स, और हाथी तो होता भी क्यूट है. एक और एग्जीबिशन है जो इंडिया हैबिटेट सेंटर में चल रही है, और इसमें कन्वेंशन सेंटर में आपको जाना होगा, और इसकी भी टाइमिंग्स 11 से लेकर 7 बजे तक है. और इसमें कोलकाता के आर्टिस्ट हैं जिबन कृष्णा ठाकुर, उनकी एग्जीबिशन है जो कि जिंदगी के कई आयाम कई रंगों में दिखा रहे हैं और आपको वहाँ नज़र भी आएंगे. सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ, सबकी लाइफ में अलग अलग शेड्स आते हैं, दूसरों के में भी आते हैं. सो दिस आर्टिस्ट इज शोइंग अलग अलग आयाम, कई सारे आयाम जो हैं जिंदगी के, वो आपको यहाँ नज़र आएंगे. सो आई थिंक इट्स अगेन अ वर्थ वॉचिंग एग्जीबिशन, इसमें भी आप जा सकते हैं. और इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही उसी जगह पर एक डिज़ाइन एग्जीबिशन भी चल रही है विजुअल आर्ट गैलरी में. इसकी भी टाइमिंग सेम है 11 से लेकर 7 बजे तक. तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं. और यहाँ पर आपको जो वर्ल्ड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जीबिशन के साथ मार्केट में जो नए डिज़ाइन ट्रेंड है ना, वो भी आपको यहाँ उनकी झलक देखने को मिलेगी. सो आई थिंक वर्थ वॉचिंग, वर्थ गोइंग. तो आप जा सकते हैं, टाइमिंग 7 बजे तक है.

सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं और मेरे जाने का वक्त आ चुका है क्योंकि अब भारती होंगी आपके साथ लेकर बेसज मसाला मिक्स। और उससे जाने से पहले एक छोटी सी खबर और बता देती हूँ कि जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है KVIC, ये भी अब बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से रिवैम्प कर रहा है। जून या जुलाई तक आपको खादी ऐप भी मिल जाएगा और खादी जेन जी के बीच में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और उनको और अट्रैक्ट करने के लिए नए नए डिज़ाइन के कपड़े आ रहे हैं, इसमें खादी डेनिम भी शामिल है। और बहुत जल्द KVIC अपने कपड़े और उत्पाद का लाभ सेना को भी देना चाहती है, हमारी सेना को, और इसमें उनकी ड्रेस या यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो बहुत जल्दी KVIC की जो वेबसाइट है वो रिवैम्प की जा रही है और नया ऐप भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है, खादी हमारी सबकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए। और एक और बात बता दूँ आपको कि बस मेरे जाने के बाद, जैसे मैंने बताया कि भारती होंगी आपके साथ जो कभी नहीं हारती हैं, आई लाइक व्हाट शी सेज, एंड उसके अलावा आपके साथ 7:05 से होंगे देवर्षी लेकर वेस्टर्न म्यूजिक का शो, 6-8 बजे फिर से भारती आपके साथ होंगी लेकर म्यूजिक मस्ती, 9 बजे संजीव के साथ आप सुनेंगे आपकी याद आती रही, 10:05 से देवर्षी रावत आपके साथ फिर होंगी वेस्टर्न म्यूजिक लेकर, और 11:05 से संजीव फिर जुड़ेंगे आपके साथ लेकर रंगे महफिल। तो बस आकाशवाणी FM रेनबो पर आज का दिन पूरी तरह से इंजॉय करते रहिए, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग आकाशवाणी रेनबो।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: ओ मैं क्या की हाल है करन आ गए सब दंगा। एक किस्सा सुनो, उस दिन दी बात है जब यारा दा पै गया पंगा। सब करते हैं मेरी तारीफा, तू ही ता जान दे ओ मैं किन्ना शरीफ हां, किन्ना चंगा।

ऑलराइट लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हम जो भी यहाँ पर आते हैं आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर आते हैं आपको ज़रूर वेलकम करते हैं, तो मेरी तरफ से स्पेशल वेलकम है। और मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी ज़िंदगी से कभी ना हारें। ये सब कॉज बेस्ड लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा ही ज़िंदगी में करना है, आपका मेरा वादा जो है। और इस वादे के साथ यही इरादा है कि जितना हो सके हम आपको एंटरटेन कर सकें, जितना हो सके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकें, और जितना हो सके आपसे हम बातें भी कर सकें, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दे सकें, कुछ आपकी सुन सकें, कुछ अपनी सुना सकें, और ख़बरों से तो ख़ास तौर से हम आपको बिल्कुल अप टू डेट रखें। बस इन्हीं सब का मिला जुला है स्वरूप हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि अलग अलग लिसनर्स अपनी अपनी चॉइस के साथ आकर हमारे प्रोग्राम्स में जुड़ें। और फिलहाल ये जो प्रोग्राम है ये तो जी हमारा ऑल टाइम हिट प्रोग्राम है, और ये है मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स की आज की सीरीज में बिल्कुल आरजे भारती रहेगी आपके साथ, और आज मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आज क्वेश्चन से और क्वेश्चन आंसर्स वाला ये जो हमारा एक ट्रैक चलता है इससे

छुट्टी ले रहे हैं, आपको अपने दिल की कोई भी खास बात मेरे साथ आज शेयर करनी है, जस्ट रिमेंबर इट हैज़ टू बी अ खास बात, बहुत स्पेशल बात, कुछ भी हो सकती है, कोई किस्सा हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई शेर हो सकता है, लेकिन सिर्फ शेर व शायरी बिल्कुल नहीं चलेगी, कोई भी खूबसूरत बात जो आपको लगता है कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ज़िंदगी का कोई फ़लसफ़ा हो सकता है, कुछ भी अच्छा सा जो मैं आपके साथ और हमारे बाकी लिसनर्स के साथ शेयर कर सकूं, तो बिल्कुल से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9868107070 पर। वैसे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक ट्रैक मैं ज़रूर आप लोगों के लिए प्ले करने वाली हूं, और इस ट्रैक के बिल्कुल से उस पार मैं आप लोगों के साथ करूंगी बहुत सारी बातें आप ही के मैसेजेस के साथ। सो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड यस ऑफ कोर्स कीप मैसेजिंग।

ऑल राइट लिसनर्स, बिल्कुल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, स्पेशली उन सब का जो बीच में कहीं आकर हमारे साथ जुड़ते हैं ना। सो ये है हमारा मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स की आज की सीरीज में बिल्कुल से आरजे भारती आपके साथ है। और आज कोई खास क्वेश्चन को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, आपके दिल की कोई भी खास बात हो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे फारूक अली जी लिख रहे हैं, और बहुत सारे नाम उन्होंने हमेशा की तरह साथ लिखते हैं, कस्बा गुन्नौर यूपी से, कि हम आपको सुन रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मुझे सुन रहे हैं, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपने सुना होगा। कोई खास बात आप मेरे साथ ज़रूर ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगेगा। वेल लिसनर्स, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते जा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़े और मैसेजेस मेरे साथ आके यहाँ पर जुड़ जाएं, उसके बाद मैं बिल्कुल से आपके मैसेजेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल एक और ट्रैक जो बहुत खूबसूरत है, मेरे दिल के भी बहुत पास है, एंड सच मेलोडियस सॉन्ग, इसको सुनते हैं और इस सॉन्ग के साथ अपनी शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, और बिल्कुल से आते हैं आपके मैसेजेस के साथ। फिलहाल लिसनर्स, टेक इट अवे।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ऑल राइट लिसनर्स, मैसेज मसाला मिक्स बिल्कुल से बनता है ना आपके मैसेजेस के साथ ही, तो सीधा बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, आपके संदेशों की तरफ। सो यहाँ मेरे पास जो मैसेज है ये आया है हीरामणि वर्मा का, दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और इन्होंने लिखा है कि कुछ नहीं, बस मुझे जन सेवा करने में मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। सो दिस इज़ सो स्वीट ऑफ यू। और जब भी मैं ड्यूटी से फ्री होता हूँ, मुझे एक अवकाश रहता है, थोड़ा टाइम फ्री होता है, छुट्टी रहती है, तो समाज के लिए मैं जो भी सेवा दे सकूं वो देने की कोशिश करता हूं। और हम लोगों का एक युवा संगठन है और इस सेवा से ये जो संगठन है ये जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। और इसी तरीके से आप जन की सेवा जो है, जन जन की सेवा जो है वो आप करते रहें। सो यहाँ पर मैसेज है मीना का, और लिखा है MP से मैसेज है कि आपका शो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक प्रोग्राम बात से बने बात को मैं बहुत मिस करती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ प्रोग्राम जो हैं वो एक अलग स्वरूप ले लेते हैं, लेकिन सभी प्रोग्राम्स के पीछे जो हमारा फील होता है ना, वो यही होता है कि आप लोग, यू द पीपल, हमारा जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हमारा जितना भी एक फोकस रहता है वो इसी में रहता है कि आप लोग खुश रहें, और अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से अलग अलग आपकी जो पसंद है वो उसके साथ आप ज़्यादा तरीके से जुड़ सकें। फिर भी आप हमारे प्रोग्राम्स को मिस करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे मेरे पास राजेश भल्ला जो हमारे एडवोकेट साहब हैं कंकर खेड़ा मेरठ से, उनका मैसेज है, और बहुत ही प्यारी बात उन्होंने एक पिक्चर के थ्रू लिखी है कि डिफरेंस क्या है ना, मोह में, किसी के मोह में पड़ जाना और किसी के लिए प्रेम होना। तो मोह तो हमें कहता है कि इतना डराता है कि हम किसी को कस के जो है ना वो पकड़ लें, और हमें ये डर होता है कि वो कहीं हमसे खो ना जाए, इसलिए हम रिश्तों को और ज़्यादा कस के बांधने की कोशिश करते हैं, उसे और ज़्यादा कस के पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रेम जो है वो ये कहता है कि उड़ने दो, जो भी आपके साथ लाइफ में आगे चल रहा है, अगर आप उसको सच में प्रेम करते हैं तो उसको फ्री रहने दीजिए, वो आपका है तो डेफिनेटली लौट कर ज़रूर आएगा। तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने मेरे साथ शेयर करी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड लिसनर्स, एक ट्रैक बिल्कुल से मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, इस ट्रैक के उस पार डेफिनेटली करेंगे ना आपसे फिर से बात। Stay tuned, keep listening and keep the messaging on 9868107070.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: ऑल राइट लिसनर्स, यहाँ पे जो मेरे पास मैसेज आया है ये कस्बा गुन्नौर से फारूक अली जी का है, हमारे रेगुलर लिसनर है, इनफैक्ट हमारे बहुत रेगुलर लिसनर हैं। तो लिखा है कि 30 सालों से वो रेडियो जो है वो सुनते आ रहे हैं और आकाशवाणी रेडियो का उनका ये जो सफ़र है ना, ये बहुत ही लाजवाब रहा है। साथ में उन्होंने लिखा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आपने श्रोताओं को कहा है कि अपनी दिल की बात हमारे साथ शेयर कीजिए और इसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक्स टू यू टू कि आप हमारे साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अगला जो मैसेज है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा है, ये रवि जोशी का मैसेज है मेरठ से, और इन्होंने लिखा है कि भारती जी शुभ संध्या, मैं मेरठ से देहरादून ट्रेन से जा रहा था, मेरठ से देहरादून ट्रेन से जा रहे थे। कभी कभी आप ऐसी चीज़ें लिखते हैं ना कि मुझे सोचना पड़ जाता है कि अच्छा ट्रेन है ट्रेन नहीं है, और ट्रेन से क्यों जा रहे थे, आप बाय बस भी जा सकते थे। एनीवे, तो इन्होंने लिखा है कि मेरा एक सहयात्री मेरे साथ बगल वाली सीट पर बैठा था और हम आपस में बहुत बातें कर रहे थे, और बातें करते करते डेफिनेटली पता नहीं चला कि देहरादून ना कब आ गया और हम निशब्द हो गए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो उसने मुझे सब कुछ कह दिया और ये एक सपना सा रहा मेरा ये सफ़र। चलिए, कुछ बातें आपने अच्छे से बताई हैं, कुछ बातें आपने कहीं ना कहीं कट शॉर्ट कर दी हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपकी भावना में बहुत अच्छे से समझ गई, और ऐसी ही दिल की बातें हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। आई जस्ट होप आपने नंबर तो शेयर किए होंगे, नहीं भी कर पाए होंगे तब भी एक मेमोरी जो है वो ज़रूर आपके साथ आपकी स्मृतियों में हमेशा शेष रहेगी इस खास सफ़र की। रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और इसी के साथ रंजीत कुमार मंडल का मैसेज है सिकटी अररिया बिहार से, लिखा है कि मनुष्य के विचार, उसकी भावनाएं और उसके

विश्वास उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी सकारात्मक सोच, हमारा आत्मविश्वास, हमारी किसी चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और लक्ष्य के प्रति हमारे जो भी हमें एक फोकस है उसके प्रति हमारा जो स्पष्ट दृष्टिकोण है यानी कि फोकस है वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिविटी के साथ आगे चलें। और अगर व्यक्ति जो है वो पॉजिटिविटी के साथ लगातार प्रयास करता रहता है तो डेफिनेटली उसको कभी ना कभी सुख, सफलता, समृद्धि जो है वो मिल जाती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस लवली थॉट। एंड इसी के साथ अशोक विहार से भुवनेश जी हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं दिल्ली से कम मेरे प्रोग्राम में हमेशा उनका मैसेज आता है, तो स्पेशली थैंक यू इस बात के लिए। लिखा है कि हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैड अ विश दैट यू कम ऑन द शो टूडे। चलिए, ये बहुत ही प्यारी बात आपने बोली कि आपकी इच्छा थी, आपने विश मांगी थी कि आज मैं ही आऊं और मैं ही आ गई हूं। और साथ में लिखा है कि आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच, आई एम आल्सो योर बिग फैन। और आपके साथ एक मेमोरी जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक बार दिवाली पे मेरी कज़न सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मुझे कौन सी स्वीट पसंद है, आई वुड लाइक टू हैव, ओके आई डिड नॉट मेक एनी विश, उस वक्त मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था और बोला था कि जो भी आपको पसंद हो आप मेरे लिए बहुत ही प्यार से अब बना दीजिए। सो ये मतलब ये अपने आप में बहुत स्वीट बात है कि हम सामने वाले पर छोड़ देते हैं कि आप हमें कितना प्यार करते हैं या आप हमारे लिए क्या सोचते हैं, चलिए आप अपने आप से कुछ कर दीजिए, हम आपको क्या बताएंगे। सो उन्होंने लिखा है कि ये बात ने उन्हें बहुत खुश कर दिया था, एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डेडिकेट वन सॉन्ग स्पेशली फॉर मी, और मुझे लगता है कि फॉर योर सिस्टर ऑल्सो। तो चलिए, अगला जो ट्रैक है वो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत जेल करेगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। ये गाना जो है वो मैं, भुवनेश और हमारे सभी लिसनर्स इसको सुनेंगे और इसके बाद डेफिनेटली कुछ और मैसेजेस आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड कीप मैसेजिंग। एंड भुवनेश, दिस इज़ फॉर यू।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ऑल राइट लिसनर्स, सो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया है। मैसेज थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बहुत शॉर्ट करके बताती हूँ। बचपन की घटना है, किन की घटना है, इनका नाम है नियमित श्रोता, इन्होंने लिखा है हर्षवर्धन पांडे जो हैं हमारे नियमित श्रोता हैं मध्य प्रदेश से। तो लिखा है कि बचपन की एक घटना है, मुझे कभी भूलती नहीं है। और ये एक ऐसी घटना है, मुझे लगता है कि हमने कहीं ना देखी हो, फिल्मों में बहुत देखी है कि हम मेले में जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ खो जाते हैं, वो पेरेंट्स के साथ वो खो गए और बहुत ही छोटे थे, 4 वर्ष के थे, बट एक नोन अंकल उन्हें मिल गए जो उन्हें किसी तरह से उनके घर उनको पहुंचा दिया उन्होंने। सो दैट्स द होल स्टोरी जो उन्होंने बहुत ही इमोशनली एलैबोरेट करके बहुत अच्छे से लिखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ के। एंड आई थिंक यही कुछ मेमोरीज हैं जो हमारी ज़िंदगी बिना हमारे साथ चलती जाती हैं, सब कुछ पीछे छूट जाता है, बट ये यादें जो हैं, ये यादों के सफ़र जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैसेज मेरे पास मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से है, और उन्होंने पहले तो ईद की मुबारकबाद दी है, हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही सभी से गुजारिश की है कि आप जो भी उन्होंने लिखा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहती हूं, लेकिन जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू सो मच। बस यही संदेश दिया है कि आपस में मिल के हम इस त्यौहार को मनाएं और किसी को भी किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, ऐसी हम पूरी कोशिश करें, एक दूसरे की मदद भी करें और एक दूसरे को समझें भी। और उन्होंने मुझे फिर बाद में ये भी लिखा कि आपने मेरा मैसेज शेयर नहीं करा, सो मैंने आपका मैसेज शेयर कर लिया है, आई होप आप अभी इस समय इसे सुन रहे होंगे। सो अगला मैसेज जो मेरे पास है, ये हमारा संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब, अच्छा क्या बात है, और लिखा कि अलग अलग जगह पर हम सुन रहे हैं और

इतने अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग पेश करते हैं, इतने अच्छे गीत हमें सुनाते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड साथ में लिखा है कि किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा आप, हमें किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा, किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा, क्या शामिल करना ये नहीं लिखा। और आपका दिल से शुक्रिया, आपका भी दिल से बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम खत्री का मैसेज है भुज से, और लिखा है कि वेरी नाइस शो दैट आई नो, बट अगर आप कुछ

स्कूल छोड़े हुए 14 साल हो गए हैं और मैं स्कूल के दिनों को बहुत याद करता हूँ और इस समय याद कर रहा हूँ और साथ ही आपका प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ। क्या बात है दिलीप जी, स्कूल डेज आर आई थिंक द बेस्ट डेज। गाने भी है ना बहुत प्यारे प्यारे, पुरानी जीन्स एंड पुरानी गिटार और ऐसा था वैसा था ऐसे करके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो हमें हमारे स्कूल डेज में, स्पेशली नॉट कॉलेज डेज, स्कूल डेज में ले जाते हैं। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रैक हम जल्दी से बीच में सुन ही लेते हैं और इस ट्रैक के उस पार जितना भी समय बचेगा आपके मैसेजेस लेने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। सो टेक इट अवे।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ऑल राइट लिसनर्स, सो एक जो मैसेज मेरे पास आया है वो बहुत बहुत बहुत अमेजिंग है, जिसको मैं डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ. इससे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के लिए बाय बोलूँ. सो ये मैसेज जो मेरे पास आया है, ये इकबाल राय गुलाटी का है, भगवान नगर कॉलोनी पिपली डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से. और साथ में लिखा है जय हिंद जय भारत. जय हिंद जय भारत. लिखा है कि माउंटेन इज़ नॉट द हायर देन आर डिज़ायर बिकॉज इट्स अंडर आर फीट व्हेन वी रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. थैंक्स. मतलब बहुत प्यारी बात है कि जो पहाड़ है ना, वो हमारी डिज़ायर से, हमारी इच्छाओं से बड़ा नहीं है. क्योंकि जब हम अपने डिज़ायर्स को पूरा कर लेते हैं तो एक तरीके से हम उस पहाड़ के ऊपर होते हैं और पहाड़ हमारे कदमों में होता है. तो वो कभी भी हमारी इच्छाओं से, हमारी कोशिशों से बड़ा नहीं हो सकता है. आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग बात है. थैंक यू सो सो सो मच. डेफिनेटली लिसनर्स, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा. और 8 से 9 मैं बिल्कुल म्यूजिक मस्ती लेकर आपके साथ दोबारा से जुड़ूंगी. बट आपको हमेशा हमारे सारे प्रोग्राम्स में जुड़े रहना है. स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग, और जहां भी जरूरत हो कीप मैसेजिंग. फिलहाल एक ट्रैक आप सबके लिए.
1: दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तुम जिंदा हो. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो. तो हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो. हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो. तो दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन

0: बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: All right, that was Take My Breath Away by Berlin, and we'll be right back after these messages. Don't go anywhere.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ऑल राइट लिसनर्स, और अब ये जो टाइम है ना, ये है बस आपका और मेरा। मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी ज़िंदगी से कभी ना हारें। ऑफ कोर्स फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा ही ज़िंदगी में करना है। आपका मेरा वादा है इस वादे के साथ, बस यही एक इरादा है कि जितना हो सके ना हम आपको एंटरटेन कर सकें, सबसे पहले एंटरटेन कर सकें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें और

जो भी आप चाहते हैं वो हम आपको हमारे किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू आपको देते रहें। तो ये जो हमारा एक पूरा सेक्शन है ना, ये एक घंटे का म्यूज़िक मस्ती, इसमें हम कुछ फुट टैपिंग नंबर्स जो हैं वो आपके लिए प्ले करते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स प्ले करते हैं जिनके बारे में आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, जिसके बारे में आपको कोई क्रेजी सा एक्सप्रेशन नहीं सोचना पड़े, कुछ फीलिंग में ना जाना पड़े। बस आप फुट टैपिंग नंबर सुनें, इन्जॉय करें, एक पार्टी फीलिंग जैसी जो फीलिंग होती है ना वो आप लेकर आ सके। तो हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उन सबको वेलकम करते हुए हियर वी गो विद दिस फर्स्ट ट्रैक व्हिच इज माय ऑल टाइम फेवरेट। आई डोंट नो व्हाई, मे बी शायद दलेर मेहंदी साहब की आवाज़, या मे बी शायद इसके लिरिक्स, या मे बी शायद ये मूवी जो कहीं ना कहीं देशभक्ति से ना एकदम यू नो एंटैंगल्ड है, भरी हुई है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग, दिस इज म्यूजिक मस्ती और मैं रहूंगी आपके साथ आज बात विद यू फॉर दिस आर, टेक इट अवे।

भंगड़ा। Shaking your boat.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी

0: दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आपके लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर, और मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस सुहानी शाम का हम सफर। घड़ी की सुइयां जब इस मोड़ पर आती हैं तो दिल के किसी एक कोने से आवाज़ उठती है, एक ऐसी आवाज़ जो हमें आज से खींच कर सीधे गुजरे हुए कल में ले जाती है। जी हाँ, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो का, जिसका नाम सुनते ही धड़कने ठहर जाती हैं और यादों का कारवां चल पड़ता है। आपकी याद आती रही आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। स्वीकार कीजिएगा मेरा नमस्कार।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ, आपकी याद आती रही। वेलकम बैक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आपको बताएं कि ये दोस्तों जो यादें हैं बड़ी अजीब चीज़ होती है ना, ना तो इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, ना ही इन्हें खुद से अलग किया जा सकता है। इसलिए बस इन्हें दिल में संजो के रखिए और अपने दिल को संभाल के रखिए ताकि दिल को करार मिल जाए, दिल को सुकून मिल जाए।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, प्रोग्राम आपकी याद आती रही। दिल से दिल तक में हम आप तक पहुंच रहे हैं। तनहाई तनहाई में या रब, जलता हूँ रात भर, मोम की तरह पिघलता हूँ रात भर, तेरा दिया ये दर्द सलामत रहे सदा, यूं ही मशोलों में तेरी याद में चलता हूँ रात भर, चलता हूँ रात भर। प्रेमचंद प्रेमी जी जैतरा धामपुर बिजनौर से ये मैसेज हमारे पास भेजते हैं। और दूसरा मैसेज है, शुभ संध्या संजीव श्रीवास्तव संजू जी, आज नाइट ड्यूटी, 28 मई को घर पहुंचेंगे रात 12 बजे तक, और अगले पल की तारीख पलट जाएगी, पर लेकिन आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी। और ये जो अगला मैसेज मेरे पास किसने भेजा, अमरावती महाराज से, बिल्कुल ये मैसेज हमारे पास भेजा हमारे दोस्त पंकज ने, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। और ये है हमारे पास, वेलकम बैक साहब। वेलकम बैक तो आप करते हैं गाज़ियाबाद से सौरभ अनेजा जी, लेकिन कुछ दिल की बात भी हमारे पास लिख के डाल दीजिए कीजिए, है ना। तो चलिए आपको बताएं कि आपकी याद आती रही में जब कभी हम इस प्रोग्राम में होते हैं तो बहुत सारी यादें जो पुराने जीवन से जुड़ी हैं, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, सामने आती हैं। कभी दफ्तर की किसी मेज पर रखी चाय की प्याली से उठता हुआ धुआं किसी पुरानी मुलाकात की याद दिलाता है, तो कभी अचानक से हुई रिमझिम सी बारिश बचपन के उस कागज़ की कश्ती वाले दौर की ओर खींच ले जाती है, और कभी तेरा नाम जिसको हम अपने दिल में छिपाए बैठे हैं याद आता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

वेलकम बैक, प्रोग्राम है आपकी याद आती नहीं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। तो एक और खूबसूरत नगमा जो आपकी यादों को झकझोर देगा, यकीनन दिल के अंदर उतर जाएगा ये गीत।

जी हाँ, यह है आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। हेलो आकाशवाणी, और यह है हितेंद्र दास। कहाँ से लिखते हैं हमें? असम से। बहुत ही सुंदर स्टेट, बहुत प्यारी सी जगह जहाँ से ये मैसेज हमारे पास आया। और अगला मैसेज किसने भेजा? शुभ संध्या संजू जी, रेडियो पर गाने सुनाने का और अपना अलग ही एक अंदाज़ है आपका, और मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आती है जो कि रेडियो के बारे में बहुत ही शौकीन थे। और मैं यहाँ से सरोज अरुणाचल प्रदेश से ये मैसेज आपको कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप इतने सुंदर अरुणाचल प्रदेश, अरुण के उदय वाले प्रदेश से, यानी इतनी सुंदर जगह से आप हमें मैसेज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मैसेज मेरे पास किसने भेजा? पुरानी यादें जिंदगी का आधार हैं, किंतु जो यादें कष्टदायी थीं उनको भूलना भी ज़रूरी है, तभी जीवन की ट्रेन सही चलेगी। बुरी यादों को छोड़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में दिल से दिल तक है, राजेश भल्ला, एडवोकेट कंकड़ खेड़ा। जी बिल्कुल सच कह रहे हैं आप वकील साहब, हम आपकी बात को दिल से लगा के रखेंगे। और ये हैं हमारे मित्र, बहुत पसंद आ रहा है कार्यक्रम और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। तो चलिए एक और नगमा हो जाए आपके दिल के लिए।

जी हाँ, यह आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। जी हाँ, दिल से दिल तक हम बात करते हैं और आज के सॉन्ग बहुत पसंद आ रहे हैं, इसलिए दिल से थैंक्स। मैं ऋतु बत्रा दिल्ली के गोपाल पार्क से आपके प्रोग्राम को सुन रही हूँ, बहुत ही रोमांटिक और कुछ दर्द भरे नगमे सारा कुछ मिलाकर जो

प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया जी ऋतु जी, हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गन्नौर यूपी से, फारूक अली खान साहब हमें लिख के भेजते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि ये जो अगला मैसेज हमें भेजा किसने, कि बिछड़ कर भी तू मुझसे जुदा ना हो सका, तू मेरी यादों की पनाहों में आज भी है, भले ही मंजिलें अलग हो गई हमारी मगर तेरी तेरा नाम मेरी दुआओं में आज भी है। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हरदर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से जी। और आपको बताएं कि ये कहते हैं कि इंसान बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, यहाँ तक कि मौसम भी अपनी रंगत बदल लेते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है अपनों के साथ बिताए हुए वो चंद लम्हे, वही लम्हे जो आज की इस शाम को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हमारे और आपके साथ हैं। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल में कहीं ना कहीं नासूर बनकर चुभती रहती हैं। और उन यादों को दिल से निकालना बड़ा मुश्किल होता है भाई। क्योंकि कहते हैं ना कि जब दिल में कुछ एक लंबी ठेस पहुंचती है और दिल में एक दुख होता है तो वो एक नासूर बनकर अंदर अंदर चिपक जाता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब कभी भी ये नासूर दिल से बाहर आता है तो सच में दिल से बातें आती हैं बहुत सारी। और ऐसी ही बातों को हम अपने प्रोग्राम आपकी याद आती रही में आपके साथ साझा करते हैं। और यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, ऐसा ही नगमा है आपके लिए फिल्म कर से।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: हाय
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें

0: जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

वेलकम बैक है जी, प्रोग्राम है आपकी याद आती रही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। आज का हमारा ये सफर उन खट्टी मीठी यादों के नाम है, और आपको सुनाते हैं एक और बेहद मीठा नगमा। सुनिए और खो जाइए अपनी यादों के झरोखे में। इस नगमे को गाया है किशोरदास साहब ने।

जी हाँ बिल्कुल, यादों का ये सफ़र इतना हसीन है कि लगता है कि वक्त यहीं ठहर जाए, लेकिन वक्त की पाबंदी है और आप सबसे विदा लेनी है। लेकिन चलते चलते बस इतना ही कहूँगा कि गुजरा हुआ कल भले ही लौट कर नहीं आता, लेकिन उसकी खुशबू हमेशा हमारे साथ रहती है। अपनों को याद करते रहिए, उनसे बात करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर, इसी चैनल पर। तब तक, कल से मतलब आने वाले किसी भी समय, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर

दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान रखने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 244 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। जवाब में हैदराबाद की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ताबड़तोड़ 97 रन की पारी खेली। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: There we go. That was Tears for Fears with Sowing the Seeds of Love. And yes, time right now exactly is 10:27. And we're still on a show called Rainbow Classics. This is Dave with you guys. And we're going to take a quick break right now. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Here we go. From the 1984 album Make It Big, that was Wham! The British pop duo, which had Andrew Ridgeley and the legendary George Michael. And yes, the song was released in 1984 and it became a smash hit, not just in US and UK, but in many countries. All right, time right now is 10:43 this evening. And yes, it's time for us to take a quick break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31

0: 30 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने NEET UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार जी, आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं आपका दोस्त और आपका अपना साथी। आप सुन रहे हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम को जहां लफ्ज दिल को छूते हैं और जज्बात जज्बात धड़कनों में ढल जाते हैं। जी हां, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम रंगी महफिल का।

जी हाँ, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये वक्त बड़ा ही हसीन है दोस्तों। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब परिंदे अपने घरों को लौट चुके हैं तो दिल चाहता है कि कुछ पल ठहर कर ख़ुद से गुफ्तगू कर ली जाए। और ऐसे में हमारे आकाशवाणी रेनबो का ये प्रोग्राम रंग महफिल अपने आप में चार चांद लगा देता है ना। साथ ही इसमें आने वाली गज़लें जो लाजवाब हैं और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक से बढ़कर एक नगमे और गज़लें मैं इस प्रोग्राम में लेके आया हूँ। सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, ये प्यारी सी आवाज़ जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। बिल्कुल, आपको बताएं कि रंगे महफिल किस महफिल में आज हम बात करेंगे प्यार के उस अस्सी हसीन सफ़र की जो कभी थमता नहीं है, जो धूप में छाँव की तरह हमारे साथ हमेशा चलता है। तो एक से बढ़कर एक नगमे गज़लें आपको सुनाएंगे। प्रोग्राम है रंगे महफिल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। प्रोग्राम है रंगे महफिल। बाहर आसमान पर रात का रंग धीरे धीरे गहराने लगा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी की यादें धीरे धीरे हमारे दिल पर हावी होने लगती हैं। इसी खूबसूरत एहसास पर निदा फाजली साहब लिखते हैं कि किसी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर दिल का राज नहीं मिलता।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक आपके साथ। मैं संजीव श्रीवास्तव, संजू, और यही तो महफिल का रंग है कि जब कभी जो भी कोई हमारे पास ना हो, जो चीज़ हमारे पास ना हो, उसे भूलकर हम जिस महफिल को सजाते हैं, वही तो रंगी महफिल है। बहुत ही प्यारी सी गज़ल चित्रा सिंह और जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, पंकज उदास साहब की इस बहुत ही प्यारी सी गज़ल के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रात अपनी मखमली चादर ओढ़कर हमारी महफिल में शामिल हो चुकी है। वक्त का पहिया थमता नहीं, हर वक्त चलता है, बस हमें उसके साथ चलना है। तो आइए चलते हैं इस प्यारी सी गज़ल के साथ। पंकज उदास साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे गाया, और जब ये गज़ल वो गाते हैं तो बस यकीन मानिए कि दिल के बिल्कुल भीतर तक उतर जाती है ये गज़ल।

जी हाँ, अब समय आ गया कि मैं आपसे इजाज़त लूँ और इस महफिल से विदा लूँ, और लेकिन जाने से पहले बशीर बद्र साहब की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी वादे के साथ कि आप सुनते रहेंगे आकाशवाणी और चलते रहेंगे हमारे साथ। फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिएगा इजाज़त अगली मुलाकात के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।

मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूँ, जैसे जैसे काम मिलता गया और गज़लें मकबूल होती गई वैसे वैसे आपको सुना रहा हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल को मिशन मोड में बढ़ावा देने पर बल दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में गन्ना और प्याज किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया।

लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य जीआई टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में दिल्ली नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कमान अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे?
2: हाँ कमान अरुण,
3: कमान यार
2: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
4: अरे ये क्या हुआ,
2: ये तो शम्माई बुझ गई।
4: अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिस तो नहीं गया
1: क्या मालूम।
4: अरे भाई किसी के पास माचिस।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: है बबल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के रोग उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: पॉइंट नोटेड मिस्टर
1: रोहित।
0: मिस्टर
1: रोहित।

0: मंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिमनिक में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस को नियंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की देखरेख और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी समीक्षा की गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के

0: रिवर्सल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़ी हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा

0: बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से

0: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में आतंकरोधी दस्ते और विशेष कार्यबल ने संयुक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि चारों आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में आरोपियों के सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने का पता चला। ये सभी संवेदनशील स्थलों की निगरानी, युवाओं की भर्ती और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य बनेगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजना को तेजी से पूरा करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। सिक्किम ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दी जाने वाली सर्वोच्च औपचारिक उपाधि है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सिक्किम पुलिस के 400

गौरवशाली जवान राष्ट्रपति के समक्ष परेड में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां स्थापित करने और कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। ये निर्णय पहली मंत्रिमंडल बैठक में तय किए गए उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसके अंतर्गत 45 दिनों के भीतर कुल 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जानी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF चौकियों और कटीले तारों की बाड़ के निर्माण की गति देकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के ठोस कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा है। राज्य में सीमा के लगभग 1,600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए आकाशवाणी FM रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है प्रातः के 5:06 और ठीक 6 मिनट। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।